0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण

0: ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। ये पिछले 2009 से पेश आया सबसे बदतर गैस धमाका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लापता हुए लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। खदान के अंदर इंफ्रारेड कैमरे और रोबोट्स भेजे गए हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए आज सुबह ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक आंती साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं और उधर कुछ अस्थिर बादलों का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान रह रहकर बारिश होगी कुछ इलाकों, खासकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। आज दोपहर बाद और रात के दौरान भी खासकर ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। इस कारण से मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है और इन लगूनों में भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। जबकि दोपहर बाद से समंदर की स्थिति बेहतर होने लगेगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:35 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे फिर 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है, जहां आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। 6:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहां पर। जी हां दोस्तों, आज सोमवार 25 मई 2026, एक नया दिन, एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ हम करने जा रहे हैं। हर सोमवार की तरह हम रहते हैं यहाँ पर खूबसूरत गानों को लेकर, खूबसूरत विचारों को लेकर आप लोगों के साथ हम बातें हैं, शेयर करते हैं। तो चलिए इस पल को हम खूबसूरत बनाएंगे साथ मिलकर। अभी के लिए सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

प्रिय श्रोतागण, जागृति कार्यक्रम के सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पुष्पलता कलुआ का सादर अभिवादन है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा

के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का मेरा विषय है मातृ दिवस। प्रिय श्रोतागण, मातृ दिवस विषय केवल एक सामाजिक या आधुनिक उत्सव का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के मूल में स्थित उस महान तत्व का स्मरण है जिसे हम माता कहते हैं। वैदिक दृष्टिकोण से जब हम मातृ दिवस का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि माता केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, पालन और संवर्धन की मूल शक्ति है। वह जीवन का आरंभ है, वह संस्कारों की प्रथम गुरु है और वह प्रेम, करुणा तथा त्याग का सर्वोच्च प्रतीक है। वैदिक परंपरा में माता को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। यह स्थान केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक भी है। माता को देव के समान पूजनीय माना गया है, क्योंकि वह देने वाली है, पोषण करने वाली है और जीवन को दिशा देने वाली है। इसीलिए उपनिषदों में यह आदेश दिया गया है कि मातृ देवो भव, अर्थात माता को देवता के समान समझो। यह देव का अर्थ है प्रकाश देने वाला, मार्गदर्शक और कल्याणकारी। माता अपने संतानों के जीवन में यही भूमिका निभाती है। प्रिय श्रोतागण, माता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना कठिन है। माता वह है जो अपने अस्तित्व को भूलकर संतान के अस्तित्व को गढ़ती है। वह अपने सुख दुख, अपनी इच्छाओं और अपने आरंभ का त्याग कर बालक के जीवन को संवारती है। जब शिशु इस संसार में आता है तब वह न तो बोल सकता है, न चल सकता है और न ही अपने कष्टों को व्यक्त कर सकता है। माता ही उसकी हर आवश्यकता को समझती है और उसे पूरा करती है। यह निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही मातृत्व का वास्तविक स्वरूप है। वेद में माता के महत्व को अत्यंत गहराई से व्यक्त किया गया है। एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है, ओम माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इस मंत्र का अर्थ है कि यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह माता की परिभाषा केवल जैविक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मातृत्व एक व्यापक, सार्वभौमिक और दिव्य तत्व है जो समस्त सृष्टि में विद्यमान है। आदरणीय श्रोतागण, एक अन्य वैदिक भावना यह है कि माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है। बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो कुछ भी सीखता है वह अपनी माता से ही सीखता है। उसका बोलना, चलना, व्यवहार करना, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी माता के माध्यम से ही संभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि माता संस्कारी है तो संतान भी संस्कारी होगी, और यदि माता शिक्षित है और जागरूक है तो समाज भी उन्नत होगा। आदरणीय श्रोतागण, मातृ दिवस का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम इस सत्य को समझें और अपने जीवन में माता के महत्व को पुनः स्थापित करें। आज के आधुनिक युग में जहां लोग अपने कार्यों और महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहां मातृ दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी सफलता, हमारा अस्तित्व और हमारा व्यक्तित्व, इन सब के पीछे हमारी माता का योगदान है। वैदिक दृष्टिकोण से मातृ दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। माता का सम्मान

मान केवल एक दिन उपहार देने या शुभ कामनाएं देने से नहीं होता, बल्कि उसके प्रति हमारे दैनिक व्यवहार में होता है। उसकी सेवा करना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये सभी सच्चे अर्थों में मातृ पूजन के रूप हैं। माता का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। एक माता ही समाज की प्रथम निर्माता होती है। वह अपने बच्चों को जो संस्कार देती है, वही संस्कार आगे चलकर समाज का स्वरूप निर्धारित करते हैं। यदि माता अपने बच्चों को सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और धर्म का ज्ञान देगी, तो समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होगी। भविष्य की दृष्टि में मातृ दिवस का महत्व और भी अधिक है। आज के युग में जहां नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वहां माताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि माताएं अपने बच्चों को सही दिशा देंगी, तो वे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज के विकास में योगदान देंगे। इस प्रकार मातृ दिवस केवल भावनात्मक अवसर नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक चेतना का प्रतीक है। आदरणीय श्रोतागण, विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि बालक के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार बालक का मस्तिष्क जन्म के बाद तेजी से विकसित होता है और इस विकास में माता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माता का स्नेह, उसका स्पर्श, उसकी भाषा और उसका व्यवहार, ये सभी बालक के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यह वही सत्य है जिसे हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। मातृ दिवस हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, उसमें हमारी माता का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह आभार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। वैदिक जीवन में माता का स्थान सर्वोपरि है। वह केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी आधारशिला है। एक आदर्श माता ही एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकती है। इसलिए मातृ दिवस का महत्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। जब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि माता का प्रेम और त्याग असीमित है। वह अपने बच्चों के लिए हर प्रकार का कष्ट सहने को तैयार रहती है। वह अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। यह कारण है कि माता को ममता की मूर्ति कहा गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मातृ दिवस हमें अपने जीवन के उस मूल तत्व को पहचानने का अवसर देता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाता है कि माता केवल एक संबंध नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक प्रेरणा है और एक ऐसा आधार है जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। प्रिय श्रोतागण, यदि हम वास्तव में वैदिक जीवन को अपनाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में माता का सम्मान करना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए संस्कारों का पालना करना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में मातृ दिवस का पालन है। यही वह मार्ग है जो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।
इस प्रकार मातृ दिवस का वैदिक स्वरूप हमें यह सिखाता है कि माता केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि

0: जीवन देने वाली है। वह केवल पालन करने वाली नहीं बल्कि मार्गदर्शन करने वाली है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। जब तक इस संसार में माताओं का सम्मान होता रहेगा तब तक धर्म, संस्कृति और मानवता भी जीवित रहेंगे। और यही मातृ दिवस का वास्तविक संदेश है। माता का आदर करो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो और उसके द्वारा दिए गए मूल्यों को अपने जीवन में अपनाओ। यही सच्चा वैदिक मार्ग है, यही मानवता का आधार है और यही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। तो प्रिय श्रोतागण, यदि इस भाव को हम अपने जीवन में स्थापित कर सकें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सफल होगा बल्कि हमारा समाज और राष्ट्र भी समृद्ध और सुदृढ़ बनेगा। यही मातृ दिवस का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। तो प्रिय श्रोतागण, संसार के सभी माताओं को एवं बहनों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं हैं। इति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: चॉकलेट लवियों को प्लीज तमाम
1: सियातू किस्सा गोजे पुले सेंगू पासे
0: अंको प्लीज सिंप अंको प्लीज प्रिपरेशन ए कोको प्लीज गुमन
1: रेस्टे ए फॉर्मलेन नू गए अंको बूकू प्लीज
0: फॉर्मलेन सा मेम नू स्मार्ट चॉइस
2: रेडियो मॉरिशियस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
2: रेडियो मॉरिशियस
3: रेडियो मॉरिशियस

छः बजकर 22 मिनट हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। जी हाँ, एक नई सुबह, नया कार्यक्रम और नई उम्मीदों के साथ आज हाँ हम साथ देंगे। और 6:30 बजे भूलिएगा नहीं, आप सुन पाएंगे समाचार और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद। तब तक यहाँ पर कुछ खूबसूरत गाने, चंद पॉपुलर गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं। चले हौले हौले चलो मोरे साजना, आशा जी की आवाज़ में।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, सुबह की ठीक साढ़े 6 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। इसके पीछे वैश्विक अस्थिरता का कारण बताया जाता है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। इसके तहत सर्दियों के दौरान ऊर्जा बचत के कदमों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 42 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह मॉरिशस में

0: भी इन्फ्लेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के दौरान कीमतें बढ़ती रहेंगी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कम होगी और परिवार पहले की तुलना में समान वेतन से कम चीज़ें खरीद पाएंगे। इस अध्ययन में हर दो व्यक्ति में से एक का मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में इन्फ्लेशन का वर्तमान स्तर ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के इस अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। विस्तार आदरिया वाले और अभ्युदय के साथ।
1: महंगाई का सीधा मतलब है चीजों के दामों का बढ़ना। जब सुपरमार्केट में, पेट्रोल पंप पर या फिर बिलों में पैसे ज्यादा लगते हैं तो हमारे पैसे की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उतने ही पैसों में अब हम पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। ये सर्वेक्षण 200 आर्थिक जानकारों व्यापारियों के बीच किया गया, जिसमें से 57% लोगों ने अपने जवाब दिए। लगभग आधी यानी कि 50% आबादी का मानना है कि अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। 36% लोगों को यह ठीक ठाक लगती है, जबकि 14% लोग इसे कम मानते हैं। लोगों के अनुसार महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह बाहरी यानी कि ग्लोबल स्थिति है। दुनिया भर में चीजों के बढ़ते दाम और बाहर से सामान मंगाने का खर्च, मॉरिशस के रुपए की कीमत में बदलाव, लोकल मार्केट में सामान की सप्लाई में आने वाली दिक्कतें आदि। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई ऊंचे स्तर पर रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2026 एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन यानी कि अनुमानित औसत महंगाई 4.8% होगी, दिसंबर 2026 5.3%, जबकि फरवरी 2027 5.1% है। लंबे समय का अनुमान अगर बात करें तो अगले 5 सालों में महंगाई औसतन 4.7% के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। रिया रामबोजन, रजनीकर।
2: अक्सर सर्दी का मौसम आता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है।
3: Les diminuer d'une certaine façon, par exemple, de passer avec climatisation et les réserves, il y a presque normal de regarder de plus de vent si nous voulons diminuer.
4: Normalement, les passants moins sont ces moments d'hiver. Côté Napoutin, nous, t'es bien l'appareil.
5: Vers situation sous contrôle, zone réserve.
2: Central Electricity Board qui ose des pichelés garmis que mousse mais urja bachat par dhyan kendrit. सर्दी के मौसम में भी ऊर्जा बचाने से संबंधित जागरूकता अभियान पर करा रखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन ने कहा, हम मॉरिशियनों को बताना चाहते हैं कि न केवल गर्मी के मौसम में समस्या है, सर्दी के मौसम में भी समस्या उतनी ही गंभीर है जिस तरह गर्मी के मौसम में। इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है। अगर छोटी छोटी हरकत या कुछ कदमों से बचत की जा सकती है तो निस्संदेह बिल कम होगा और सीबी भी कम कच्चा तेल मंगवाएगा। बिजली उत्पादन के लिए देश के लिए हैवी फ्यूल का दाम भी कम होगा। तापमान के घटने से चाहे बिजली की मांगे कम हुई हो, फिर भी लोगों को जागरूक कराना अहम है। अतः ये अभियान कैसे चलाया जा रहा है जानने की कोशिश की गई। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया।
6: C'est une campagne qui commence depuis l'école।
2: ये अभियान स्कूल से शुरू होता है। हमारी टीमें स्कूल में जाएंगी, मॉल्स में भी जा रही है, लोगों से भी मुलाकात करेगी, स्पष्ट रूप से

0: समझाया जाएगा कि क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सहायता देंगे। इमो सीबी मावेना ऊर्जा मंत्रालय सहायता करेंगे ताकि बिजली जाया न हो। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई बिजली उत्पादन इंजनों का रखरखाव किया जाएगा। अधिक जिम्मेदाराना उपभोग की ज्यादा जरूरत होगी। यह अभियान 6 महीनों तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से उन्हें नागरिकों के सहयोग से भारी उम्मीदें हैं। इसकी बदौलत सीबी पिछले गर्मी के मौसम की मांग पर 15 मेगावाट तक बचत कर सका है।
1: ऋतु विज्ञान केंद्र ने आज सुबह मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है, जो आज दिन की 12 बजे तक बरकरार रहेगी। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की लहरें उठेंगी, जिसका असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों और आम जनता से समंदर में न निकलने और इन तटीय इलाकों में सावधानी बरतने की मांग की जाती है। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी, और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर मौजूद हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी, और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिके का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। सिल्वाना पाकिमामन, रजनीकर।
0: हर गर्मी के मौसम में इस पर चर्चा होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारी मूसलाधार बारिश होने पर घर जा सकते हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार करना होता है, जो कभी कभी बहुत बाद में प्रकाशित की जाती है।
2: Quand ma machine vient près au haut, il est là où on trouve les.
3: Comment moi, on travaille l'hôtel, c'est dans ce qu'on de les passer. Quand une misère reste là-bas, deux jours, c'est la nuit, nous inquiète nos familles, c'est la case que nous qui peut arriver.
0: निजी सेक्टर और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति कायम की गई है। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय किया गया है। मूसलाधार वर्षा होने पर निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना होगा या फिर काम करते नहीं रहना होगा। इस तरह मालिक वर्ग को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना होगा। रियाज चतुर ने कहा, कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मूसलाधार बारिश होने पर घर जाने का अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज एक अन्याय को सुधारा गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बहुत बधाई है कि ऐसा हो पाया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए काम होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए। ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, परिवहन आदि को लेकर भी। ये प्रोटोकॉल उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। मंत्री रेजा उतिम ने कहा, पहले तो वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स राइट्स एक्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर को अपने कर्मचारियों को लौटाना चाहिए नेशनल क्राइसिस कमेटी के आदेश पर। अब इसमें बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी काम पर न जाएं। अगर काम पर हों तो उन्हें घर लौटाना चाहिए। सुधारों के साथ केवल आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को काम पर जाना ही होगा मूसलाधार बारिश होने पर। नेशनल क्राइसिस कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के बाद ही फिर से काम बरकरार रखा जा सकता है, ये कहते हुए कि निकलना सुरक्षित है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कर्मचारियों को काम पर जाना होगा या फिर मौसम की बहुत खराब स्थिति में काम पर रहना होगा। सेवा प्रदान करने वाले हर एक संगठन को एक अंदरूनी प्रोटोकॉल तैयार करना होगा और बरकरार भी रखना होगा। साथ में एक निश्चित आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जो

0: राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक नर्सरीज और शिक्षा संस्थाओं की बात है तो कुछ भी नहीं बदला है, अलग अलग संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर होगा। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाए जाने चाहिए, नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट में भी सुधार लाए जाएंगे, क्राइसिस समिति के कार्य बढ़ाए जाएंगे और श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
1: 2019 के आखिर में देश में मेट्रो एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई थी और तब से ये मॉरिशस में सार्वजनिक परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर रोज हजारों यात्री इस आधुनिक और तेज परिवहन साधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके सुचारू संचालन के पीछे कई टीमी नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत रहती हैं। जहाँ इंस्पेक्टर्स की टीम टिकट को लेकर नियमों का ध्यान रखती है, वहीं इंजीनियर्स ट्रेनों, रेल और अन्य मूल ढांचों की नियमित जांच करते हैं। साथ ही जनता की बेहतर सुरक्षा के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। ये रिपोर्ट निर्मा नारायण रेड्डी की है, विस्तार अभी उदय के साथ।
2: जमीन पर कई पेशेवर मेट्रो एक्सप्रेस के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करते हैं। इनमें प्रतीक्षा तिलक जैसी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो पिछले 5 वर्षों से वाक्वा में काम कर रही हैं। वह टिकट, एमिकॉड और माइटी मनी के जरिए किए गए भुगतानों की जांच करती हैं। इस टीम में लगभग 30 टिकट इंस्पेक्टर हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं। उनका कहना है,
3: on a ben différents micros de cycle qui nous vérifier et ben passager a resté dès la ligne jaune le matin comme un
2: अलग अलग प्रकार के एमिकॉड की जांच की जाती है। सभी यात्री येलो लाइन के पीछे रहते हैं। सुबह को जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया तो मैंने इस व्यक्ति से मुलाकात की और उनके पास टिकट नहीं थी। मेट्रो एक्सप्रेस की सुरक्षा और विश्वसनीयता इंजीनियरों पर भी निर्भर करती है। पिछले 5 साल से इंजीनियर के रूप में कार्यरत तिरन्ना कुमार सुमाहो बताते हैं कि अगले दिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हर सुबह और सेवा समाप्त होने के बाद शाम को मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव का काम किया जाता है, ताकि पटरियों, ट्रेनों और बुनियादी ढांचे की जांच की जा सके। उनका कहना है,
4: tous les jours et la maintenance, on fait la maintenance qui nous fait pendant la journée et pendant la nuit aussi.
2: प्रतिदिन मेंटेनेंस के काम किए जाते हैं दिन और रात के दौरान, अतः ट्रेन का मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रेन में कोई भी कमी या फिर तकनीकी समस्या पैदा होती है तो कई टीमों की ओर हस्तक्षेप किए जाते हैं। ट्रेन कैप्टन एंड्रूज अंचोगास बताते हैं कि हर सेवा से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और सिस्टम की जांच की जाती है। उन्होंने पीक आवर्स यानी कि सुबह के 7 बजे से 9 बजे और शाम के 4 से 6 बजे के बीच यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया, जिसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है, सबसे पहले ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को सूचित किया जाता है, तब वो पुलिस को फोन करेगा। इन टीमों की बदौलत मेट्रो एक्सप्रेस से देश के शहरों में एक आधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित सेवा प्रदान करना जारी रखे हुए है।
1: और सऊदी अरब में मौजूद 1500 मर्शन हाजी कल रात 12 बजे से मक्का से रवाना होकर मीना शहर गए हैं, जहां आज वे पूरा दिन गुजारेंगे। हज की अदायगी में मीना पहला मरहला है। इस साल दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी इस्लाम का ये 5वां फ़र्ज अदा कर रहे हैं। कल मंगलवार सबसे अहम दिन है यौम अरफात में, जहां सभी हाजी मैदानी अरफात में जमा होंगे। हज मिशन के मुताबिक सभी तैयारियां की जा चुकी हैं ताकि ये हज मॉरिशन हाजियों के लिए यादगार रहे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए टैक्स की दर 15% से घटाकर 3% करना, भावी राष्ट्रीय बजट के लिए ये मॉरिशस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के समक्ष रखे गए सबसे साहसिक

प्रस्तावों में से एक है। ऑपरेशंस प्रमुख सैमुएल मोजों का मानना है कि ये मांग उचित है और ये MMA का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि उनके अनुसार औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। इस

0: के लिए लाभदायक साबित होंगे। डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपने तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आईसीटी मंत्री के बयान पर अभी उदय को सुनते हैं।
1: मंत्री अविनाश राम तोहल ने कहा, हम ये सब कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, आईसीटी सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ा सके, इसके लिए एक बार फिर से ये अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। 2025 में कहा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, सरकारी कार्यक्रम में आईसीटी ब्लूप्रिंट में कहा गया था, उल्लेख किया गया था कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में आईसीटी डिजिटल ब्रिज होगा। यही हमारा मिशन है, इसी पर कार्य कर रहे हैं।
2: Towards economic reconstruction. Et c'est ça nos missions et c'est sur ça que nous travaillons.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मोरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ, खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस, रोमानिया, फ्रांस, भारत, यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। ये पिछले 2009 से पेश आया सबसे बदतर गैस धमाका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लापता हुए लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाएंगे। खदान के अंदर इंफ्रारेड कैमरे और रोबोट्स भेजे गए हैं। पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आखिर में चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो आज दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। उधर स्थिर बादलों के एक झुंड का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर बारिश होती रहेगी और ख़ासकर पूर्वी, दक्षिणी तथा सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज़ हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद और रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा की परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी तथा इनका असर पश्चिमी, दक्षिणी लगूनों और साहिली इलाकों पर भी पड़ेगा, खासकर हाई टाइड के दौरान। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों और आम जनता से ऊंचे समंदर तथा इन लगूनों और तटीय इलाकों में भी न जाने की सलाह दी जाती है, जबकि देर दोपहर बाद समंदर की स्थिति बेहतर होगी। तापमान सभी प्लेटों पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहली इलाकों पर

न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:35 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर 5.3% तक पहुंच सकती है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले के खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजन हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 22 सेंट फ्रांसवा जावियर पोर्ट लुइस में, इकहत्तर साल की 71 ईयर्स ओल्ड की मिसेज नाजमा बी कुवर मलू, पैदाशी नाम कुवर, जो नाजमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे के मकान नंबर 22 सेंट फ्रांसवा जावियर पोर्ट लुइस से उठा कर पहले नमाजी जनाजा के लिए रिश्ते की सैयदीमा गुसल आज़म मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 9:15। रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री बसंत तैयब, जो मोती नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री सत्यन तैयब के मकान रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। बिरला रोड कोतेज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्मावती लक्ष्मण रॉय, पिताशी नाम बीचू, जो गीता नाम से ज़्यादा जानी जाते थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके बेटे श्री किरण बिचू के मकान बिरला रोड कोतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काहो मौत है पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड रिवियर दे क्रियोल में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजवंती बंधु, पैदाशी नाम दूचुआ, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री राजीव बंधु के मकान महात्मा गांधी रोड रिवियर दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोक्यूस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 3 PM। रेल रोड रिवियर डू पोस्ट में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री लालमन जीमिला, जो रोशन मंगोल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके भाई श्री मयूर जीमिला के मकान रोड रिवियर ड्यू पोस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डियर 1 PM। सीनफात मेलविल गोंगोब में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दिव्यांती जीवन, जो तारा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे के मकान सीनफात मेलविल गोंगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची पेचराफा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूरी एट 1:30 PM। जागीसा लेन गो कायू में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री लालचंद सुना की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री आकाश सुना के मकान जागीसा लेन गो का यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेची थ्रीविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM अवेन्यूसमान सैंपल फिनिक्स में, अवेन्यूसमान सैंपल फिनिक्स में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती श्रीमती द्रौपदी गोबिन, श्रीमती श्रीमती द्रौपदी गोबिन, पैदाशी नाम उलास जो श्रीमती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री सुदेश गोविंद के मकान अवेन्यूसमान सैपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM गंगादू लेन अपरवेल में, गंगादू लेन अपरवेल में 47 साल की 47 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अल्विना गंगादू, श्रीमती अल्विना गंगादू पैदाशी नाम अपादू जो अल्विना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनके पति श्री सूबी गंगादू के मकान गंगादू लेन अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो वुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:09 AM कन्हाई लेन लाफ्लोरा में, कन्हाई लेन लाफ्लोरा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती नीलावती सुरुजबाली महादेव, श्रीमती नीलावती सुरुजबाली महादेव जो रीता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे इनके बेटे श्री उमेश महादेव के मकान कन्हाई लेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM ग्रांड बाफों लालमाटी में, ग्रांड बाफों लालमाटी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती हेवंती देवधारी, श्रीमती हेवंती देवधारी पैदाशी नाम जोगी जो पार्वती रानी तकुराइन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 10 बजे, केयर थी आज दिन के 10 बजे के बेटे श्री प्रकाश देवधारी के मकान गाँव बाफो लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू काथोबोन में, नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू काथोबोन में 96 साल के 96 ईयर्स ओल्ड श्री देवदत्त गोखुल, श्री देवदत्त गोखुल जो तो गौसो नाम से ज़रा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM लतापी रोड बोनाकय में, लतापी रोड बोनाकय में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री सूरज आनंद घुमारिया, श्री सूरज आनंद घुमारिया जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और नेशनल ऑडिट ऑफिस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे की पत्नी श्रीमती सुनीता घुमारिया के मकान लातापी रोड बोना कैसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM श्वाजी बेजुकाप में, श्वाजी बेजुकाप में 40 साल के 40 ईयर्स ओल्ड श्री अजीव हारी, श्री अजीव हारी जो दावा नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे की माँ श्रीमती संताबाई इतू के मकान श्वाजी बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए समौते बेजुकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM उत्तम जगन रोड कौदे पेशर ग्रांड रिवर साउथ ईस्ट में, उत्तम जगन रोड कौदे पेशर ग्रांड रिवर साउथ ईस्ट में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज फूरा, श्री मनोज फूरा जो जीतन नाम से ज़्यादा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान उत्तम जगन रोड कौदे पेशर ग्रांड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

today at noon. Royal Road Equia me Royal Road Equia me 67 saal ke 67 years old Shri Dayadat Rajwanti Shri Dayadat Rajwanti जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के मकान रॉयल रोड एक वायु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। वन शक्ति माता स्ट्रीट पेची बेलिया में वन शक्ति माता मंदिर स्ट्रीट पेची बेलिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवंती देवलाल पैदाशी नाम पूरन जो माताजी देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री बिसुंदयाल देवलाल के मकान वन शक्ति माता मंदिर स्ट्रीट पेची बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछली बिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इंग्लैंड में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री राजीव कुमार गोपाल जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले HSBC में मैनेजर थे इनकी मृत्यु हो गई हैं कि इनका अंतिम संस्कार बुधवार 27 मई को दिन के 3:30 बजे इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। इस स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 का द एंड। आर्सेनल चैंपियन बना, लीग टाइटल 22 साल बाद। चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला और लिवरपूल। यूरोपा लीग स्पॉट बोर्नमुथ और सन्डरलैंड के लिए, और ब्राइटन कॉन्फ्रेंस लीग में होगा। और टोटनहम हॉटस्पर बच गया, पर अफसोस वेस्टहैम यूनाइटेड को प्रीमियर लीग को अलविदा कहना पड़ा। वैसे कल अलविदा कहने वाले अनेक थे, मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन और पेप गार्डियोला। कल के मैचों में क्रिस्टल पैलेस 1, आर्सेनल 2। अगले हफ्ते में यूरोपियन फाइनल के कारण दोनों टीमों में काफी बदलाव लाए गए। अनेक खिलाड़ी आराम कर रहे थे। आर्सेनल का युवा खिलाड़ी मार्कस डोमन, जो टाइटल जीतने के बाद आज स्कूल जाएगा, प्रीमियर लीग में एक मैच में शुरू से खेलने वाला सबसे जवान खिलाड़ी बना। गोल गैब्रियल जेसस और नोनी माडुएकी की ओर से, जबकि क्रिस्टल पैलेस का गोल मातेता ने स्कोर किया। आर्सेनल को प्रीमियर लीग ट्रॉफी दी गई। अब क्रिस्टल पैलेस के लिए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल बुधवार को और आर्सेनल के लिए चैंपियंस लीग फाइनल सैटरडे को, शनिवार को, पारी सेंट जर्मेन के खिलाफ। ब्राइटन 0, मैनचेस्टर यूनाइटेड 3। दोगु एम्बुमो और फर्नांडेज का एक एक गोल। माइकल कारिक के लिए परमानेंट मैनेजर बनने का तोहफा। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन ब्रूनो फर्नांडेज के लिए प्रीमियर लीग असिस्ट का ऑल टाइम रिकॉर्ड। हार के बावजूद ब्राइटन के लिए ब्राइट सीजन। ब्राइटन अगले सीजन खेलेगा कॉन्फ्रेंस लीग में। बर्नले 1, वुल्व्स 1 रिलेगेट हुई दोनों टीमों को का ड्रो मैच। प्रीमियर लीग को बाय बाय। फुलहम 2, न्यूकासल यूनाइटेड 0। लिवरपूल ने अपना मैच ड्रो किया 1-1 ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। मोहम्मद सलाह के पास पर जोन्स का गोल। मोहम्मद सलाह का फेयरवेल मैच रहा एंडी रॉबर्टसन का भी। इस ड्रो से लिवरपूल अगले सीजन के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई। इमोशनल नाइट एनफील्ड रोड में, बहुत आंसू बहे, खासकर इजिप्शियन किंग मोहम्मद सलाह के लिए, गॉड ऑफ ऑनर सलाह और रॉबर्टसन के लिए। मैनचेस्टर सिटी की हार। मैनचेस्टर सिटी 1, एस्टन विला 2। पेप गार्डियोला का आखिरी मैच सिटी के साथ। एंटोन सेमेन्यो का गोल रहा, फिर विला के लिए ओली वाटकिंस का डबल। 593 मैचों के बाद पेप गार्डियोला सिटी को छोड़ रहा है। सिटी के लिए

20 ट्रॉफीज जीत पाया। सिटी के कप्तान बर्नार्डो सिल्वा को भी अलविदा कहा गया। नॉटिंघम फॉरेस्ट एक, बोर्नमुथ एक, इस ड्रो के साथ बोर्नमुथ की टीम यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई। अगर एस्टन विला की हार होती और लिवरपूल की जीत, तब बोर्नमुथ अपना मैच जीतकर चैंपियंस लीग टिकट ले पाता, पर ऐसा नहीं हुआ तो अब यूरोपा लीग टिकट से खुश। ऐतिहासिक यूरोपियन क्वालिफिकेशन, मैनेजर एंटोनी इराओला का फेयरवेल मैच दी चेरीज के साथ। संडरलैंड 2 चेल्सी 1, संडरलैंड यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई जबकि चेल्सी यूरोप में नहीं खेलेगा अगले सीजन। टोटनहम हॉटस्पर 1 एवर्टन 0, पाल्हिना का गोल। रिलेगेशन से बचने के लिए केवल एक अंक चाहिए था, सोने पे सुहागा जीत के साथ स्पर्स बच गए, पर वेस्ट हैम यूनाइटेड नहीं बच पाया। लीड्स पर 3-0 की जीत के बावजूद दी हैमर्स रिलेगेट हो गए। अगले सीजन चैंपियनशिप में खेलेंगे बर्नले और वुल्व्स के साथ। इसी के साथ प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 पूरा हुआ। प्रीमियर लीग टाइटल आर्सेनल के नाम, वो भी 22 साल बाद। पेप ग्वार्डियोला और मोहम्मद सलाह प्रीमियर लीग के दो लेजेंड जा रहे हैं। माइकल कारिक के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिवाइवल, पुनः जागरण और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। खराब सीजन लिवरपूल के लिए, पर जैसे तैसे चैंपियंस लीग में जा पाए द रेड्स। एस्टन विला का ड्रीम सीजन, यूरोपा लीग चैंपियन और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। बोर्नमुथ, संडरलैंड और ब्राइटन यूरोप के लिए क्वालिफाई हुए। वेस्ट हैम यूनाइटेड, वुल्व्स और बर्नले रिलेगेट हुए। ब्रूनो फर्नांडेज के लिए गोल असिस्ट रिकॉर्ड और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। आर्सेनल का गोलकीपर गोल्डन ग्लोव अवार्ड। अर्लिंग हालैंड टॉप स्कोरर। अब 22 अगस्त को प्रीमियर लीग की वापसी होगी, मतलब वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद 33 दिन बाद, 33 डे रेस्ट पीरियड। लीग वन प्रमोशन प्ले ऑफ में बोल्टन ने 4-1 से स्टॉकपोर्ट को हराया। बोल्टन अब लीग चैंपियनशिप में होगा। स्पेन के ला लीगा में एक मैच था, विलारियल ने 5-1 से एथलेटिको मैड्रिड को हराया। इटली के सेरी आ के मैच कल खेले गए, आखिरी मैच। पाउमा 1 सासुओलो 0, नापोली 1 उडिनीजे 0, एसी मिलान की हार, कागलियारी ने उसे 2-1 से हराया। कोमो ने क्रिमोनेजे को 4-1 से हराया। वेरोना 0 एएस रोमा 2, लेचे 1 जेनोआ 0, टोरिनो 2 यूवेंटुस 2। इस प्रकार इंटर मिलान चैंपियन, नापोली एएस रोमा और कोमो चैंपियंस लीग में, एसी मिलान यूवेंटुस यूरोपा लीग में, अटलांटा कॉन्फ्रेंस लीग में। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के कैनेडियन ग्रैंड प्री में एंटोनेली की जीत। मर्सिडीज का उसका साथी जॉर्ज रसेल लैप 30 में रुक गया, तब जाकर एंटोनेली की जीत हुई। ये एंटोनेली की चौथी जीत है, फोर्थ विन। टेनिस, फ्रेंच ओपन के फर्स्ट राउंड में ही एमा रादुकानू की हार हुई। अर्जेंटीना की सुलाना सियेरा ने रादुकानू को हराया। कल बेंसिच, वेरेज, एंड्रीवा, जोकोविच, कचानोव, बाचिस्ट, मेंसिच जैसे खिलाड़ी जीत पाए। क्रिकेट, आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज पूरा हुआ। प्लेऑफ का आखिरी स्पॉट राजस्थान रॉयल्स जीत गया मुंबई इंडियंस को हराकर। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी केवल 4 रन पर आउट हुआ। जोफ्रा आर्चर के ऑलराउंड परफॉर्मेंस से राजस्थान की जीत हुई। अब पहला क्वालिफायर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच, 26 मई को खेला जाएगा, जो जीतेगा फाइनल में। फिर एलिमिनेटर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो जीतेगा सेमीफाइनल में, जो हारेगा आउट। फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वैसे कल दिल्ली कैपिटल्स की भी जीत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 समाप्त। आर्सेनल चैंपियन, जैसे तैसे लिवरपूल चैंपियंस लीग में पहुंच पाया। टोटनहम हॉटस्पर बच गया, पर वेस्ट हैम यूनाइटेड रिलेगेट हो गया। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 7:12 हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सबको। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सुबह का कार्यक्रम, सुबह का नजराना प्रोग्राम। जी हाँ, जहाँ हर नए दिन एक खूबसूरत सोच और विचार के साथ हम आते हैं। कहते हैं ना, जीवन एक अनमोल उपहार है दोस्तों। कभी इसमें खुशियाँ की बहार होती है तो कभी संघर्ष की आंधियाँ, लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को समझने का, दूसरों की मदद करने का और अपने सपनों को सच करने का। जीवन का असली सुंदरता इसी बात में है दोस्तों कि हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। तो चलिए, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक। आप भी साथ निभाइएगा खूबसूरत गानों को लेकर। अभी के लिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी जुमैन जी से।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: झूठा आनंद आदमी को कठोर और अहंकारी बना देता है और वह आनंद दूसरों को नहीं दिया जा सकता। सच्चा आनंद आदमी को दयालु और समझदार बनाता है और उस आनंद का और लोग भी सदा लाभ लेते हैं।

7:25 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। जी हाँ, खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर, और मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहाँ सुनाने जा रहे हैं आपको रेडियो सुर्खियाँ। जी हाँ, अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और 8 बजे भोजपुरी समाचार, समाचारों के बाद जी हाँ आपकी राशि, और आपकी राशि के बाद हमारी धरोहर कार्यक्रम 8:50 पर, 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद नीतुषा प्रस्तुत करेगी आज की चर्चा प्रोग्राम, और 10 बजे संक्षिप्त समाचार, इसके बाद भक्ति धारा प्रोग्राम जिसके दौरान आप सुन पाएंगे मानस मंथन कार्यक्रम डॉक्टर विनू अरुण जी के साथ, 11 बजे संक्षिप्त समाचार, और समाचारों के बाद साइदा सुबाई की प्रस्तुति में शामी फरोजन प्रोग्राम। जी हाँ, 12 बजे आप सुनेंगे मराठी प्रोग्राम मिसेस दरमिया के साथ, आरएससी द्वारा दोपहर के 1 बजे से 1:45 तमिल प्रोग्राम, रत्ना के साथ आप सुनेंगे रंगारंग प्रोग्राम इसके बाद, और 2 से 2:30 बजे तक चाइनीज प्रोग्राम, 2:30 से 4 बजे तक भूलिएगा नहीं आपका मनपसंद प्रोग्राम सुमिता की प्रस्तुति में आप सुनेंगे आपकी पसंद प्रोग्राम, और इसके बाद 4 बजे सिटीज कार्यक्रम, 4:15 बजे राजेंद्र के साथ तेलुगु प्रोग्राम आप सुन पाएंगे, और गिनीशा प्रस्तुत करेगी शाम के 5:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम, 6 बजे समाचार, समाचारों के बाद चाइनीज प्रोग्राम, और पुवाना द्वारा तमिल प्रोग्राम रात के 7 बजे से 7:30 बजे तक, वंदना प्रस्तुत करेगी स्वराला वेदिका तेलुगु प्रोग्राम 7:30, 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम नितिन बापू की प्रस्तुति में, और रोशनी द्वारा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम

रविवार रात के 8:10 पर और आज रात के 8:40 साइदा सुबह के साथ महफिल शब प्रोग्राम, 9:00 भोजपुरी तड़का प्रोग्राम किरण जान की प्रस्तुत करेगी और विकास गौर के साथ रात के 11:00 आप सुनेंगे सुनहरे पल प्रोग्राम रात के 12:00 तक और रात के 12:00 से कल सुबह के 6:00 तक आप एंजॉय कर पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

श्रोताओं, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत बहता है तो कभी तेज लहरों से टकराता है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे अंधेरा और संघर्ष मिलता है, लेकिन वही बीज हिम्मत नहीं हारता, धीरे धीरे अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर वही कठिनाइयाँ उसे मजबूत बनाती हैं। अगर हम हर दिन उम्मीद और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो जीवन हमें नई रोशनी और नई मंजिल ज़रूर देता है। इसलिए जीवन को मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है।

8 बजने को है दोस्तों, और चलिए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी, क्योंकि हर सोमवार जो कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं आपको पसंद है। एक और खूबसूरत छोटी सी कहानी आपके लिए। एक राजा को अपनी दौलत और शक्ति पर बहुत अहंकार था। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। एक दिन राजा जंगल में रास्ता भटक गया। भूखा और प्यासा होकर वो मदद मांगने लगा। तब एक गरीब वृद्ध ने उसे पानी और भोजन दिया। राजा ने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जंगल में ना कोई राजा होता है ना गरीब, यहाँ सब सिर्फ इंसान होते हैं। ये बात सुनकर राजा का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार और विनम्रता होती है, ना कि उसकी दौलत या शक्ति। चलिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार करना बेकार है। चलिए अहंकार को छोड़ते हैं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं।

7:54 हुई है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया इस कार्यक्रम, और जहाँ पर भी आप जाएं आज का दिन और हमेशा बस सलामत रहो। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना सुनिए, और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

नमस्ते प्रियशभा, भोजपुरी के समाचार। दुनिया के कई गो अन्य देश नियन मॉरिशस में भी इन्फ्लेशन एगो बहुत बड़ा समस्या बनल बाटे। बैंक ऑफ मॉरिशस के एगो हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई गो आर्थिक ऑपरेटर आर विशेषज्ञ लोग के ई मानना है कि अवत एक आध महीना के दौरान दाम बढ़े सकी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कमती हो और परिवार लोग पहले के तुलना में समान वेतन से कमती चीज किनी सकियन जाए। अध्ययन में हर दूगो जना में से एगो व्यक्ति के ही मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थिति के कारण देश में इन्फ्लेशन के वर्तमान स्तर बहुत ऊंचा है। जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के ही अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटर लोग दावा कर ले बन जा कि दिसंबर 2026 ले इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% पर ही पहुँच सकी। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान के एगो नवा चरण शुरू हुआ था, जे ई बरिस के नवंबर महीना के आखिर ले चली। ई पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के है। भले ही ठंडा के मौसम में देश में ऊर्जा की मांग गर्मी की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कमती रहेला, फिर भी जागरूकता पर ही बल देवल जाता, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिरता के कारण जहाँ पर ईंधन की आपूर्ति में बाधा आवता। ऋतु विज्ञान केंद्र आज फजर के मॉरिशस खातिर ऊंचा लहर की चेतावनी जारी कर ले बटे, जे आज दिन के 12 बजे तक लेबर करार रही। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंचा लहर उठे सकी, जगह

0: असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाका पर भी पड़ सकी। एक खातिर से मछुआरा लोग, समुद्री गतिविधि में संलग्न ऑपरेटर लोग और आम जनता से दूर समंदर में नहीं निकले के और इस सब तटीय इलाका में सावधानी बरते की मांग करल जाता। मंत्रिमंडल मोटका पानी की स्थिति में देश में लागू करल जाए होला गो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल खातिर मंजूरी देले बाटे। कर अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होए के संगे ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी लोग के काम पर ही जाए की अनिवार्यता नहीं रही। आज जो लोग पहले से ही नौकरी स्थल पर ही मौजूद रहियन जा तो लोग के घर वापस जाए के अनुमति रही। हबीले ई कदम खातिर मौसम विभाग देने से जारी करल जाए होला चेतावनी पर्याप्त नहीं रहल आर मोटका पानी के स्थिति में कंपनी लोग के क्राइसिस कमिटी के कम्युनिके के इंतजार करत रहल। श्रम मंत्रालय आर श्रमिक संघ लोग के अनुसार ई फैसला से नौकरी क्षेत्र में एगो अन्याय के सुधारल गल है। सऊदी अरब में मौजूद 1,500 गोमरेशन हाजी लोग कल रात के मक्का से निकल के मीना शहर में गल हवन जा, जहां परी आज के पूरा दिन उ लोग हुए परी बितैयन जा। हज के अदायगी खातिर मीना पहला मरहला है। ई बरिस के दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी लोग इस्लाम की पांचवा फर्ज अदा करे खातिर गल हवन जा। काल मंगर के सबसे अहम दिन रही यौम अरफात, जहां सब हाजी लोग मैदानी अरफात में जमा हो जा। हज के मिशन के मुताबिक सब तैयारी पूरा करल गल है, जेमे ई हज यात्रा मर्शन हाजी लोग खातिर यादगार रही। दूसर देश के खबर में उत्तरी चीन में कोयला के गो खदान में होल धमाका से कम 82 जना के मौत होल बाटे और अन्य कई जना लापता होल बाटे। और उधर पाकिस्तान में सैनिक लोग के ले जावे होला एगो ट्रेन के निशाना बना के को हमला करल गल है, कम से कम 20 जना के मौत होल बा। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तो हर ध्यान खाते धन्यवाद।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मरनी की खबर सुने जा। नंबर 22 सेंट फ्रांसवाज जावी पोर्ट लुइस में 71 बरिस के 71 के मिसेस नाजमा बी कुवर मलू, मिसेस नाजमा बी कुवर मलू पिदाशी नाम कुवर जे नाजमा नाम से जस्ती जल जात्रलन, उनकर इंतकाल हो गल बा। उनकर जनाजा आज दिन के 12:15 बजे उनकर जनाजा आज दिन के 12:15 बजे उनकर घरी नंबर 22 सेंट फ्रांसवा जावी पोटलुई से उठा के पहली नमाज जनाजा खातिर अगस्टिया के सैयदीमा गुसल आजम मस्जिद ले जाल जाए फिर दफना खातिर अगस्टिया के कब्रस्तान। रामा रोड शामुनी में 79 बरिस की 79 के श्री बसंत तैयब जे मोती नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा श्री सत्यन तैयब के घरे रामा रोड शामुनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौगोपा शामुनी की श्मशान भूमि ले जाल जाए। बिरला रोड कोटेज में 73 बरिस की 73 के श्रीमती पुष्मावती लक्ष्मण रॉय, श्रीमती पुष्मावती लक्ष्मण रॉय पेजाशी नाम बेचू जे गीता नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री किरण बेचू के घरे बिरला रोड कोटेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर काओ मौत है पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। महात्मा गांधी रोड रिविया दे खयोल में 79 बरिस के 79 के श्रीमती राजवंती बंधु, श्रीमती राजवंती बंधु पिताशी नाम दू चुआ गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर बेटा श्री राजीव बंधु के घरे महात्मा गांधी रोड रिविया दे खयोल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉइंट फोकिस के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड रिविया जुपस्ट में 54 बरिस के 54 के श्री लालमन जी मिला जे रोशन मंगोल नाम से जस्ती जाल जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर भाई श्री मयूर जी मिला के घरे रॉयल रोड रिविया जुपस्ट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रोज बेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। सीन फात मेलविल गांव में

65 बरिस केशवा संसाई कौके श्रीमती देवयंती जीवन, श्रीमती देवयंती जीवन जे तारा नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा उनकर खरे सीन फात मेलविल गाँव गोप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर डा हुई जी पेचे के शमशान भूमि ले जा जाए। जागे सौ लेन गो का यू में 75 बरिस के श्वासन कह जौके श्री लालचंद सुना, श्री लालचंद सुना गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे, उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री आकाश सुना के घरे जागे सौलेन गोकायु से उठा के अंतिम संस्कार खतीर पिछित गया की श्मशान भूमि ले जाल जाए। एवेन्यू ओस्मान सैंपल फिनिक्स में 78 बरिस के श्वासन जीवित के श्री श्रीमती श्रीमती द्रौपति गोविंद, श्रीमती श्रीमती द्रौपति गोविंद पैदाशी नाम उलाश जे श्रीमती नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे, उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री सुदेश गोविंद के खरे एवेन्यू ओस्मान सैंपल फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाल जाए। गंगादू लेन अपवेल में 47 बरिस के कावन सैतों के श्रीमती अलवीना गंगादू, श्रीमती अलवीना गंगादू पैदाशी नाम अपादू जे अलवीना नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 9:09, उनकर माटी आज फजर के 9:09 उनकर पति श्री सुबी गंगादू के घरे गंगादू लेन अपवेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेल मौगुद लेंस के श्मशान भूमि ले जाल जाए।

कन्हा लेन लाफ्लोगा में 76 बरिस के 76 ओं के श्रीमती नीलावती सुरुजबाली महादेव, श्रीमती नीलावती सुरुजबाली महादेव जरीता नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के 10 बज के आधा, उनकर माती आज दिन के 10 बज के आधा, उनकर बेटा श्री उमेश महादेव के घरे कन्हाई ले इन लाफलोगा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव बाके शमशान भूमि ले जा जाए। गाँव बाफों लालमाती में 73 बरिस की 73 ओं के श्रीमती हेवंती देवधारी, श्रीमती हेवंती देवधारी पैदाशी नाम जोगी जे पार्वती रानी ठकुराइन नाम से जस्ती जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माती आज फजर की 10 बजे, उनकर माती आज फजर की 10 बजे, उनकर बेटा श्री प्रकाश देवधारी के घरे गाँव बाफू लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लालमाटी के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू 81 में 96 बरिस की 96 ओं के श्री देवदत्त गोखुल, श्री देवदत्त गोखुल जे तों गौसों नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बजे, उनकर माटी आज फजर के 10 बजे, उनकर घरे नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कथबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। लतापी रोड बोना कय में 60 बरिस की 60 के श्री सूरजानंद घुमारिया, श्री सूरजानंद घुमारिया जी सूरज नाम से जस्ती जान जात रहलन आर नेशनल ऑडिट ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे, उनकर माटी आज दिन के 11 बजे, उनकर पत्नी श्रीमती सुमिता, श्रीमती सुनीता घुमारिया के घरे लतापी रोड बोना कैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर लतापी के श्मशान भूमि ले जाल जाए। श्वाजी बेजुकाप में 40 बरिस के 41 के श्री अजीव हारी, श्री अजीव हारी जे दावा नाम से जैसे जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे, उनकर माटी आज दिन के 11 बजे, उनकर माशमती शांताबाई तू के घरे श्वाजी बेजुकाप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सहमत है बेजुकाप के श्मशान भूमि ले जाल जाए। उत्तम जगन रोड कौंदी पेश ग्रैंड रिवियर सुद एस्ट में 56 बरिस के 56 ओं के श्री मनोज फूरा, श्री मनोज फूरा जे जीतन नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे, उनकर माटी आज दिन के 12 बजे, उनकर घरे कौंदे पेशय ग्रैंड रिवियर सुद एस्ट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड इक्वायो में 67 बरिस के 67 ओं के श्री दयादत्त राजवंती, श्री दयादत्त राजवंती जे रमेश नाम से जस्ती जान जात रहलन, गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के मकान रॉयल रोड इक्वायो से।

0: उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जा जाए। वन शक्ति माता मंदिर स्वीत पेची बेले में 77 बरिस के शासन जी सैतों के श्रीमती देवंती देवलल पैदाशी नाम पूरन जे माता जी देवी नाम से जस्ती जाल जात्रालन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति श्री बिसुंदयाल देवलल के घरे वन शक्ति माता मंदिर स्ट्रीट पिची बेलिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पिची बेलिया के श्मशान भूमि ले जाल जाए। इल्फोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के सैतों के श्री राजीव कुमार गोपाल जो राजीव नाम से जस्ते जान जात रहलन और पहले HSBC में मैनेजर रहलन गुजर गल हवन उनकर अंतिम संस्कार 27 मई के दिन के 3:00 इंग्लैंड में ही करल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के संगे हमनी के संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

आज बजकर 22 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। और चलिए, सुबह का नजराना प्रोग्राम के इस दूसरे भाग में हम आ गए हैं और यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। कहीं मत जाइएगा,

0: साथ दीजिए।
1: आपकी राशि रेडियो मोशन, रेडियो मोशन पर। एरीज, मेष राशि।
0: मेष राशि सप्ताह आपके जीवन में काम और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से सब संभालेंगे। लेकिन जिम्मेदारी मिलने के योग है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, पर जल्दबाजी और गुस्से से बचें, वरना बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में थकान, सिर दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: आर्थिक स्थिति में सुधार के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और नए अवसर भी मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। किसी मित्र या संबंधी से सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन भोजन में संतुलन और नियमित व्यायाम जरूर करें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: आपकी सोच और बुद्धि इस सप्ताह आपको सफलता की तरफ ले जा सकती हैं। नई योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन ध्यान भटकने या अनावश्यक बातों में उलझने से नुकसान हो सकता है। पढ़ाई या काम में एकाग्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य में थकान, निद्रा या मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: इस सप्ताह आप भावमुक्ता अधिक महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। पुराने संबंध मजबूत होंगे, लेकिन किसी बात को लेकर चिंता भी हो सकती है। फैसले सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी या मन की चंचलता हो सकती है, इसलिए संतुलित भोजन और विश्राम जरूर करें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफ़ेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: सिंह राशि वालों के लिए आपका आत्मविश्वास की इस सप्ताह काफी बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। काम में सफलता मिलने के योग हैं और नए अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन अहंकार या अधिक घमंड से दूर रहना जरूरी है, वरना संबंधों में तनाव और हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य और ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से बचे। लकी नंबर है 1, लकी कलर है नारंगी।
1: वर्गो, कन्या राशि।
0: कन्या राशि वालों के लिए काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के योग है। स्वास्थ्य में थकान, कमर दर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। समय पर आराम लेना और दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा, तुला राशि।
0: इस सप्ताह जीवन में संतुलन बना रहेगा। नए लोगों से मिलने और संपर्क बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में लाभदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लकी नंबर है 7, लकी कलर है नीला रंग।
1: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
0: वृश्चिक राशि, आपको इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता थोड़ी विलंब से मिलेगी। आपकी सोच गहरी होगी और आप मुश्किल समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। स्वास्थ्य में थकान या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए विश्राम जरूर करें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है लाल रंग।
1: सजिटेरियस, धनु राशि।
0: धनु राशि, भाग्य का पूरा सहयोग मिलने के योग है। यात्रा या धार्मिक

0: सभी कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: भाग्य का पूरा सहयोग मिलने के योग है। यात्रा या धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, इसलिए आराम और संतुलन दोनों जरूरी है। लकी नंबर है 4, लकी कलर है काला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: नई सोच और नए अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन में बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। लकी नंबर है 11, लकी कलर है नीला रंग।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह मन शांत और प्रसन्न रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आपको अंदर से सुख और शांति का अनुभव होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन अच्छे गुजरेंगे। लकी नंबर है 7, लकी कलर है सफेद रंग। तो प्यारे दोस्तों, अभी के लिए आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने साथ दिया। चले किशोरदा की आवाज़ में ये गाना और इस खूबसूरत सिलसिला को हम जारी रखते हैं।

नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गाना। आज हम एक ऐसे गाने पर बात करेंगे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एहसास है। नाम गुम जाएगा। जिंदगी के सफर में कई रिश्ते, कई चेहरे और कई यादें हमारे साथ चलती हैं। कुछ पल हमें हमेशा याद रहते हैं और कुछ धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। ये गीत हमें ये संदेश देता है कि इंसान का असली वजूद उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी यादों, उसके प्यार और उसके अच्छे कर्मों से होता है। नाम भले ही मिट जाए लेकिन अच्छाई कभी नहीं मिटती। इसलिए ज़िंदगी में ऐसा कुछ करो कि जब आप यहाँ ना भी हो तभी लोग आपको दिल से याद करें, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के दिल में जगह बना ले। सुनते रहिए और महसूस कीजिए इस गीत को। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सदमा फिल्म से लिया गया, जिंदगी को गले से लगाते हैं क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। सुरेश वाडकर की आवाज़ में

0: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे।
1: जी हाँ, एटीज के खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, पौने नौ बज चुके हैं और यहाँ पर कर्मा फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा गाना, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और इसके बाद हम सुन पाएंगे हमारे धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में कहीं मत जाएगा साथ दीजिए।
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊँ आई लव यू।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। दुनिया भर में हिंसा के रोके और शांति कायम करे खातिर संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना यूएन पीस कीपर्स एगो बहुत बड़ा भूमिका निभावेलन सा। शांति मिशन में अब तक हजारन गो सैनिक शहीद हो गल हवन सा। ऐसन वीर लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिर हर बरिस 29 मई के संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अंतर्राष्ट्रीय दिन मनावल जाला। ई बरिस जहाँ देखत है सा कि विश्व भर में युद्ध के प्रभाव पड़ता, विश्व भर एकर से बहुत पीड़ित बा, तो ऐसन में बहुत जरूरी हो गल बा ई सब यूएन पीस कीपर्स पर ध्यान देवे के। शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के एगो अहम संगठन है। शांति सेना के जवान लोग के तैनाती ऐसन इलाका में करल जला जहां हिंसा के मामला बढ़कल बा या बढ़ता, और एकर काम है हिंसा के मामला के रोके के और वहां पर शांति स्थापित करे के। ये लोग की तैनाती कठिन दूर दराज इलाका जहां पर विपत पड़ल बा वहां पर होवेला, जहां आम जनता के पहुंचला मुश्किल बा वहां पर ये लोग जालन सा। शांति सेना के गठन 29 मई 1948 में करा गया रहा। इस सेना के पहला मिशन इजराइल अरब शांति खातिर हो रहा, और अब तक दुनिया के 72 गो अलग अलग मिशन में ये सब शांति सेना के तैनात करा गया बा। ई सेना जोन 14 गो अभियान में शामिल बा, जोन 14 गो देश में शामिल हवन सा, वह अफ्रीका, एशिया और फिर भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, दक्षिण सूडान, साइप्रस, टीमो, कोंगो, सियेरा लियोन, लेबानन, पश्चिमी सहारा, माली, आईची और मध्य पूर्व। आज शांति सेना यूएन पीस कीपर्स के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के 87,000 जवान बा। इमें सैनिक, पुलिस और आम नागरिक शामिल हवन सा। इमें सबसे जस्ती दक्षिण एशियाई देश के जवान हवन सा, और इमें बांग्लादेश के 6,709, नेपाल के 5,700 और भारत के 5,500 जवान बा। एकर बाद पाकिस्तान, फिर भूटान और

0: श्रीलंका बा। शांति सेना के जितना भी खर्च आवेला ओकर जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश संभारेला। शांति सेना खातिर हर बरिस बजट जारी रहेला और एकर फैसला संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेवेला। 2021 से 2022 में शांति सेना में जोन बजट रहल उ 6.38 अरब डॉलर रहल और इमें सबसे जस्ती योगदान दिले रहल अमेरिका, चीन और जापान। और आज जोन महंगाई के चौखट पर हमने पहुँच कर ही जा हुआ पर कैसे ई सब पैसा के बजट करल जाए ई आज के सबसे बड़ा सवाल है। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

8:55 हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भोजपुरी गीत आपके नाम नीरज गुप्ता मधु की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की। और इसके बाद भूलिएगा नहीं, नीतूषा प्रस्तुत करेगी आज की चर्चा कार्यक्रम।

0: हम बिकारी प्यार
1: किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते देश विदेश की खबरें आपसे आदिति नमस्कार आपको।
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह मॉरिशस में भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के दौरान कीमतें बढ़ती रहेंगी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कम होगी और परिवार पहले की तुलना में समान वेतन से कम चीज़ें खरीद पाएंगे। इस अध्ययन में हर 2 व्यक्ति में से एक का मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में इन्फ्लेशन का वर्तमान स्तर ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के इस अध्ययन के आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सीबी और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिके का इंतज़ार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 अन्य जख्मी बताए गए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
4: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

0: जिंदगी में जिए खातिर हमनी के कौन चीज चाहेला? तीन चीज, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी तो हमनी के मिल जाला, हमनी मेहनत करीला स और मेहनत के फल मिलेला, और कपड़ा हमनी कीनीला स जे निमन से काम करब स, और जो नाशियाना बाते मकान बाते ओह मेहनत से मिलेला। तो जितना जना हमनी के देखत हवन सुनत हवन सब कोई के प्रणाम नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटे। लंदी के दिन है और आज हमनी खेती बाड़ी के बारे में बतियाए ला जा, और आज हमनी के विशेष मेहमान हवन फागे के जन अधिकारी हवन श्रीमान संजय शंभू। तचला इनकर स्वागत करी ला जा। शंभू जी तुम्हारा स्वागत बाटे, प्रणाम नमस्ते।
1: नमस्ते नीतूषा।
0: अच्छा, तो आज हमने एगो ऐसा टॉपिक पर बतियाब स, वह जन बायोफॉर्मिंग, एक पर हमने बतियाली है स। बायोफॉर्मिंग जहाँ पर हमने को रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल नहीं करीला स, तो बायोफॉर्मिंग में बायो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल हो लगत हला हमने ये बतियात रही स, और ई जन शब्दवा बाते तैमवा बाते एक पर तू बतियाले हवा। तो हमने आज यही पर बतियाब स, कई जना हमने के सुनेलन, ढेर जना सुनेलन, देखेलन, प्रश्न पूछे लन हमने जितना जितना चीज बताए राजा, और जे कुछ पूछे के बाद हवे से तोहरा बताए दे राजा कि 402-8-4-0-2-8-0-8-5 पर सब बजा फोन करे हमने के मेहमान हवन श्रीमान शंभू जी तुम्हारे प्रश्न के जवाब दियन बायो पेस्टिसाइड पर। तो सबसे पहला प्रश्न है बायो पेस्टिसाइड। जब बायो बोली राजा माने कि जैविक, जैसे कि बोली कोनो रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल नहीं होला, तो जन शब्द है बायो पेस्टिसाइड ई कौन सी है?
1: एक में दू गो शब्द जुड़ल बाते
0: जी,
1: एगो है बायो, एगो है पेस्टिसाइड
0: जी।
1: तो हर पेस्टिसाइड की तरह पेस्टिसाइड की अर्थात कुछ जी, पेस्टिसाइड यानी कि साइड से साइड बोला मारे के मुआई के,
0: अच्छा
1: किसी सुसाइड ला तो अपने आप के मुआला सा सुसाइड साइड, और पेस्टिसाइड पेस्ट यानी कि जो चीज हमने के खेती बाड़ी में हानि हानि आने ला, हानि हानि पहुँचावे ला
0: जी,
1: तो वो पेस्ट हो गल, वो चाहे पिलुआ हो, चाहे
0: कोनो बैक्टीरिया रहे, कोनो कुछ
1: घास हो रही था, हाँ। वो पेस्टिसाइड में गिरी तो ओके मारे खातिन घास की, तो अब स्पेसिफिकमा एबिसिड हो जाए, हर्बिसाइड हो जाए, पिलुआ के इंसेक्टिसाइड हो जाए, ये सब पेस्टिसाइड है। तो ज़्यादातर जैसे तू ही बोल देला ये सब रासायनिक रहेलन सब
0: केमिकल्स,
1: हाँ अब गन ला ये सब चीज के अब ये लोग के कंट्रोल करे के बाद, ये लोग के मैनेजमेंट करे के बाद, तो हमने जितना चीज प्रयोग करब जा अब ओकर में रासायनिक नहीं बातें
0: जी,
1: यानी कि बीयू हो गल, तो ओके बोल अब सब बायो पेस्टिसाइड कंट्रोल करे खातिर प्रयोग होता, लेकिन जो इन पदार्थ बातें वो बीयू बातें
0: जी जी। तो जब हमने पेस्टिसाइड के बात कर रहे थे जा इपर हमने बचैले है जब प्रताप जी जब आ रहे थे, तो संक्षिप्त में एक इतिहास के बारे में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल कब से होते आवा था?
1: ये बहुत साल हो गए भाई
0: जी,
1: आज पीछे मुड़ के देखब जा तो आगे मॉरिशस में जाता मलाया रहा
0: जी,
1: तब मलाया के ओके उसे लिपटे खाते हैं, तब एक फौजी के प्रयोग तो हाल दे देते और लेपुक में, तो मान ला तो यू तो पेस्टिसाइड हुए हो
0: ना,
1: खेती बाड़ी में नहीं प्रयोग होता, लेकिन मलाया के तो एगो पेस्ट की तब मारा था ना, तो उस समय से सोचला गनला ऐते बातें, तब ओकर एवोल्यूशन ऐसे होते बातें, तो ओकर बाद अनेक ऐसा पौजू आ जो देखनी जा जो ओकर में पर्यावरण के बहुत हानि पहुँचावेला, जैसे कि लानात बातें विभिन्न जितना जितना ऑर्गेनिज्म जितना निमन पिलुआ बातें, जैसे कि कोक्सिनेल, जैसे कि तितली बातें, तो ऐसे देखी ला सा कि ऐसा ऐसा पौजू आल की गनला सब चीज के मोइले जाता नाश करता, बिन देखे बिन बिन स्वाजिहाज नहीं मगर ना मर जाता, फिर ये सब पौजू देख ली जा कि हमने के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव है, प्रभाव करेला, तो कहते देख भाई को एवोल्यूशन होला कि पेस्टिसाइड आते रहेला, लेकिन जन ट्रेंड बाते तो हमने देखी ला जा कि जन सबसे सेफ बा, जन सबसे जन कमती हानि पहुँचाए, सब तो हानिकारक हुए बा, लेकिन कौन कमती हानि हानिकारक है ओके जस्ती अब और जैसी प्रयोग होला।
0: माने कि जस्ट जस्ट जन डेवलपमेंट होते गल मोरिस भर में, माने कि जैसे बोला था लाने कठोवा से ऊपर से आगे
1: आगे
0: से इस्तेमाल होवत रहा
1: चीज करे खाते।

0: पर ओकर नुकसान जो साइड इफेक्ट जैसे बोले हुआ साइड जो बातें नाच करे के बातें वो जो साइड इफेक्ट रहल वो हमनी के लोकल और वो ढेर चीज के नाच करल गल हमनी के जो निमन निमन ऐसे कुछ सब बातें वो लोग के नाच करते गल।
1: हाँ और जो साइड इफेक्ट बातें देखा हम दुगो चीज बोला कैसे दे देते बातें प्रयोग हल बा कॉन्टिनेंट्स पर ना यानी कि धरती पर
0: जी
1: माला ज्यादा धरती पर बना चाहे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में हो चाहे मॉरिशस में हो लेकिन ओकर प्रभाव एंटार्क्टिका के जोन पैंगुइन लोग रहेला
0: जी
1: ग्लासियर में वहाँ पर ही हुआ पर ही वो लोग में मिलल बाते। अब सोच ल आज ओकर प्रयोग धरती पर होल बाते तो समुद्र पार करके से हुआ कैसे गल
0: ई
1: तोरा बतावेला कि जब पेस्टिसाइड के प्रयोग होला तो ओकर प्रभाव खाली जहाँ पर प्रयोग होता हुआ पर ही नहीं है मैं दूर दूर में जला। आजकल बहुत ऐसा रिसर्च निकलल बाते जोन बोलेला कोनो कोनो देश बा जैसे जापान बा जैसे फ्रांस बा वो लोग के जोन बादल बादर बाते न्याज बाते ओकर में सोच ला पेस्टिसाइड बाते पानी बरसता ओकर में पेस्टिसाइड बरसता
0: इहो देखा गल बा इहो
1: सब देखल बा। अब एगो एगो एगो चीज एगो दूसरा चीज सोचा हमनी के जीवन में कभी ना कभी तो हमनी बीमार पड़ल हैं सा कभी ना कभी डॉक्टर के पास गल हैं सा कभी ना कभी एगो दवाई तो मिलल बा दवाई हमनी के ठीक करे खातिर लेकिन आज जैब निमन से पहरे ओकर जन ओकर
0: स्पेसिफिटीज जन
1: आवेला ओकर संगे वो शीत आवेला देखब तो कमे लिखेला साइड इफेक्ट्स
0: जी
1: कोनो वसन दवाई लेब ओकर साइड इफेक्ट्स सकेला नोजिया होला नोजी होला या पैर फूले लगेला अनेक प्रकार की साइड इफेक्ट वोमिसमा लगेला। अब हमें को प्रश्न पूछेला आज एगो दवाई जन तोरा ठीक करे खातिन ओकर में साइड इफेक्ट्स बाते तो जो नेगो जहर बा
0: अब सोचो कुछ
1: के मुआय खातिन प्रयोग करता
0: वो भी कुछ कोई हम किसी
1: की बोलियो का मैं साइड इफेक्ट्स नहीं रहेला वो कैसे
0: जस्ती
1: हाँ ऐसे अब चना सोचे के
0: जी ये सच्चे बात बोली है वह और उस सुन के सकेला ढेर जना अभी हैरान हो गए लांजा। हमने जब पेस्टिसाइड की बात करी लासा था खाली खेत कारों में पेस्टिसाइड खाली कारों में डाला जाला तो जो अभी उदाहरण दे ले हुआ वो सोचे पर मजबूर कर दे बिला कि नहीं जो पेस्टिसाइड है वो खाली कारों में नहीं होला सगरो बातें जो सोच बता।
1: हाँ एंटार्क्टिका के बोलनी पेंगुइन के बोलनी बादल हाँ। के बोलनी समुद्र में भी होला ए ये सब सकेला एगो दूगो शायद देकर में विचार आवेला जो जो हमने के कैसे बोला सा थोड़ा फूफा माल कर देवेला
0: जी जी जी किलो
1: जी मेरा फूफा माल कर देवेला एक वो ता पेस्टिसाइड के पीछे में एक मार्केटिंग है। हमने फागे के ओर से लाख सकब सब बोले कि देखा कल हला बोले ला जैसे पा आखिर में सब योजना अगर नहीं चला
0: जी तब नो सोल्यूशन नहीं बाते
1: तब प्रयोग कर अब सब लेकिन मार्केटिंग में देख बता सकेला कोई कोई मार्केटिंग करत हुई जानी ला सकते लंच सवाल कि प्रयोग करा प्रयोग करा तो एगो हाई होला। दूसरा है हमने के साइकोलॉजी ई पर हम जोर डालती देखा हम जब उदाहरण देनी एगो दवा जन पी लासा ठीक हो खातिन ओकर साइड इफेक्ट पर
0: जी।
1: लेकिन देखा कितना किसान लोग जब आवेला भेंट करे या एगो प्रश्न पूछे लंस बोलनस हमार खेत में एगो पिलवा बाते या एगो बीमारी बाते तो ओकर समाधान कैसे निकला आके तो सबसे कौन दवा डाल नहीं बोलना चाहे कौन पेस्टिसाइड डाल रहा है
0: हाँ।
1: तो ये सोच रहना बदले के क्योंकि भीतर में हमने के बुद्धि में जब हमने हाय शब्द के प्रयोग करते हैं जा कि देखा हाय हमके कुछ दवाएं चाहे ला तो अंदर ही अंदर हमने के हो पेस्टिसाइड करे कि वालों से गल दवाई के साथ यानी मेडिसिन के साथ
0: जी।
1: तो हमने जे जे ऐसे सोचेला वो लोग सोचेला जब कारों में जब खेत में एक स्प्रेइंग करते हो तो लोग दवाई डालते हो
0: माने कि दवाई डाल बट ठीक हो जाए
1: हाँ तो लोग नहीं सोचना कि जहर डालते हो और जहर जे पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन करेला वो सबसे पहला ओकर पर एक्सपोजर आते
0: जी। ये तो सच्ची बात बोली है वह तो फिर उसे याद दिला दे ला जा श्रोतागण दर्शकगण जे कुछ हो पूछे कि बा 402-80-85 पर लाइन खुलल बाटे हमने के सकब जा सकबा जा फोन करे। अच्छा शंभू जी हमने के बतावा जब पेस्टिसाइड बायो पेस्टिसाइड की बात करत हुआ तो कौन कौन चिप के बायो पेस्टिसाइड बातें हमने जाने ला जा नीम नीम हाँ। पर तो ढेर बतियाले हैं जा हवन जा प्रताप जी और कौन कौन नचिप बातें
1: अनेक प्रकार की बात सबसे पहला

0: शायद मॉरिशस में जो जो शायद है जो आल हल सकेला नीम वे के हुई नीम जैसे जाने ला तो उता हमने के पूर्वज लोग या आयुर्वेद में
1: बरसों
0: से दवाई भी की तरह पर प्रयोग हुआ बरसों से बातें
1: उकर पत्ता इस्तेमाल कर दिला सा
0: पत्ता इस्तेमाल हुआ पानी
1: हाँ सब
0: ता नीम एको कैटेगरी में हम नाला बोके बोला प्लांट एक्सट्रैक्ट खाली नीम ने बातें
1: जी
0: अनेक प्रकार के ऐसा वृक्ष पाते पौधा पाते जेकर में से ओकर एक्सट्रैक्शन करके ओकर
1: वैल्यू न्यूट्रिशनल जो बातें
0: नहीं ना ओकर ओकर मैटर एक्टिव निकाल सा और पसी बायोपेस्टिसाइड की तरह प्रयोग करते हैं सा फूड सप्लीमेंट की तरह नहीं ना हाँ तो जैसे कि धतूरा बाते वो प्रयोग हुआ बायोपेस्टिसाइड में जैसे कि सेफोरा बाते
1: इकालिप्चिस
0: जैसे कि क्रिसैंथेम समाता हाँ ढेर चीज़ बा इकालिप्चिस तुम बोल देना आजकल अभी हमने के मार्केट में एक आगो ऐसा बायोपेस्टिसाइड बा जो हल्दी से बनल बाते
1: अच्छा
0: मुरुम से बनल बाते
1: अच्छा
0: ऐसा ऐसा बाते तो हाई एगो कैटेगरी होल करना बोला प्लांट एक्सट्रैक्ट
1: जी
0: एक दूसरा कैटेगरी सा केला रहे जैसे जेकर में मिक्रोब बाते तो एकर में अब अनेक प्रकार के बा एक एक एकागो बा जैसे बासिलस बासिलस से बनल बासिलस थुरिंजेंजिस तो कर प्रयोग होला जो इन कैटरपिलर बाते एलव बाते ओकर ओके ओकर से लिपटे के
1: माने कि जितना चीज अभी जैसे बोल ले हुआ जो इन बाते जैसे नीम इकालिप्चिस अब सब को जो इन बाते वो सब एक प्रकार से काम करे लंस कि अलग अलग तरीका से अलग अलग जो बैक्टीरिया इ पर हमने बताया जा एगो जना हवन फोन कर ले हवन 402-80-85 उनका से बताया ला जा हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते भाई जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी बोला
2: श्रोताओं को नमस्ते हाँ एगो प्रश्न बा हम हर कुपी मा पुलोटीला हमारे को चीज ऑर्डर बा तब ही मुआ करिया हो जाला जब होला तो कई हला लारू की दिखली ऐलन जा देखी मैं सुमा बराबर
0: कौन मौसम में
2: इलाज कौन सी
0: कौन मौसम में
2: अलग
0: हाँ कौन मौसम है गर्मी के मौसम की ठंड के मौसम गर्मी के मौसम में अच्छा थे
2: हाँ पीमा कारीज थी पीमा सब
0: हाँ
1: अच्छा सुना
0: गर्मी के मौसम में जो मिर्च पाते तो उकर फूई के बोलता है जो महिला फोन कर ले वन उकर जो फूई बाते पीमा में तो एक टास्क कहते बोला जो गोल गोल रहेला लेकिन अगर अनेक रही तो सकेला लंबा दिखाई दे लेकिन शागन जरल बा सुखल बा तो एक बोला सा एंथ्रेक्नोज एंथ्रेक्नोज के जो एगो बीमारी है ओकर जो मिक्रोब है वो हमने के माटी में बाते
1: अच्छा
0: लेकिन कौन ची होला जब गर्मी के मौसम रहेला तो तापमान जो रहेला इतना ले
1: बढ़
0: जाला तो लोग से बोलते हुए चलान तब कौन ची होला आप एगो तू एक सिंचाई कर ला ऊपर से पानी गिराता या फिर टिप टिप पानी से आता या तो फिर बरसात हो
1: जी
0: तो औसन एगो स्थिति में जहाँ पर तापमान गन्ना ऊंचा उगल बाते और वो लोग रिवोल्टे होता तो जब पानी बचला तो का छिटका जन रहेला कौन ची हुई तो हमने के नहीं लौकेला लेकिन एगो माइक्रोस्कोपिक लेवल में आज देखब जा तो जन पानी जब लगल एक बूंद जब लगल नीचे माटी में
1: सब छटक जाला
0: छटक जाला तो छटक के ऊपर आवेला तो जन मिर्च बाते तो ओकर में लग जाला तो ओकर में अबरी कुछ कुछ होला हो मिखोबा अब ओकर में पड़ गल ना अब ओकर पर
1: अब दूसर के
0: बस जाला अब हाँ अब ओकर पर बड़ा हुई लगला तो ग्राफिक टिकला अबरी कुछ आज पानी बसल तो ओकरे में जब लगल तो वहाँ से छटक जाए या फिर अभी कुछ हवा आल तो ओके लेके चल जाए तो एकदम से कठिन जला ओके ओकर ओकर ओके कौन खोले करे के हम जितना खेती हर लोग बा जो मिर्ची के ओकर पैदावार के लंस हम लोग के भूलती पेस्टिसाइड तो अनेक बातें बियो पेस्टिसाइड भी अनेक बातें सो हम लोग के भूलती इस सब के पीछे नहीं भागे के जोन तोरा बोलनी ओकर में एगो चीज के बहुत एगो चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है उ है तापमान
1: जी
0: ता जे माटी के तापमान के स्टेबिलाइज़ करब
1: उ कैसे होई
0: ता उतना है आई समस्या नहीं होई उ कैसे होई पायास करब पायास करब मल्चिंग यानी कि मल्चिंग त खेत में और जितना मिर्ची के पौधा बा ओकर नीचे में पायास आज खूब करब और खास कर आगे ऑर्गेनिक प्याज रही घास सबके तब बाद में फिमिया हो जाए सर के
1: मानी कि अभी जैसे बोला था वो अभी चाची फोन कर ली हवन बोली हवन वो गर्मी के

0: मौसमी तो गर्मी के मौसम में जो माटीवा बाते ओकरा ठंडा चाहेला रखे के
1: हां ठंडा रखे के त जब जब प्यास करल एगो त बात सूर्य की किरण जब मारी त
0: डायरेक्ट सनलाइट जैसे बोलिला
1: माटी पर नहीं पड़ी ना हो प्यास वा बाते त हो प्यास वा से हो
0: माटी के जब
1: तापमान बाते उ बढ़ाने होय और जब सिंचाई कर भैया बारिश होई
0: जी
1: तो हो बूंद जब पानी जब बरसात होता तब माटी में ताई भी नहीं लगता तो छिटकावा वो कमती हो जाए तो इस प्रकार से तोहर पेड़ सुरक्षित रहे। अब जब आज हो गल बातें तब इफेक्शन बढ़ जाए चला जितना चित बा चला तोड़ के निकाल दे के
0: एगो मैंने कि एनालिस तो चाहे ना करे के अब चाहे ना करे के एगो ना एनालिस कहा जाइए ऑटोमोलॉजी जो
1: जब कपाल दुखा था जला सा कपाल दुखा था जब कुछ कुछ खास इलाज तब जला सा एनालिस करे ना
0: जी हाँ
1: लेकिन खेती बाड़ी कर रतवन तो जहाँ जोनों भी इलाका में होवन हम अपने हमने के दफ्तर जो बा इलाका के तो वहाँ पर से जाके सकियन संपर्क रखे तो वहाँ के जो ऑफिसर बा सहायता जरूर करी।
0: तो चले हमने के संगे जुड़ल हुआ तो हाँ हम तोहर से पूछत रही कि जो बायोपेस्टिसाइड बातें उस सब एक जैसन काम करे लंसर सगरो जो बैक्टेरिया बातें इंसेक्ट जो बातें न कैसे अलग अलग प्रकार से वो लोग कैसे काम करे लंसर
1: नहीं अलग अलग प्रकार से काम करे कैसे जो अभी बोले प्लांट एक्सट्रैक्ट एक आध गोबा जो पिलुआ के मावेला कैसे नीम बाते तो उसे की पिलुआ के मुआए से फोका बाते सकी पिलुआ के मुआए में एक आध गो दूसर प्लांट एक्सट्रैक्ट वो सकेला कैसे जेरानियम से बनेला जेरानियल तो वो सकेला वो बीमारी के लिपटे
0: जी
1: तो प्लांट एक्सट्रैक्ट है लेकिन सकेला पिलुआ खाते सकेला बीमारी खाते वैसे भी जैसे ऐसे ही जैसे मिक्रोब बाते तो एक आध गो मिक्रोब बाते कैसे बीटी बोलनी बासिलस रिंजेंसिस बीटी बाते कैसे एगो दूसर बासिलस और बाते बासिलस सुपचिलिस बाते तो अनेक प्रकार के ऐसे मिक्रोब बाते वो पिलुआ से लिपटे ला जैसे कि बीटी बाते वो कैटरपिलर लव से वगैरह वगैरह लेकिन दूसर मिक्रोब बाते कैसे स्यूडोमोनास बाते वो बीमारी संगे लिपटे ला तो कौन चीज संगे एगो चीज लिपटे ला ओकर अपन खासियत है उस अकेला ऐसे नहीं बाकी हम एगो मिक्रोब के प्रयोग करता है तो वो जाए पिलुआ के मुआ नहीं चला जाने के कौन मिक्रोब के प्रयोग कर तो उस अकेला वो पिलुआ के मुआ तो इस अकेला बीमारी का दिन सकल प्रयोग करे लिपटे के प्लांट एक्सट्रैक्ट के भी ऐसे ऐसे ही होला।
0: तो चला हमने संगे जुड़ल हवा एगो छोटा सा मिस कर ब्रेक के बाद हमने वापस आएला जा।

0: का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस संगे चलत हुआ, हाथों में हाथ नहीं पर साथ ही साथ चलत हुआ, और ई जो नाच की चर्चा कार्यक्रम है, आज हमने बतियात है सर जिन बायो पेस्टिसाइड्स एक बारे में ढेर जिन उदाहरण दे ले हुआ शंभू जी। और जब हमने बायो पेस्टिसाइड्स के बात कर रहे थे ऐजा, हमने सोची ला जा बायो है माने कि कोनो प्रॉब्लम नहीं बाई में, माने कि रासायनिक कुछ हो नहीं बाती, तो का जो जैसे बोले हुआ पेस्टिसाइड्स ओकर इफेक्ट्स तब आती, साइड इफेक्ट्स जो बाती जो प्रॉब्लम हो सब आती, तो बायो पेस्टिसाइड वो डेंजरस है।
1: जैसे कोई नाम ही में लिखा हुआ बायो तो बा, लेकिन पेस्टिसाइड हाँ। जुड़ा हुआ ना, पेस्टिसाइड यानी कि जहर
0: जी,
1: यहाँ पर लेकिन बायो है तुलना करब एगो रासायनिक पेस्टिसाइड से तो उतना टॉक्सिक नहीं बाते
0: जी,
1: लेकिन पेस्टिसाइड तब बाते
0: जी,
1: ता जो कर प्रयोग करब मारू से तो सकेला इरिटेशन हो छोटा मोटा, तो ओकर में छोटा मोटा एगो प्रॉब्लम ओकर में तो जुड़ल बाते, लेकिन बायो पेस्टिसाइड भी डेंजरस रहेला
0: जी। वो कैसे अब
1: जैसे बोले एगो रासायनिक पदार्थ के तुलना से उतना डेंजरस नहीं रहेला, लेकिन ये भी डेंजरस रहेला। कैसे कि देखा जब एगो चीज के प्रयोग करब जा तो खाली स्वयं खातिर नहीं मनुष्य खातिर ओकर खाली ओकर खातिर हानिकारक नहीं चला रहे के
0: जी,
1: पर्यावरण के भी चला, वो लोग के भी चला पोते सुरक्षा सुरक्षित रखे के।

0: तक एक आध गो ऐसा बी ओ पी सी सी ध जैसे भाभी बात करते हैं जा कन कन कैटेगोरी हाँ तक एक गो ऐसा है गनला जो बैक्टेरी बान एगो सब्सटेंस छोड़े ला तो सब्सटेंस वाकी कलेक्टे करके और कैसे बनावे लंच बी ओ पी सी सी एक उदाहरण दे जैसे स्पिनोसिन तो स्पिनोसिन से एक आध गो पोजू है जो बने ला मार्केट में बाटे लेकिन ये लोग इतना ले डेंजरस है इतना ही हानिकारक है कि जब प्रयोग करवा तो एगो चीज के नहीं मारेला सब चीज के मार देगा एगो पिलवा के नहीं मारी अनेक तरह के पिलवा के मार दे और जब बोलते अनेक तरह के पिलवा के मार दे तो ओकर में तोहर तितली तोहर कोक्सिनेल जो निमन चीज बा
1: संगे संगे
0: सब के संगे संगे मार दे देखला तो ई प्रकार से बीओपीसीसी जो बाते तो ई भी हानिकारक सकेला रहे खासकर पर्यावरण के तो ई कारण जब एगो एगो आदमी जोन खेती बाड़ी करता वो गंदा ओके मन बा एगो बियो खेती बाड़ी करे के तो के चला जाने के हाँ बियो पे शिशित प्रयोग जाता करे लेकिन चला जाने के कौन बियो पे शिशित प्रयोग करता
1: और कौन चीके रोपाई करत हो धरला आलू के बाते गोभी के बाते फूल गोभी के बाते कोनो जोन कुछ हो रही तो चाहेला जाने के ओकर इस्तेमाल में कौन चीज चाहेला इस्तेमाल करेगी जोन बायो पेस्टिसिड बा
0: हाँ
1: सब चाहिए जाने के
0: क्योंकि क्योंकि जन बीमारी जन जन पिलवा बाते तो सबके वो खासियत बाते सब बीमारी गना टमाटर बा गोभी बा फुल गोभी बा बोकोली बा लीची बा तो एगो बीमारी बा गन्ना का नाम है आ
1: तो
0: आ सब खेती बाड़ी में नहीं आवेल
1: हाँ।
0: एक आध गो में आवेल चाह जाने के कौन भी पेस्टिसाइड कहाँ पर प्रयोग करे के कौन बीमारी बाते कौन पिलवा बाते तब ओकर प्रयोग करे के
1: तो ये सब जो बातें लोग एग्रीकल्चर जो पुस्तक बाते उस सब में लिखल बाते
0: गिदाइकल देखा ऊ बनल रहा सन 2019 में ओकर में बाते अब हमी अभी 2026 में ऐसा जैसे गल हला बोले रही आजकल तो इतना ले फौजी बी ओ पी सी सी बा मार्केट में तो ऊ 2019 में छपल रहा जहाँ तक हुआ पर ही रहा तो हुआ ले बाते
1: जी एगो रिवाइज्ड वर्जन कुछ
0: जब आए तब तब ज्यादा ओकर में रही
1: जी तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ पूछे के बातें लाइन खुलल बातें हाँ 402-85-85 सबू जी हमने के बताओ जब बायो पेस्टिसाइड और फेरोमोन कौन फर्क बातें ये दोनों में
0: हाँ एगो बायो पेस्टिसाइड के जब प्रयोग करब सर तब ओके को जहर कहते प्रयोग करते हैं तब ओकर से हमने स्प्रेइंग करब जा ज्यादा तक है स्प्रेइंग करब जा
1: ओकर से आगे फेरोमोन कौन जी है
0: हाँ तो ओकर पर आवत है तो ओकर से स्प्रेइंग करब जा यानी कि एगो एगो पिलवा के लेला ओके मुआय खातिन हमने बीओपीसी के स्प्रे करब जा ज्यादा तक
1: जी
0: है एक आध गो एक्सेप्शन है लेकिन ऐसे रहेला अब एगो फेरोमोन वो कहा ओकर नाम कॉम्प्ले बोला सा सेक्स फेरोमोन एगो फेरोमोन एगो अट्रैक्टेंट है पिलुआ जन बाते कैसे नर और मादा बाते पिलुआ जन बाते माल फीमेल तो एगो फीमेल एगो ऐसा एगो सब्सटेंस एमिट करेला एगो कि खाली हो माल जन बाते ऊ सकी ओकर ओके डिटेक्टे करे तो इस प्रकार से ऊ हो जन पिलुआ बाते माल ऊ जाने ला हो फीमेल कहाँ पर बाते तब जाके अपन रिपोजुए होलन सा तो एगो फेरोमोन एगो सब्सटेंस है जन सब्सटेंस हाउ हाउ फीमेल छोड़ा तहल माल के बुलाए खातिन तो ओकरे इमिते करेला
1: अच्छा
0: ओकर नकल करेला तो जब ओकर नकल करेला तो जब कहूँ पड़ी है फेरोमोन आज रखब तो ऊ जन पिलुआ बाते माल ऊ सोची हुआ पड़ी फीमेल बाते तो ऊ हुआ पड़ी पहुँच जाए तो हुआ पड़ी तो नहीं माने वहाँ पर फेरोमोन के प्रयोग होता तो वो फेरोमोन के साथ साथ सकब जा एगो एगो बीओपीसीसीड के प्रयोग करे तो जब वो माल हुआ पड़ी जाए तो बीओपीसीसीड के मुआ दे तो फेरोमोन हमने प्रयोग के ला सा आचिरे करे खातिन बुलाए खातिन तब वहाँ पर एगो जहर मिला के लिपटे खातिन पिलवा के
1: अच्छा ये सब फूला हाँ बाप रे बापा अब हमने के बताओ हमने बात कर रहे थे जब धरला हार्वेस्टिंग टाइम हो गल बातें तो कौन कौन जो सेफ्टी इंटरवल ऑफ हमने बोली रहा जब बायो पेस्टिसाइड्स कौन बखत चाहेला डाले के कौन बखत चाहेला रोके के कैसे होला ये सब जब कोनो जैसे बोलिया जा रेजिड्यूज कुछ
0: हाँ, नहीं बट पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं रही पेस्टिसाइड्स के तुलना जे करबा रासायनिक पेस्टिसाइड जोन बाते तो ओकर में अनेक प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के नहीं लेकिन जोन प्री हार्वेस्ट इंटरवल बोला जा

0: लंबा रहेगा, कोनो स्पेसिफिक बा उकर सकी 21 दिन रहे, कोनो 14 दिन, कोनो 7 दिन, सबसे लेस टॉक्सिक जोन बातें सकेला 2 या 3 दिन के होए
1: जी।
0: जोन बायोपेस्टिसाइड बा हमने के गिद आर्टिकल में आज देख बा तो ओकर में डालने से 1 दिन
1: अच्छा,
0: क्योंकि मनुष्य के लिए वो टॉक्सिक उतना नहीं है, तो उस कारण से ओकर ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल 1 दिन डाल बा, यानी कि आज हम बायोपेस्टिसाइड के प्रयोग कर ली तो हम के परी 1 दिन इंतजार करे के, यानी कि आज
1: बुध के हो जाए,
0: आज 10 बजे बा तब बुध के 10 बजे तो 1 दिन हो गल ना, तब ओकर बाद सकब
1: फसल करे।
0: यहाँ पर एक चीज बदला, क्योंकि एक हला एक जना भेटा रहल तो एगो रासायनिक पदार्थ के प्रयोग कर रहा, रासायनिक पेस्टिसाइड के जेकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल रहा 7 दिन
1: जी।
0: लेकिन जब हम गए तो देखा था कि ओकर जोन सब्जी बाते ओकर पर थ्रास लोकल बा पेस्टिसाइड के, और उधर देखा था वो फसल कर रहा था, तो हम कैसे बोला था हाई कब डले रहा कुंची डले रहा वगैरह वगैरह, तब बोला हाई पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहा नहीं, तो हमने तो एक पिया चाहे 7 दिन है तो काहे एक फसल करते, पता नहीं हम 7 दिन के ओके हम रिस्पेक्ट करते हैं ध्यान में रख ले है, हमने कैसे सकेला, तब बोले देखा 7 दिन के पीएचआई बातें प्री हार्वेस्ट इंटरवल, तो आज 5वां दिन में है सर, तो हम 5वां दिन में तो रहते हैं, अभी हम उसका धुलाई वगैरह करब 2 दिन रखब, तब 3रा दिन में जब बेचे तो 8 दिन तो हो गल
1: जी,
0: तो हमने नहीं ऐसे नहीं है,
1: तो हाई जन बात
0: ऐसे नहीं है, चाहे 7 दिन के तोरा चाहत
1: अस्पेरे करते
0: हाँ इंतजार करे के फसल करे से आगे, नहीं कि तू जाके तोड़ के रखब
1: देखे अब एगो फांस हो गल बाते, तू कौन ची करब अब जाके पोते करब कौन ची हो
0: फागे के, देखा सब जन जा संस्था भाते जितनाशन भाते कैसे हमने वो स्टैट्यूटरी बॉडी है सर, तो हमने के को एक्ट बाते फागे एक्ट जो सर के किसी एमबीसी बा एमबीसी एक्ट बाते, तो ओकर आधार से चला सर, जहाँ तक हमने के किसान से जो संबंध बाते वो एगो एडवाइजरी बॉडी टाइप पर
1: अच्छा।
0: जब हमने जब सर किसान के समझाए कि देखा है अच्छा है नहीं है, और बहुत चीज कैला सर, लेकिन एक उदाहरण के ऐसे देवता है कि जब सब बोले देखा है ये जन कर तो अच्छा नहीं कर तो ऐसे चाहला करे कि ई है एडवाइजरी, तो हमने एडवाइजरी के लसा, लेकिन कृषि मंत्रालय के नीचे एक दूसर बॉडी बात है वो है पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑफिस, ये लोग के जोन प्रतिनिधि लोग हवन सा ये लोग जालन सा कैसे मंडी में वगैरह या फिर सके खेत में भी जाए वहाँ पर ही से सैंपल ले ओकर अनालिस कर दिया जा, तो जब अनालिस कर दिया जाता तो वो लोग के लोग की कि जोन पेस्टिसाइड रेजिजू आज लौकत आ कि नहीं, आज
1: लौकत
0: आज लौकत आ तो पेस्टिसाइड रेजिजू आ एक्सेसिव बा ज्यादा ज्यादा मात्रा में बाकी नॉर्म में बातें, और एक उचित देखे लें सर कि हाई जोन पेस्टिसाइड के रेजिजू लौकत आ तो वो पेस्टिसाइड ऑटोरिजेड रहल प्रयोग करेगी कि नहीं, ये भी देखे लें सर, तो आज कोनो प्रॉब्लम लौकी तो वो लोग किसान से संपर्क रखे लें सर, हमने से भी संपर्क रखे लें सर, तो हमने भी इस किसान के उड़ डाला सर, अब जहाँ फाइन की सवाल बात है वो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट में ओकर ओकर ओकर प्रबंध बात है, तो आज पहला हला किसान के एगो समझावल जला, तब बाद में नहीं समझे लें सर, तब फाइन आवेला तब वो कैसे ज़्यादा भी चला।
1: अच्छा एगो जना हवन, हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते।
2: नमस्ते
1: जी,
2: मैं तो पूछ मानू है ना पे फूमी रोज ना मुझे बहुत कि वो पुकार मिटे
1: कहाँ रही ला बहन,
2: हम कफो को रही ला
1: समझे,
2: और ये धतूरा के बीओ कैसे डाले के,
1: धतूरा के बीओ के कैसे डाले के,
2: हाँ कुछ में डाले कुछ बताओ।
1: अच्छा जैसे अभी बोला धतूरा जो बातें इस्तेमाल होला बायोपेस्टिसाइड,
0: जितना पौधा के ओकर पत्ता बाते जोन सकल प्रयोग करे जैसे धतूरा बाते
2: मुरुम

0: Bye.
1: Tu as que fruiwa nai
2: fruiwa o fruiwa ke patwa
0: fui
2: acha
0: suna patawa sakalai okay chala fema te kare ke lekin I yang pari I manch pe jon ba ab jab explique kare kaise hum tara bolti aaj ekar me tohar kono lete re bate tohara man hoy jane ke kaise kalai kare ta हमने के एगो दफ्तर से जाके वहाँ पर एगो ऑफिसर से भेंट कर लिया ओकर से बोलिया जे तोरा मन भाई गो ट्रेनिंग स्वीव करे के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर
2: जी
0: ओकर में ये सब सिखावल जाला
1: और जहाँ
0: तक हाँ जहाँ तक लाल चींटी के ओकर सवाल बातें देखा सकबा टेंशन सावधानी से लेकिन घर पे अगर हुई तो सकबा गर्म पानी होगा मैं फेंके गर्म पानी से चल रहा है आज हाई तोरा कठिन लगत हुई तो कहूँ एगो रिटेल आउटलेट में जाइए जहाँ पर आगो केमिकल वगैरह भी चल जला तो हम क्योंकि अभी यहाँ पर ही है तो हमने सका एगो ट्रेड नेम के नाम ले
2: जी, जी,
0: लेकिन ऐसा ऐसा चीज है जो
2: चल जा रहा चीटी खाती तो पूछ बात अब मिल जाए तो
0: घानी ले रहेला पीती पीती सरसों की तरह तो ओके लेके खाली जाके जहाँ पर चीटी के घर बा वहाँ पर डाल दे तब जाके हो चीटी जितना वहाँ बड़ी हो घर में सब मर डालन जा
2: ठीक बा चाची
1: अरे लिपु ब्लॉक है एगो दवाई नहीं है
2: लिपु ब्लॉक के
1: पौधवन में लिपु ब्लॉक जाके
0: हमके दफ्तर में जो हमके ऑफिसर बा ओकर से संपर्क किया क्योंकि रेडियो में हमके तोहर बोले के कुंच चला प्रयोग करे के वो हमने सकप करे
2: तो कॉफुको रहेला वाक्वा के जो सब ऑफिस बा
0: हां
2: हां जा चल जाइए
0: बाजार के ओकर ऑपोजिट
2: बचा के हां के ओकर बाजू में बा ठीक बा
0: चाची आज घर पे होए तो वृक्ष पौधा बात है कमें व्हाइट फ्लाई बात है तो हम तोरा बोलती को कौशल के धो दे के या तो फिर जो घर पे जो लिक्विड बेसल के प्रयोग करेला अपन बर्तन मांझे के तो 15 ml लेके एक लीटर पानी में 1 liter पानी में डाल के मिला के स्प्रे कर दिया हो जाए
2: ठीक बा अच्छा जी बहुत धन्यवाद तो हमने के ढेर जाना सुनत हवन देखत हवन हमने के बताओ जो बायो पेस्टिसाइड है वो कौन प्रकार से बेस्ट तरीके से सकबा कर इस्तेमाल करे और वो कोनो स्पेसिफिक क्राइटेरिया बा जो चाहेला रिस्पेक्ट हाँ। करे के
0: ई में
2: हमने जानी था आगे जो स्प्रिंग जो लापारे रहल आगे वो सब डालत रहल अब कौन कौन तरीका बाती अभी बेस्ट जो बाती
0: स्प्रे या जो बाते वो तो हवे बाते हवे रही ना
2: आज वो इस्तेमाल होला
0: हाँ, वो रही लेकिन कैसे स्प्रे करला और कब स्प्रे करला ई बहुत चला एक पर ध्यान दे के काहे कि एगो पौधे बियो पेस्टिसाइड जन बाते वो तो कैसे बोलिए सा प्लांट एक्सट्रैक्ट या तो बोलिए सा मिक्रोब के साथ तो ये लोग बहुत जल्दी ही जब दिन रहेला सूर्य के धूप से यूवी लाइट से डीएक्टिवेट जा जा तो जैसे एगो बायो पेस्टिसाइड बाते जन प्लांट एक्सट्रैक्ट के हाँ उसा किला 4 घंटा के बाद 50% से ज्यादा होकर एफिकेसिटी कम हो जाए मिक्रोब के पारे अब मिक्रोब के लेपसा मिक्रोब तो आज ओकर प्रयोग कर अब जा धूप बाते तो यूवी के भुला जा तो उ धूप से जो पानी से स्प्रे कर ले जाए तो सूख जाए तो जन मिक्रोब बात कौन हालत हो ओकर बेहाल हो जाए ना 90% से कि एक ही दिन में डीएक्टिवेट हो जाए तो बायोपेस्टिसाइड को खासियत बात है जे भी बायोपेस्टिसाइड के प्रयोग करेला ओके चला शाम के प्रयोग करे के शाम के काहे जो हमने के धूप सूर्य बातें डूबा था उस समय उतना घामा नहीं बातें टॉपिकाचे कमती रही एक गोते साथ जा एक गो याने की एवापोरेशन कमती रही इमिडिटी जस्ती रही तो जैसे मिक्रोब के हो या प्लांट एक्सट्रैक्ट के हो ओके रात भर बातें निमन से वहाँ पर ही काम करे के और मिक्रोब के होते ओके रात भर बातें पिपले हो के बस ये लोग पिपले होला
2: जी
0: और इन्हें भुलाया कि मॉरिशस हमने एगो ट्रॉपिकल कंट्री है जा
2: जी
0: जहाँ पर 10 बजे से लेके 2 बजे तक 2 बजे शाम तक 10 बजे सवेरे से लेके 2 बजे शाम तक हमने के यूवी इंडेक्स जो रहेला छत फाड़ दे हाँ तो अब माना कि अब एगो किसान जन बातें लेके अपन बायोपेस्टिसाइड सुन लख हम निके या कोई बोले हो या गिदाई कुल में पढ़ले हो तो जा कोशिश कैला हम भी बायोपेस्टिसाइड प्रयोग

0: था 8 बजे 9 बजे जाके उसका प्रयोग करता, नहीं काम करे भुला जा, तू पैसा बर्बाद कर दो, जितना भी यूपीसी सिद्धा शाम के चाला प्रयोग करके तब जाके निमन से काम करी, कोशिश करा तब हमके वो फीडबैक दिया
1: चला। जितना जना अभी सुनत हो पेस्टिसाइड

0: ऐसा नाम निविलन अमोल पालेकर नहीं है पर सुभाष पालेकर है सकेल और फार्मी वे है लेकिन सुभाष पालेकर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक बारे में जस्ती हमने सुन ली जा तू अभी बताएबा दिता में क्यों है एक पाचे जो लॉजिक है के बारे में बतावा और कैसे वो जो पेस्ट बातें जो जो बीमारी सब बातें वो लोग के कंट्रोल करेला
1: इस प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद नितुषा जी शायद एक दूसरा प्रोग्राम में सकता डिटेल में करने जाए लेकिन श्री सुभाष जो सुभाष पालेकर श्री सुभाष पालेकर जी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड लेवन एक लक्ष्य पहला देखी ला जाए लक्ष्य कुंची है एक लक्ष्य है एक किसान के ऐदे पौधा बनाए के स्वतंत्र करे के कैसे स्वतंत्र करी वो बाहर के कोनो एगो ऐथों पर निर्भर नहीं करी जैसे कि हमने के पेस्टिसाइड बाटे तो क्योंकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जे करेला तो सुभाष पालेकर जी बहुत ऐसा तरीका बताइले हुआ जा मेथड बताइले हुआ जा कैसे अपने आप किसान सकी एकाध गो प्रिपरेशन करे जैसे बोला सा प्यूर है हमने यहाँ के लैंग्वेज कुछ में बोला सा यहाँ के भाषा में बोला सा प्यूर है अपन से ऐसा तैयारी करे जिससे सकन सा अपन माटी के उपचार रखे सकन सा अपन जन जन खेती बाड़ी में पिलुआ हुआ था ओकर से लिपटे और सकन जा बीमारी से भी लिपटे और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तीन गो खासियत पाते एगो तोरा चहला जन गौ गाय से जन फीमिया मिलेला नहीं पहला फीमिया जन बाते ओकर प्रयोग करके दूसरा बा गौमूत्र और तीसरा जो एक स्पेसिफिसिटी है कैसे पिलुआ के मुआ के रही तो कर में एक आध गोजन पत्ता वगैरह उस सब कैसे नीम बल्ली नीम के पत्ता बातें धतुरा के बातें हमने के मॉरिशस में कुकलिश बातें सब सा होकर भी प्रयोग करे तो इस सब के प्रयोग करके फेम होते करके तब एक स्प्रे कर लला कारों में तब जाके माटी उपजाव रहेला या फिर पिलुआ से लिपट जाए या फिर बीमारी से लिपट जाए या फिर प्रिवेंटिवली भी सकल लाए प्रयोग करे तब जाके पिलुआ बीमारी नहीं रहेला
0: जे तोहरा सुनत है तोहरा समझत है जे गो खेती हर वो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक के इस्तेमाल करी तो माने कि बायो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल उन्हें करी
1: बिजनेस पड़ जाए हाँ नहीं करी क्योंकि जो बायो पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड काहे खरीदत बीमारी पिलुआ से लिपटे खाते ना तो आज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तरीका अपनाए तो इस सब के काम नहीं पड़ी
0: जी
1: तो अच्छा बा किसान लोग स्वतंत्र ही ऐसे पौधा रहे जनसा लोग के जन आमदनी मिला था पैसा खर्चा उतना नहीं हुई
0: जी तो हमने के जाए के वक्त लगभग हो गल बातें तो हर जन मोडल ऑफ है वो कौन जी है और वो कैसे एंकरेज कर बा लोग के हाँ चाहे ला बायो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करे के नहीं करे के कौन जी बोल बा
1: देखा किसान लोग जन बातें बहुत साल से वो लोग के अनुभव बातें रासायनिक पेस्टिसाइड
0: जी
1: प्रयोग कला से बहुत अनुभव आते
0: तो तुहर देखे में जो पेस्टिसाइड भी आते जो केमिकल जो आते ओकर इस्तेमाल होला वो कबो कमती नहीं हुई कबो खत्म नहीं हुई
1: नहीं कमती हुई कल आज से बोले सब तक कमती हुई वो कर में
0: दुविधा नहीं बात रही
1: ओकर इस्तेमाल रही क्या होला कि एक किसान जो कितना साल से वो खेती बाड़ी करता आते बा तो वो रासायनिक पेस्टिसाइड के प्रयोग करता
0: जी
1: तो ओकर अनुभव से ओके लौकता उबली देखा रासायनिक पेस्टिसाइड से ओकर काम चलता तो का जा बदलाव आने तो हवे ओके मन बा प्रयोग करे कि ऐसा स्थिति रहेला तो हम बोलती देखा तोहरा मन ने हुए रासायनिक पदार्थ रासायनिक पेस्टिसाइड छोड़े के तो सकबा दोनों के प्रयोग करे एक कुछ रासायनिक के प्रयोग कर एक कुछ बायो के प्रयोग करिए तोहरा लोकल अपने आप लौकी चला हाँ फायदा बाते तक गते गते जन चीज करिया गते गते जन रासायनिक बाव के छोड़ ले जाइया बायो के अपने ले जाइया लेकिन जब बायो के प्रयोग कर बा बायो पेस्टिसाइड के तो जैसे बोलनी ओकरे को समय प्रयोग करे के ओके चला शाम के प्रयोग करे के अब आज सकबा अनेक हम बहुत ऐसे किसान लोग के जानिला जो वो लोग तो बायोपेस्टिसाइड भी प्रयोग नहीं कर लो लोग जीरो बजट

0: फार्मिंग करना चाहो लोग भी कहलाता। तो पहला सब्स्टिट्यूशन कर लिया जाए जो रासायनिक पेस्टिसाइड बा छोड़ के बायो पेस्टिसाइड प्रयोग करो
1: जी,
0: तोहरे लाभ हो, तोहर स्वास्थ्य जैसे ठीक रही, पेस्टिसाइड रेजिड्यू भी कम हो, हमने के मॉरिशस के जनता जो लोग बा लोग के निमन खाना खाना भी मिली खाए
1: और एक स्वच्छ वातावरण में हम जी
0: सकते।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम है जी परिसमाप्त हो बात है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद एक्सटेंशन ऑफिसर सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी फागेदानी से। तो जितना जना हमने के सुनलन देखलन हमने यही आशा करे थे जब समझलन कि बायो पेस्टिसाइड कौन चीज है, कैसे ओकर इस्तेमाल होला, काहे चाहेला इस्तेमाल करे के और कब चाहेला इस्तेमाल करे के, कौन कौन बीमारी खातिर इस्तेमाल चाहेला करे के, ये सब चीज
0: कौन सी खाते कौन बायो पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं जा तब जाके काम जस्ती नहीं बन सकता।
1: और जो कुछ पूछे के बातें तो जो मेन ऑफिस बातें 433-43-78 433-43-78 न तो 433-9350 ई दुर्गो नंबर वा बातें सब बजे फोन करे न तो कोनो सब ऑफिस में जाए बा तुहर घरे की जो भेरी बातें हौज परी जाके कोनो इन्फॉर्मेशन खोज बा तुहरा सब कुछ मिल जाए। आवत हफ्ता हमने फिरों से मिलब जा तब लिख सब कोई के बहुत धन्यवाद शंभू जी और आप लोगन के भी हमने के सजे टीम दरे से नमस्ते
0: नमस्ते।

0: East, West,
1: 96.4,
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2,
1: Radio Musti.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti,
2: feel the Musti.
3: Well, good morning, time check, it's 10 a.m.
4: सऊदी अरब में मौजूद 1500 मॉरिशन हाजी कल रात मक्का से रवाना होकर मीना गए हुए हैं, जहां आज वे पूरा दिन गुजारेंगे। आज हज की अदायगी में मीना सबसे पहला मरहला है। इस साल दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी इस्लाम का ये पांचवा फ़र्ज अदा कर रहे हैं। कल मंगलवार को सबसे अहम दिन यौम अरफात होगा, जहां सभी हाजी मैदानी अरफात में जमा होंगे। हज मिशन के मुताबिक सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, ताकि ये हज सभी हज यात्रियों के लिए यादगार रहे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए टैक्स की दर 15% से घटाकर 3% करना, भावी राष्ट्रीय बजट के लिए ये मॉरिशस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के समक्ष रखे गए सबसे साहसी प्रस्तावों में से एक है। ऑपरेशंस प्रमुख सैमुएल मोरों का मानना है कि ये मांग उचित है और ये एमएमए का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि उनके अनुसार औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। इसके लिए व्यवसायों को नवाचार और आधुनिकता के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वे मानते हैं कि इस तरह के साहसी कदमों के मिले जुले प्रभाव आखिर में अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र ने आज सुबह मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है, जो आज दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की लहरें उठेंगी, जिसका असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर पड़ेगा। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न ऑपरेटरों और आम जनता से समंदर में न निकलने और इन तटीय इलाकों में सावधानी बरतने की मांग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 7 एमोस लेन कोमोडेल में, नब्बे साल की 90 years old की बीबी ज़ाइबा अब्दुल, जो ज़ाइबा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान नंबर 7 एमोसलेन कोमोडेल से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए अलहदी मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सहमत है मोगोशका कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 नून। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: दिन के 10:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 25 मई 2026 भक्ति धारा कार्यक्रम प्रस्तुत है और मैं उषा आप लोगों की सेवा में। भक्ति धारा कार्यक्रम, जी हाँ श्रोताओं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी, प्रेम और निष्ठा के साथ निभाना भी है। जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका हर काम पूजा बन जाता है और जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। परंतु जो व्यक्ति भक्ति भाव से भरा होता है वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखता है। वे जानता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है।

0: आप सब पर बनी रहे। चलिए अभी के लिए सुनते हैं मानस मंथन डॉक्टर विनु अरुण जी के साथ।
1: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर विनु अरुण।
2: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं विनु अरुण आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, हम रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 247 यानी 247 के ऊपर की दो चौपाइयाँ प्रस्तुत करते हुए 247 दोहा और फिर उसके नीचे की चौपाइयों को प्रस्तुत करेंगे। प्रसंग बहुत ही सुंदर है। सीता जी अपनी सखियों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर चुकी हैं। यज्ञशाला यानी जहाँ पर धनुर्यज्ञ का आयोजन होने वाला था, उस विशाल भवन में जहाँ सभी राजा उपस्थित थे, सीता जी अपनी सखियों के साथ आईं। तुलसीदास जी उनके सौंदर्य का वर्णन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वे कितनी मनोरम, कितनी चित्ताकर्षक लग रही हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि सीता जी के सौंदर्य का वर्णन कर पाना किसी के भी वश की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि साहित्य में प्रायः किसी सुंदरी स्त्री की शोभा वर्णन करने के लिए जिन जिन उपमाओं का प्रयोग किया जाता है, वे सब इसी संसार से ली गई हैं, जिसे हम देखते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं, जगत जननी हैं। उनके सौंदर्य का बखान करने के लिए ऐसे उपमानों का प्रयोग करना अनुचित है जो इस सांसारिक स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सीता जी के सौंदर्य की तुलना कैसे की जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी की स्त्रियों से तुलना करना तो बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए देखें, क्या देवताओं की स्त्रियों से उनकी उपमा दी जा सकती है। जब विचार करके देखा तो लगा कि ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तुलसीदास जी बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही आलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि गिरा मुखर तन अरत भवानी, रति अति दुखित अतन उपति जानी, बिश बारूनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों से तो तुलना हो ही नहीं सकती सीता जी की, और देवताओं की स्त्रियों पर यदि हम विचार करें कि क्या वे इतनी सुंदर हैं, इतनी दिव्य हैं, इतनी अलौकिक शोभायुक्त हैं कि उनसे सीता जी की तुलना की जा सके, तो सबसे पहला नाम वे सरस्वती जी का सोचते हैं। कहते हैं कि सरस्वती जी हैं तो बहुत सुंदर, लेकिन उनमें एक अवगुण है, क्योंकि वे बहुत बोलने वाली हैं। और सीता जी कैसी हैं? सीता जी का अपनी वाणी पर बहुत संयम है। जहाँ जो शब्द प्रयोग में लाना है वो केवल उतना ही बोलती हैं। और चूंकि सरस्वती जी तो वाणी की देवी हैं, इसलिए उनका स्वभाव ही है, उनका गुण ही है कि वे बोलें, यानी वे मुखर रहें, इसलिए उनसे तुलना नहीं हो सकती। फिर कौन बचा? तो कहते हैं पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्वती जी तो अर्धांगिनी हैं, यानी उनका आधा ही शरीर है। आधा शरीर कहाँ गया? भगवान शिव में मिल गया, क्योंकि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो भगवान शिव के साथ उनका आधा शरीर और आधा शरीर उनका अपना। तो ऐसे अर्ध अंग वाली स्त्री से भला सीता जी की तुलना कैसे की जा सके? फिर कौन बचा सुंदरी स्त्रियों में? जो देवताओं की परम सुंदर स्त्रियां हैं, उसमें सरस्वती जी से तुलना की नहीं जा सकती, पार्वती जी से की नहीं जा सकती। फिर कौन बचा?

कामदेव की पत्नी रति, लेकिन उनसे भी नहीं तुलना हो सकती। क्यों? क्योंकि वे अनंग की पत्नी हैं और दिन रात रोया करती हैं। आपको कथा मालूम है कि जो कामदेव जी की पत्नी रति हैं, वे इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि उनके पति का शरीर भस्म हो चुका था और वे सूक्ष्म रूप में अनंग बन के, बिना अंग के, बिना शरीर के सदा विद्यमान रहते हैं। तो ये सोच करके कि मेरे पति अनंग हो गए हैं, मेरे पति का कोई अंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है, रति हमेशा दुखी रहती हैं। इसलिए सीता जी सदा प्रसन्न वदना, सदा प्रसन्न रहने वाली, प्रफुल्लित, उनके चेहरे की शोभा ऐसी है कि कोई भी आकर्षित हो जाए। और ऐसी प्रसन्न मुखा सीता जी से दुखी रहने वाली रति की तुलना कैसे हो सकती है? और फिर कहते हैं, अब बची कौन? लक्ष्मी जी। तो कहते हैं लक्ष्मी जी से भी नहीं तुलना हो सकती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के जो भाई हैं वे कौन हैं? विष और मद्य, जो कि समुद्र से निकले हैं। तो विष और मद्य जिनके भाई हैं, ऐसे लक्ष्मी जी से भी सीता जी की तुलना नहीं की जा सकती। फिर क्या किया जाए? आइए इन चौपाइयों में देखें। तुलसीदास जी कहते हैं, जौ छबि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारु। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से। आपको मालूम है समुद्र खारा है, नमकीन है, उसका पानी मीठा नहीं है। तो ऐसे खारे समुद्र से, नमकीन समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। और लक्ष्मी जी में और क्या बुराइयां हैं? क्यों सीता जी से तुलना नहीं की जा सकती? कहाँ लक्ष्मी जी खारे समुद्र से निकली हैं और कहाँ सीता जी सर्वांग सुंदरी। दूसरी बात, उस समुद्र को मथने के लिए, जिस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, उस समुद्र का मंथन करने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया था, कछुए का। और कछुआ कैसा होता है? उसकी पीठ बहुत ही कठोर होती है। ऐसे कठोर पीठ वाले कछुए को मथनी बना करके समुद्र का मंथन किया गया था। और मंथन करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए मथानी, यानी वो जो चरनर है, और दूसरा रस्सी चाहिए, क्योंकि रस्सी को पकड़ करके हिलाते हैं, मथते हैं। तो रस्सी बनाई गई थी वासुकी नाग की। तो नाग कैसा है? विषैला। कच्छप कैसा है? कठोर पीठ वाला। और अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने मथानी का काम किया, और मथा किसने? देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में जो हेतु बने, यानी जिन उपादानों का प्रयोग किया गया, वे बहुत ही कठोर और असुंदर, यानी अच्छे नहीं हैं। कहाँ विष, कहाँ कच्छप, कहाँ वासुकी नाग, कहाँ मंदराचल पर्वत। तो ये सब बहुत ही कठोर उपकरण हैं। तो ऐसे उपकरणों से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, उनकी समता, उनकी तुलना भला जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ कैसे की जा सकती है? फिर तुलसीदास जी कहते हैं, फिर क्या किया जाए? तो उन्हें एक बात सूझती है। वे कहते हैं कि जो जो चीज़ें लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाई गईं, यदि उनका बिल्कुल उल्टा रूप कहीं से आ जाए और उससे यदि कोई लक्ष्मी जी प्रकट हों, तो उनसे शायद सीता जी की तुलना की जा सकती है। तो विपरीत क्या चीज़ें हैं, उल्टी चीज़ें क्या हैं? तो बोल रहे हैं, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। वहाँ समुद्र किस चीज़ का था? खारे पानी का। तो कहते हैं नहीं, अमृत का समुद्र हो। अमृत कैसा है? मीठा है, जीवनदायी है। ऐसे जीवनदायी मधुर जल वाले अमृत का जो समुद्र है, उस समुद्र से यदि लक्ष्मी जी प्रकट हों, खारे समुद्र से नहीं, तब सोचा

जा सकता है कि क्या सीता जी से उनकी तुलना की जाए या नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ कच्छप की ज़रूरत है और कच्छप कठोर पीठ वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई ऐसा कछुआ हो जो बहुत ही रूपवान हो, जिसकी पीठ बहुत कोमल हो, यदि ऐसा संभव हो तो। और रस्सी, पहले किसको रस्सी बनाया गया था? वासुकी नाग को। अब कहते हैं, यदि कोई बहुत ही सुंदर रस्सी हो, उससे समुद्र का मंथन हो, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि जो लक्ष्मी प्रकट होंगी उससे सीता जी का हम वर्णन कर सकें। और श्रृंगार रस पर्वत हो, वहाँ पे कौन सा पर्वत था? मंदराचल पर्वत बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल विपरीत। यदि श्रृंगार रस का पर्वत हो, श्रृंगार रस यानी प्रेम से भरा हुआ पर्वत, पर्वत का स्वभाव है कठोरता, लेकिन कोई ऐसा पर्वत हो जो अत्यंत मधुर स्वभाव का हो, ऐसे पर्वत का प्रयोग यदि किया जाए लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए, तब जा करके हम कल्पना कर सकते हैं कि सीता जी की तुलना की जाए। और एक अंतिम बात, कामदेव अपने कर कमलों से उस समुद्र का मंथन करें। क्यों कामदेव? क्योंकि सबसे सुंदर कामदेव हैं। जब कामदेव जब सुंदरता मंथन करेगी, तब सुंदरता पैदा होगी। इसलिए लगता है कि सीता जी के सौंदर्य का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे तुलना करके उनका वर्णन किया जा सके। एही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतुल। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार का यदि संयोग हो, किस प्रकार का संयोग? जैसा उन्होंने कहा कि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, बहुत ही सुंदर कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और कामदेव अपने कर कमलों से उसका मंथन करें, तब जा कर के कोई प्रकट हो तो वो सीता जी के समान हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि कवि लोग फिर भी कहते हैं कि शायद जो उससे प्रकट होगी सुंदर स्त्री, वो शायद सीता जी के समान फिर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं, जिस सुंदरता का समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी लौकिक सुंदरता होगी, वह दिव्य सुंदरता नहीं होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी इस त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार हैं। इसलिए उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी, जिन लक्ष्मी जी का वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी तो सांसारिक ही, इसलिए उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है, किसी भी कवि को बहुत संकोच होगा। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य और अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता सभी सुंदरताओं से भिन्न है। वह कामदेव के मंथन में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं। अतः उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, किसी भी सौंदर्य के साथ सीता जी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सीता जी कैसी हैं? वो सांसारिक नहीं हैं, वे धरती से प्रकट हैं, यानी स्वयंभू हैं, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया है, वे अपने आप प्रकट हुई हैं। जैसे परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, परमात्मा नित्य है, सनातन है, परमात्मा का ना कोई आदि है ना अंत है, तो परमात्मा की शक्ति है चूंकि सीता जी, इसलिए सीता जी भी स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं। वो प्रकट हुई थी धरती से लेकिन अजन्मा हैं। तो ऐसी भगवान की जो शक्ति है सीता जी, उनके सौंदर्य का हम कोई भी सानी इस संसार में ढूंढ नहीं सकते। और आगे अब सीता जी आ गई, उनके सौंदर्य का वर्णन करने का तुलसीदास जी ने प्रयास किया, जो संभव नहीं है
और अब आगे वे कहते हैं, चली

संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सखियां उनको लेकर के आ रही हैं और जब आ रही हैं तो साथ ही बहुत सुंदर दिव्य और शुभ गीत गाती आ रही हैं। सीता जी कैसी हैं, बड़ी सुंदर साड़ी उन्होंने पहन रखी है और वो चूंकि जगत जननी हैं इसलिए उनकी सुंदरता ऐसी अतुलनीय है जिसका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखी न बनाए, रंग भूमि जब सी पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, यानी उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रखे हैं जिन्हें सखियों ने पहनाया है। सीता जी का श्रृंगार उनकी सखियों ने किया है और ऐसी सजी सजाई अत्यंत दिव्य स्वरूप वाली सीता जी ने जब रंग भूमि में पैर रखे तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी मुग्ध हो उठे। एक तो वे इतनी सुंदर और आज उनका श्रृंगार भी किया गया है तो आज तो उनकी शोभा के आगे कोई टिक ही नहीं सकता, इसलिए सभी लोग बिल्कुल अनिमेष दृष्टि से उन्हें निहार रहे हैं। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अपछरा गाई, पानि सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला है और राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। जब मधुर गीत गाते हुए सखियों ने प्रवेश किया सीता जी को साथ लेकर के तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि देवताओं को लगा कि जो कार्य संपन्न होना है उसकी शुभ घड़ी अब आने वाली है और अप्सराएं भी आकाश मार्ग में एकत्रित हो गई हैं। वे पुष्प बरसा करके सीता जी को एक तरह से शुभकामनाएं दे रही हैं। सीता जी के कर कमल में जयमाला है, जयमाला मैंने वो माला जो उस व्यक्ति के गले में डाली जाएगी जो विजयी होगा, जो शिव जी के धनुष को उठा पाने में समर्थ होगा। सब राजा एक टक उन्हें देख रहे हैं चकित होकर के कि क्या ऐसा सौंदर्य भी कभी किसी अन्य को देखने को मिलेगा। उन्हें लगता है उनका जीवन धन्य हो गया। सी अचकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगीं, क्योंकि राम जी सबसे ऊंचे आसन पर बैठे थे इसलिए स्वाभाविक रूप से सीता जी की दृष्टि राम जी पर ही गई। और जब सीता जी ने राम जी को देखा तो सब लोग सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रही हैं, तो सब लोग समझ गए कि सीता जी तो राम जी को ही निहार रही हैं, हमारी ओर तो उनकी दृष्टि भी नहीं है। ये सोच करके वे अत्यंत मोह के वश हो गए, यानी बहुत निराश हो उठे। और सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं राम जी में जा लगे। उन्होंने पहचाना कैसे कि गुरु विश्वामित्र एकदम ऊंचे आसन पर, हमने पहले ही देखा था कि राजा जनक ने उनके बैठने का विशेष प्रबंध किया था, सबसे ऊंचे आसन उन्होंने गुरु विश्वामित्र और उनके दोनों शिष्यों यानी राम और लक्ष्मण जी को दिए थे। जब सीता जी प्रवेश कर रही हैं तो सबसे ऊंचे बैठे आसन पर विराजमान इन तीनों की ओर दृष्टि जाती है, पहचान जाती हैं कि ये गुरु विश्वामित्र के साथ बैठे हुए जो राजकुमार हैं ये वही हैं उनमें से जो राम जी हैं जिन्हें वे वर रूप में पाना चाहती हैं। और उन्हें देखकर वे एक टक निहारने लगीं, अपने तन मन की सुध भूल गईं। गुरुजन लाज समाज बढ़, देख सी सकुचानी, लागि बिलोकन सखिन तन, रघुबीर रही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से और इतने बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं, वे राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। क्या अर्थ है इस दोहे का, इसे अगले कार्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे। आइए एक भजन सुन

10:50 हुए हैं। श्रोताओं कहते हैं ना, भक्ति विनम्रता बनाती है, अहंकार को दूर करती है और मन को शांति देती है। ये हमें सिखाती है कि हम केवल फल के लिए नहीं बल्कि अपने कर्म के लिए काम करें। तो चलिए, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे थोड़ी देर।

0: मिलते हैं अदिति से। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिके का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपनी तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल भी होने लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी राजदूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मॉरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस रोमानियन फ्रांस भारत यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक ठोस शांति समझौते पर काम कर रहे हैं और आज एक संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने भारत दौरे के अंतर्गत कही। नए प्रस्तावों में 60 दिनों का युद्ध विराम आगे बढ़ाना, हॉर्मुज जलमार्ग खोलना, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर गहराई से बातचीत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर सात एमोसलेन कोमोदेल में 90 साल की 90 years old बीबी जाइबा अब्दुल पैदाशी नाम बतंकी जो जाइबा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान नंबर 7 एमोसलेन कोमोदेल से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए कोमोदेल की अलहादी मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सैमोते मोश का कब्रस्तान फ्यूनरल टू देयर हाउस ऑफ नून। रॉयल रोड हाईलैंड्स में 77 years old श्रीमती विद्यावती तपसी पैदाशी नाम फौदो जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान रॉयल रोड हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। ओल्ड स्कूल रोड कौजाबल में 75 years old जनाब अब्दुल अलीम तौसू जो अलीम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके बेटे जनाब नूरानी तौसू के मकान ओल्ड स्कूल रोड कौजाब से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोक में

0: डूबिन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।
3: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज का मौसम है, जा रहे हैं काफ़िले ऐ अल्लाह। हज का मौसम है, जा रहे हैं काफ़िले ऐ अल्लाह। हम पर भी करम कर दे, हो जाए हमारी भी हाज़िरी। हम पर भी करम कर दे, हो जाए हमारी भी हाज़िरी। मौज़ सामेईन, इसी नेक तमन्ना के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएँगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। ताकीर न करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अद्दुखान की तिलावत से। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदाकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। मौज़े सामीन, ज़िलहज की 7, 8, 9 और 10 तारीख को ख़ास औलाद के हक़ में दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई थी। औलाद के इल्म व अमल में बरकत की दुआ करें। औलाद की ज़िंदगी, सेहत, माल और इज़्ज़त में बरकत के लिए दुआ करें। औलाद के अच्छे नसीब और नेक जोड़े के लिए दुआ करें। औलाद के लिए अच्छी सोहबत और फर्माबरदारी की दुआ करें।

मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:24 होने को हैं। पीर का दिन है और मई की 25 तारीख है और आज माह ज़िलहज की 7 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप नॉर्मल मैसेजेस या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समाअत फरमाइए एक ऐलान। कल मंगल, जी हाँ कल मंगल 26 मई दिन के 2 बजे मोहतरमा नरीमान कुओ की सरपरस्ती में योम अरफात के मौके पर उनकी

0: का तोमी दरिफात में एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख्वातीन को शिरकत की दावत है। अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम बल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफ़ान, मुझे इस शहर की कसम जबकि तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। पारा नंबर 30 सूरह बलद आयत नंबर 1 और 2। ए आशिकान रसूल, हज के अय्याम करीब से करीब तर हैं। ए आशिकान रसूल, हमने आयत करीमा सुनी पारा नंबर 30 सूरह बलद की पहली और दूसरी आयत। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे इस शहर की कसम। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि एक है हमारा कसम खाना और एक है अल्लाह पाक का कसम इरशाद फरमाना। हमारी कसम में दो बातें होती हैं। नंबर एक, हम अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कसम खाते हैं। मसलन मैं कोई बात अर्ज़ कर रहा हूँ, लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे, अब मैं लोगों को यकीन दिलाने के लिए इस बात पर कसम खा लूँगा। इससे सामने वालों को यकीन आ जाएगा कि चूँकि कसम खा ली लिहाजा इसकी बात सच्ची है। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा अपने से बुलंद रुतबा वाले की कसम ही खाया करते हैं। मसलन हम कहते हैं अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक यकीनन बहुत ही बुलंद रुतबा है। हम मखलूक हैं, अल्लाह पाक खालिक है। हम ममलूक यानी ग़ुलाम हैं, अल्लाह पाक मालिक है। हम रिस्क के मोहताज हैं, अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाने वाला है। गर्ज़ हम जब भी कसम खाएँगे अपने से बुलंद रुतबा ही की कसम खाएँगे। लेकिन जब अल्लाह पाक कसम इरशाद फरमाता है, इसमें ये दोनों बातें नहीं होती। अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमा दिया वो वैसे ही पुख्ता है, उसे मज़ीद कसम के ज़रिए पुख्ता करने की हाजत यानी ज़रूरत नहीं। भला अल्लाह पाक से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। कुरान करीम में है, वमन अस्दकु मिनल्लाहि क़ीला, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 122। तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफ़ान, और अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात सच्ची है। जब सबसे सच्चा अल्लाह पाक ही है, उसने जो फरमा दिया वही हक है, वही सच है। लिहाजा अल्लाह पाक जब कसम इरशाद फरमाता है तो इसमें बात को पुख्ता करना मकसूद नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक का कसम इरशाद फरमाना ये बताने के लिए होता है कि लोगों, ये चीज़ जिसकी कसम अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई है इंतहाई बुलंद रुतबा और ऊँची शान वाली है। लिहाजा अल्लाह पाक ने जब फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे इस शहर की कसम यानी मुझे मक्के की कसम, तो पता चला मक्का इंतहाई अजमत वाला बहुत फजीलत वाला शहर है कि रब्बे कायनात ने इस शहर मुबारक की कसम इरशाद फरमाई। अब ज़रा सोचने की बात है कि शहर मक्का को ये शरफ किसके ज़रिए मिला। अल्लाह पाक ने इसकी कसम इरशाद फरमाई, हम मक्का शरीफ को अपनी निगाहों से में रखते हैं, सोचना शुरू करते हैं कि आखिर मक्का पाक को ये शर्फ किस ज़रिए से मिला है। सबसे पहले हमारे सामने काबा शरीफ का तस्वीर आता है। काबा शरीफ अल्लाह पाक का घर है, ये दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर है, इसका हज किया जाता है, इसे देखना इबादत है। इस पर दिन रात रहमतों की चमचम बारिश होती है। काबा शरीफ बड़ी अजमत वाला है, लिहाजा हो ना हो मक्के शरीफ को फजीलत काबा शरीफ के ज़रिए से मिली, मगर नहीं, कसम उठाने का सबब काबा नहीं है। अब इस मज़ीद तसव्वुर जमाते हैं इसका, हमें यहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये वो मुक़द्दस पहाड़ियाँ जिन्हें अल्लाह पाक ने शियारुल्लाह यानी अल्लाह पाक की ख़ास निशानियाँ फरमाया, जिन पर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दस कदम लगे हैं। ये भी मक्के पाक की फजीलत का सबब हो सकती हैं, मगर नहीं, कसम इरशाद होने का सबब ये भी नहीं। हमें मक्के पाक में मीना की वादी भी दिखाई देती है, मगर कसम इरशाद होने का सबब ये भी नहीं। मक्के शरीफ में इसके अलावा

और भी बहुत सारी फजीलत की चीज़ें हैं। यहाँ मकाम इब्राहिम है, यहाँ अम्बिया किराम अलैहिम सलाम के मज़ारात हैं, यहाँ जमजम शरीफ का कुआं है, और बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं। मगर अल्लाह पाक ने शहर करीम की कसम यूँ इरशाद फरमाई, अल्लाह पाक फरमाता है वा अंतहिलुम बिहादल बलद, जबकि तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का पाक में फजीलत की चीज़ें बहुत हैं, मगर मुझे शहर पाक की सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ये है कि इस शहर पाक की मिट्टी ने आपके मुबारक कदमों को बोसे दिए हैं। यही वो हवाला है कि जिसके सबब मक्का शरीफ की इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि रब्बुल आलमीन होकर इस शहर अज़ीम की कसम इरशाद फरमाई। उलमा के नाम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने किसी रसूल अलैहि सलाम की रिसालत की भी कसम इरशाद नहीं फरमाई, मगर महबूब ज़ीशां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है कि अल्लाह पाक ने आप ही की नहीं बल्कि आपकी रिसालत की, आपके ज़माने की, आपकी ज़बान पाक से निकले हुए अल्फाज की, यहाँ तक कि आपके शहर पाक की भी कसम इरशाद फरमाई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, इस जगह एक सवाल जहन में उठता है, वो ये कि अल्लाह पाक चाहता तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और शहर में पैदा फरमा देता, खुद ही आपको मक्का शरीफ में पैदा फरमाया, फिर आपकी निस्बत की वजह से मक्के पाक की कसम इरशाद फरमाता है। आखिर इसमें राज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के पाक ही में पैदा क्यों फरमाया गया? दुनिया में हज़ारों शहर मौजूद हैं, इनमें से किसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं फरमा दिया जाता, इस शहर की इज़्ज़त बढ़ जाती। मक्के शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पैदा फरमाया गया? आइए ज़रा इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, तमाम जानों का रब है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह पाक के रब होने का ऐसा इज़हार महबूब ज़ीशां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, ऐसा इज़हार किसी और पर नहीं। वो रब तो मेरा रब भी है, लेकिन जैसे कमालात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए, मुझे तो उनका ज़र्रा भी नसीब नहीं। मेरी आँख ये है कि दीवार के पीछे नहीं देख सकती, वो फ़र्श पर बैठ कर अर्श को नहीं देख सकती, मेरा हाथ चार फिट के फासले पर रखी चीज़ तक नहीं उठा सकता, यानी मेरा हाथ ही नहीं पहुँच सकता। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से हाथ उठाएं तो जन्नत के फलों तक पहुंच जाता है, मैं चंद मीटर के फासले से नहीं सुन सकता। महबूब ज़ीशां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कान लाखों किलोमीटर दूर की आवाज़ें भी समात फरमाते हैं। बल्कि सब जाने दीजिए, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन मुबारक में ईशान के चाँद इशारों पर चलता। हमारी हज़ारों साल की ज़िंदगी हो और सारी ही इबादत में गुजार दें, फिर भी इस रुतबे के करीब को भी नहीं पहुंच सकते। पता चला अल्लाह पाक के रब होने का जैसा इज़हार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रहा है, वैसा इज़हार किसी पर भी नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बार बार फरमाया, रब्बू का, रब्बू का, रब्बू का। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया, आपके रब ने कुरान उतारा, आपका रब नेमत देता है, आपका रब हिकमत वाला, आपका रब इल्म वाला, यानी अल्लाह पाक ने अपने रब होने की निस्बत बार बार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाई। इसलिए कि शान रबूवियत का जैसा इजहार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, ऐसा किसी पर नहीं हुआ। इसी तरह अल्लाह पाक सारी ज़मीन ही का रब है, एशिया का भी रब है, यूरोप का भी रब वही है, हर हर ज़र्रे का वही रब है। मगर मक्के पाक की शान देखिए कि अल्लाह पाक ने अपने रब होने की खुसूसी निस्बत इस शहर पाक की तरफ फरमाया, रब हादिहिल बलद, इस शहर मक्का के रब। इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक रब तो सारी ही ज़मीन का है, मगर इसकी शान रबूवियत का जैसा इजहार मक्के पाक पर है, ऐसा किसी और खित्ते पर नहीं। ये मक्का शरीफ ही है जो बिल्कुल बे आबाद था, पानी का नाम और निशान यहाँ नहीं था, ज़मीन बंजर थी, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारता था। अल्लाह पाक की शान रबूवियत का इजहार हुआ, बहुत ही फजीलत वाले नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम को हुक्म हुआ, ए इब्राहिम अपने शहज़ादे को मक्का छोड़ आए। इस्माइल अलैहि सलाम जो अभी दूध पीने की उम्र में थे, मक्का पाक पहुँच गए, फिर उनके कदमों की बरकत से चश्मा जमजम जारी फरमा दिया गया, लोगों के दिल इस शहर पाक की तरफ खींच दिए गए। यहाँ पहले परिंदा पर नहीं मारता था, अब यह हालत है कि बाज़ दफ़ा तो वहाँ कदम रखने की जगह नहीं मिलती। इसी साल यानी कि

देख लिया जाए कि पिछले साल का अगर हिसाब लगा जाइए और इसी साल को भी देख लीजिए, तो मक्के पाक में रमज़ान मुबारक में इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि इंतज़ामिया परेशान हो गई। वहाँ का जो निज़ाम संभालने वाले होते हैं वो परेशान हो गए। मक्के पाक की ज़मीन सर सब्ज़ नहीं, यहाँ खेती नहीं उगती, फल नहीं उगते, मगर आप मक्के पाक जाकर देख लीजिए, दुनिया की हर नेमत यहाँ मिल जाएगी। ये अल्लाह पाक की रबूवियत का ख़ास इजहार है जो इस शहर पाक पर हो रहा है। ये मुनासिबत है कि मक्के पाक की महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम मखलूकात में ज़िशान रबूवियत का इजहार जैसा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, ऐसा किसी पर ना हुआ। यूं ही तमाम ज़मीन में शान रबूवियत का इजहार जैसा इजहार मक्के पाक पर हुआ, ऐसा कहीं और ना हुआ। लिहाजा ये शहर पाक ही इस लायक था कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शर्फ इसे अता किया जाता। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, जब के तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस शहर की कसम कि ये शहर पाक आपके कदम चूमने के लायक हो पाया है। एक और मुनासिबत सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तारीख गवाह है, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, आम आज़ाबात आना बंद हो गए। पहली उम्मतों पर पत्थर भी बरसे, जलजले भी से इन्हें तबाह कर दिया और बर्बाद कर दिया गया। इन पर आंधी और तूफ़ान के आज़ाबात आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब के ज़रिए गर्क कर दिया गया। कौम लूत की पूरी बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर उल्टा करके ज़मीन पर फेंक दिया गया। ऐसे कई आज़ाबात मुख्तलिफ कौमों पर आते रहे, मगर जब से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, ऐसे आज़ाबात आना बंद हो गए। बल्कि मज़े की बात तो यह है कि कुफार मक्का ने बाकायदा दुआएं की कि ए अल्लाह हम पर पत्थर बरसा दे, हम पर दर्दनाक अज़ाब उतार दे, मगर अल्लाह पाक ने साफ़ फरमा दिया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअन्त फ़ीहिम, और अल्लाह की ये शान नहीं कि इन्हें अज़ाब दे जब तक ए हबीब तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने का एक नज़ारा है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शान का फैज़ान मक्का शरीफ को भी मिला है। जो यहाँ आ जाता है उसे अमन नसीब हो जाता है। कौम समूद जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इनके मुतालबे पर पहाड़ से हामिला ऊँटनी निकाली गई। जब इन बदबख्तों ने मौजज़ात देकर भी कलमा ना पढ़ा, ऊँटनी को शहीद कर दिया, तो इस पर आज़ाब उतरा। एक शदीद चिंगाड़ की आवाज़ आई जिससे ये सब के सब फना हो गए। हदीस पाक में कि ये खुलासा अर्ज़ करता रहूँ कर रहा हूँ, इसी आज़ाब ने सारी की सारी कौम समूद को सफा हस्ती से मिटा दिया। सब हलाक हो गए मगर एक शख्स बच गया। सहाबा किराम अली मुरीदवान ने बड़ी हैरानी से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन था? फरमाया उसका नाम अबू रागाल था और वो इस वक्त मक्के पाक में था, इसी वजह से उस पर अज़ाब नहीं आया। लेकिन जब वो मक्का शरीफ से बाहर निकला, अज़ाब ने इसे घेर लिया और वो भी हलाक हो गया। एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ये अबू रागाल की कब्र है, यहाँ इस पर अज़ाब उतरा था, लिहाजा यहीं दफन कर दिया गया। इसके साथ एक सोने की छड़ी भी रखी गई थी। सहाबा किराम वाली मुरीदवान ने इस कब्र को खोद कर देखा तो वहाँ सोने की छड़ी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, ये मक्के शरीफ की फजीलत है और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम जहानों को अमन नसीब हो गया। इसी शान का फैज़ान मक्का शरीफ को नसीब हुआ तो मक्का पाक भी मकाम अमन बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी मक्के पाक की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। बार बार प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। ए अल्लाह पाक हमें हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वो मक्का जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिकंदवा बनाने गुजरे, ज़िंदगी मुबारका के ज़ाहिरी हयात के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उम्र का काफ़ी वक्त गुजरा। वहाँ गार हीरा है, गार सोर है, अल्लाहु अकबर, और ऐसी जगह हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएँ वहाँ आती हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अल्लाह पाक हमें ये मुबारक मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी।

0: امين صلى الله تعالى عليه واله وسلم.
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिग दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक नसीहतों भरा बयान. ए पाक परवरदिगार, हमें कारी साहब की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन. या अल्लाह, हज पे बुला आके मैं काबा देखूँ, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं, फिर मयस्सर हो मुझे काश वो कूफे अराफात, जलवे में मुजदलफा और मिना देखूं, झूम कर यूं मैं करूं खानाए काबा का तवाफ, झूम कर यूं मैं करूं खानाए काबा का तवाफ, फिर मदीने को चलूं गुम्बदे खजरा देखूं, सब्ज गुम्बद का हुसन जलवा दिखा दे यारब, मस्जिद नबी का पुरनूर मीनारा देखूं.

उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह ताला इस दिन अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है। बहावाला मुस्लिम शरीफ।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। आसिया, जी हाँ आसिया, दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज में आसानियाँ अता फरमाए और उनके हक को और उनके हज को कबूल करे। आमीन सुमामीन। और उन्होंने एक कलाम की फरमाइश भी की थी। इसके अलावा नुतकदाम से नासिर और नाजिमा भी सलाम पेश कर रहे हैं। और जी हाँ मोहसिन ने भी ज़ुल्फ़िकार अली साहब की, मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली साहब की एक कलाम की फरमाइश की है। इसके अलावा ईदुल अधा की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं बंधु और कोमाली फैमिलीज़ जो कि तखयुले के रहने वाले हैं, और वो तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा सैपुर से रिहाना और रियाज तमाम हाजियों को जो अरफात जा रहे हैं मुबारकबाद भेज रही हैं, और तमाम मुसलमानों को और MBC की उर्दू टीम को ईद उल अधा की मुबारकबाद पेश कर रही हैं, और उन्होंने भी एक कलाम की फरमाइश की है।

मौजूद सामईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। हरम की ज़मीन हो, सामने काबा हो, हाथ में कुरान और दिल में ईमान हो, ज़ुबान पर कलमा हो, हर मुसलमान यही आरज़ू करता है कि मौत आए तो इस तरह आए, ऐ पाक परवरदिगार हमारा खात्मा ईमान पर करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

下鬼故里又系下下嘅四海四里噶，听众朋友大家好，欢迎收听客家风情话。下面就让我哋一起开始今日的节目。

सोमवार 25 मई घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आप सभी का साथ देने के लिए। तो कैसे हैं आप सभी, ठीक तो है ना? और आज सोमवार है, 25 तारीख, मतलब कि अभी अभी मानो मई महीना शुरू हुआ था और समय के चलते मई महीना आज 25 तारीख तक आ गए हैं और एक सप्ताह में ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा। समय कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है और जितने समय तेज़ी से समय दौड़ता है उतनी ही तेज़ी से हमें आपसे मिलने का मौका भी मिलता है। तो चलिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़कर। उस ओर से आप बताएं आप कैसे हैं, साथ दे रहे हैं, जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इस दोपहर के पल को यादगार बनाते हैं, कुछ गाने तराने चलाएंगे, वो भी आपकी फरमाइश पर। तो नंबर तो याद है ना हमारा, 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप जो है अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं 5251700005 पर। और दिन तो अच्छे से बीत ही रहा होगा, अभी से लेकर 4 बजे तक होगा आप सभी का एंटरटेनमेंट, आप सभी का मनोरंजन आपकी पसंद इस प्रोग्राम के दौरान। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए 2:40 फरमाइशी गीतों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगला गाना जो है, यहाँ पर किसी ने अपने पोते के नाम मांगा है, उनका जन्मदिन है, लेकिन जिनका जन्मदिन है लोग उनका नाम ही नहीं लिखते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसके जन्मदिन के लिए जो है हम गाना

लाए, किनका नाम जोड़े, तो एटलीस्ट जिनका जन्मदिन है आप उनका नाम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम विश किसे करें। ऑल राइट, चलिए आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला गाना विद्या जी यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है, आपके नाम गाना जाता है। साथ में यहाँ पर कुमारी जी है, सती है, सुरेखा है, बबीता है, यूनियन पार्क के आपके पूरे परिवार के नाम। नाटक फिल्म का ये तराना है आशा जी और साथियों की आवाज़ों में यही गाना जाता है। यूनियन पार्क की ज्योति जी आपके लिए भी आज लग रहा है बहुत सारे हमारे सुनने वाले यूनियन पार्क से जुड़े हैं, आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं। गाना जाता है प्रीति के नाम, मयूर के नाम, आदर्श के नाम, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा आपके लिए भी पसंद।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन ज़िंदगी एक रंगमंच है, नाटक कहे रंगमंच कहे, हर कोई आता है अपने किरदार को निभाता है और जब जाने का समय आता है चला जाता है, लेकिन जो भी किरदार हमें मिला है उसे हमें अच्छे से निभाना है ना। चलिए देखते ही देखते पौने तीन यहाँ पर बज चुके हैं। अगला जो तराना है बैजू बावरा फिल्म का ये गीत है ओ दुनिया के, और ये जो गाना है ये जाता है आपके नाम। साइदा जी नोवेल दे कुवैत से हमारा साथ दे रही हैं। गाना इनकी ओर से इरफान, जोहान, दादी फरीदा, तन्वी, यासीन और उन सभी के लिए जो बैजू बावरा का ये गीत पसंद करते हैं।

की पसंद। और चलिए अब बारी है इस अगले गाने की। अगला तराना जो है मेरा प्यार भी तू है, ये जो गाना है मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ों में, जाता है मुकेश मोहन जी आपके नाम, देवयानी जी आपके नाम, औयता वाखवा

यकीनन इन गानों में प्यार है, इन गानों में अपनापन है, इन गानों में पुरानी यादें हैं, और इसलिए तो ये गाने इतने आज भी पसंद किए जाते हैं। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला गाना जो है मौसी रजनीति के नाम जाता है। बंदनी फिल्म का ये तराना है, एस डी बर्मन साहब की आवाज़ में। ये गाना आपकी मौसी के लिए, और मानिता जी आपके नाम भी शुक्रिया साथ देने के लिए। और श्रोताओं, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। समाचारों के इस पार फरमाइशी गीतों का

0: जो सिलसिला है जारी रहेगा, तो आप हमारा साथ देते रहिए या गाने को गुनगुनाते रहिए।
1: ओरे माझी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। करुणा जी से आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी सौंपी गई। ये दिन भावनाओं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। एक आवास इकाई की लागत लगभग 1.6 मिलियन रुपए की है। शागस ऑक्यूपेलागो का मुद्दा फिर से चर्चा में है। बरतानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका उद्देश्य शागस द्वीपों को मॉरिशस को वापस सौंपने की प्रक्रिया को रोकना है। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य पीटर जेम्स विटल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बीच ब्रिटिश सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन शागस आइलैंड बिल एक व्यक्तिगत पहल है और बरतानी सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दर्शाती। मॉरिशस में महंगाई अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट की धारा 34(2)(c) के तहत श्रीमती दिया बिसुंदोयाल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्राइब्यूनल के अध्यक्षा नियुक्त की गई और दालिदा नोएल मालिको तथा मोहम्मद इकबाल मोहम्मद हुसैन ट्राइब्यूनल के सदस्य। रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल के सामने उन्होंने पद की शपथ ली। और विदेश में ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत के कई प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता तुरंत होने वाला है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: आपकी पसंद। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। 3:03 आपकी पसंदीदा प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम चलने वाला है 4 बजे तक, तो ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो तराना है मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का गीत है। डिपिन से शीला जी ने हमें कॉल किया था, तू है तो दिल धड़कता है, कह रही कुछ दिन पहले उन्होंने ये गाना सुना था और उनको बड़ा अच्छा लगा था, तो इसलिए आज वो इस गाने की फरमाइश कर रही है। सो चलिए शीला जी, गाना आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से हमारे सभी सुनने वालों के नाम भी।

जी हाँ, कुछ गाने होते ही ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं और दिल में बस जाते हैं, शायद ये गाना भी कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पर नए पुराने आपकी पसंद, इस प्रोग्राम में हर तरह के गाने यहाँ पर आपकी फरमाइश पर हम चलाते हैं। आजकल तो कभी कभार 90s के भी बहुत सारे गानों की जो है फरमाइश यहाँ पर होती है, और हमारी कोशिश होती है कि सभी की फरमाइशों को हम पूरा करें। और चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला गाना जन्मदिन का गीत है, सो जितने भी सुनने वाले अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आदाब, प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फॉर रीता। ओके, रीता जी अपना जन्मदिन मना रही हैं, उनकी बहन रेणुका की ओर से, अमृता की ओर से, और यहाँ पर ये फरमाइश रिहाना जी की ओर से आई है, उनकी खास सहेली रीता के नाम, जिनका आज बर्थडे है, जो मातबा रहती है। रीता जी आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी दोस्तों की ओर से, आपके सभी परिवार की ओर से। यहाँ पर विश्वानी दुमन जी है, कह रहे आज मेरे पोते का जन्मदिन है, बहुत शुभकामनाएँ सभी दुमन परिवार की ओर से, बहुत सारी शुभकामनाएँ रामकिशुन परिवार, बिहारी परिवार, गजाधर परिवार की ओर से, इंदिरा भाई, सजीत, संजीत, श्रद्धा है, नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, नाना नानी, मौसी, मामू, मामी सभी जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं प्यारे से रेहान को। ऑल राइट रेहान, आपको जहां जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, मम्मा दिव्या, पापा प्रीतम और पूरे दुमन परिवार की ओर से। और यहाँ पर अनीता जोगारा जी अपने बेटे विकी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। विकी जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मामा अनीता और पापा नारायण की ओर से, आपकी पत्नी पूनम है, साथ में खुशी है, कुशल है, अंजू, रवीन, नताशा, अविनाश, दिया, अभय, अखी, ओम, सभी जोगारा परिवारों की ओर से विकी जी आपको भी जन्मदिन की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से। जन्मदिन का मौका ऑब्वियसली बहुत ही खास होता है, और आप इसे अपनों के साथ मनाएं, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, हर दुख, हर परेशानी, हर चिंता से आप दूर रहे और कोई भी परेशानी आपको छू ना पाए।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे उन सभी के नाम जिनका आज जन्मदिन है, या कुछ दिनों पहले आपने जन्मदिन मनाया, या आने वाले दिनों में अपना जन्मदिन मनाने हैं। तो जैसे भी हो, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है, आ गले लग जा फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू नहीं, आ गले लग जा, यानी कि पुरानी फिल्म आ गले लग जा, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में। ये गाना जो है साधना जी आपके नाम जाता है, रिवेदे क्रियोल से हमारा साथ दे रही है। गाना सभी जीवन फैमिली के नाम, और इनके जो भी जीवन परिवार है, जो रिवेदे क्रियोल रहते हैं, मौदालबिया रहते हैं, लारोजा और यूनियन पार्क रहते हैं, तो आपके पूरे परिवार के नाम ये गाना हम करते हैं। सस्ती जी, आपने कटरबोन से हमें फ़ोन किया था। सस्ती जी, जो गाना आपने मांगा वो हमें नहीं मिल रहा है, हमें अफसोस है। तो ये जो अगला तराना है आपके नाम हम करते हैं, आपकी बेटी लेखरानी के लिए और आपके बेटे सुमित के लिए। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूँ ही नहीं दिल लुभाता कोई। होते हैं कुछ लोग ऐसे, होते हैं कुछ शख्स ऐसे, होते हैं कुछ रिश्ते नाते, कुछ दोस्त ऐसे जिनसे मिलकर लगता है कि मानो कई जन्मों का नाता है, है ना, कई सदियों का नाता है, या जिन्हें हम बहुत पहले से जानते हैं। अगर आपके भी जीवन में ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, ऐसे हम सफ़र है तो आप बड़े खुशनसीब हैं। और अपनों के बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है, इसलिए ज़िंदगी में अपनों का होना, दोस्तों का होना, सखियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब बारी है अगले गाने की। अगला जो तराना है बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत है। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक है किशोर साहब। किशोर साहब, रफ़ी जी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमेशा आप हमारा साथ देते हैं। यही गाना जी जाता है ग्रांगुप की सुनीता जी आपके लिए भी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और कहती है कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दे, यही हमारे लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा है, ताकि ऐसे औरों को मौका मिले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कभी कभार कुछ लोग रोज़ मैसेज करते हैं, रोज़ गाने चला मांगते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि हम सबकी फरमाइशों को पूरा करें, लेकिन हर रोज़ अलग अलग लोगों को मौका देना भी बड़ी बात होती है, है ना। नहीं तो बहुत से लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम कितना फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं लगता है। तो बस हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ जो है यहाँ पर आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करें और यहाँ पर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। तो यही गाना जाता है शीला जी आपके लिए भी, हम आपको नहीं भूले हैं। तो चलिए ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, जीवन में परिवर्तन जो है नियम ही है। सब कुछ बदलता है समय के साथ, कुछ भी एक समान नहीं रहता है। और कहते हैं बदलते वक्त के साथ हमें भी जो है समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, लेकिन हर बदलाव अच्छाई के लिए हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते ही देखते 3:32 ऑलरेडी हो चुके हैं, बढ़ते इस अगले तराने की ओर। ममता फिल्म का ये गाना है रहे ना रहे हम। लता जी की आवाज़ में सुमति जी वाकवा से हमें सुन रही हैं और अपनी बहन चित्रा को याद करते हुए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। चित्रा जी की जन्मतिथि है, आज वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरा परिवार उन्हें याद कर रहा है। और ये गाना चित्रा जी को याद करते हुए सुमति जी की ओर से, देवी जी की ओर से और सभी गिरधारी परिवारों की ओर से। जी हाँ, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं और ये यादें ही कभी कभार जीने का सहारा बन जाती हैं।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, रहे ना रहे हम, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था अभी जो आप ममता फिल्म से सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में। कहते हैं ना कि हमेशा ऐसे काम करने चाहिए, हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग अच्छी बातों के लिए हमें याद करें, लोग हमें हमारी अच्छाई के लिए याद करें। चलिए इसी के साथ अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। निकाह फिल्म का ये जो अगला गीत है, महेंद्र कपूर साहब और सलमा जी की आवाज़ों में होगा, दिल की ये आरजू थी कि कोई दिल रुपा मिले। गाना जाता है भाई माहिन के नाम, पालमा से हमारा साथ दे रहे हैं। और ये गाना जो है इनकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे जगमोहन परिवार के नाम, सभी संगीत प्रेमियों के लिए, ऑल राइट, आपकी दीदी मान के लिए और हमारे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया माहिन जी। ये गाना आपके लिए भी हम

जी हाँ, निकाह फिल्म का ये गाना बहुत दिनों बाद जो है सुनने का मौका मिला और महेंद्र कपूर साहब और सलमा आगा जी की आवाज़ों में गाना बड़ा कमाल का था। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। शायद 80 के सालों में ये फिल्म आई थी, अर्ली 80s या तो फिर लेट 70s होगा, अभी हमें उतना ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन फिल्म के बाकी गाने भी बहुत ही लाजवाब है। चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला जो तराना है यहाँ पर, माला जरी जी आपके नाम हम करते हैं, ये गाना आपके पति ईश्वर के लिए, बेटा दीपक है, बेटी रीमा है, सभी जरी परिवार के नाम और बेशक हमारी पूरी टीम के लिए, पिचित्रित्रित से आप हमारा साथ दे रही हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाना यहाँ पर जाता है उन सभी के नाम भी जो आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों को पसंद करते हैं।

और चलिए कुली फिल्म का ये जो तराना है चल पड़ा है उन सभी पिलग्रिम्स के नाम जो हज पर जा रहे हैं, ये जो गीत है इसकी फरमाइश नसरीन जी की ओर से आई है वाकवा से, और ये जो है इनकी ओर से इनके पूरे परिवार के नाम और उन सभी पिलग्रिम्स के नाम जो हज पर जा रहे हैं, जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। सो आप सभी की जो ये यात्रा है वो सफल हो ऐसी विश की जा रही है।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए कहते हैं ना कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है, तो चलिए इसी के साथ आज के आखिरी गाने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर विक्की जी ने हमें कॉल किया था, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला गाना विक्की जी की ओर से उनके सभी दोस्तों के नाम इस समय काम करते करते हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यही गाना लीला जी आपके नाम भी हम करते हैं और गाना चलाने के बाद यहाँ पर आपके जो प्यारे हार्ट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर मैसेज के ज़रिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारी कोशिश होती है कि सभी की फरमाइशों को पूरा करें। सो इस खूबसूरत गाने के साथ आपकी पसंद यह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इतने दिल से, इतने प्यार से आपने साथ दिया, धन्यवाद। जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे, 4 बजे आप प्रोग्राम प्रकाश सुन पाएंगे मिसेज अंजू घरभरन जी की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए इजाजत अगली मुलाकात तक के लिए और रेडियो मॉरिशस से जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।

0: माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
1: प्रकाश कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, प्रकाश कार्यक्रम में आपने बहुत सारे साहित्यकारों को सुना, मॉरिशस में कैसी गतिविधियां होती हैं हिंदी के लिए, वे भी आपको हम इस कार्यक्रम द्वारा सूचित करते रहते हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहे है वे है लघु कथा। हमारे हिंदी साहित्य में लघु कथा एक बड़ी सशक्त विधा है। इसका कलेवर जितना छोटा है उसे लिखने में उतनी ही समस्या होती है। लघु कथा जिस शिल्प की अपेक्षा करती है उसमें सही उतरकर लिखना बहुत कठिन है, इसलिए तो कम लेखकों ने इस विधा पर लिखा है। जैसे उपन्यास और कहानी में अंतर होता है, वैसे ही कहानी और लघु कथा में भी शिल्प की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। छोटी कहानी भी लघु कथा नहीं कहला सकती, लघु कथा की अपनी टेक्निक है। लघु कथा की परिभाषा इस प्रकार है, लघु कथा किसी क्षण, घटना या मनःस्थिति की सशक्त अभिव्यक्ति है जो अपने सीमित कलेवर में जीवन के विस्तृत आयामों को समेट कर रखती है तथा जिसमें पाठक को बांधने एवं बंधने का संपूर्ण क्षमता पाई जाती है। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त के शब्दों में कहें तो लघु कथा की रचना प्रक्रिया जिज्ञासा से आरंभ होती है, संवेदना के स्तर पर रूप धारण करती है और अपने समापन बिंदु पर पाठक को झकझोर देती है। वस्तुतः लघु कथाओं के कथ्य अधिकतर जीवन के इर्द गिर्द की सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। कोई विशेष कथा वस्तु, चित्रण या चरित्र इन कथाओं का लक्ष्य नहीं, पर उनके रहस्यमय संवेदनशीलता से पाठकों के हृदय को छूना होता है या चोट लगाना होता है। लघु कथा की भाषा पर बात करें तो भाषा प्रायः

बोलचाल की तथा शिल्प व्यंगात्मक होता है। भारतीय हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पहले लघु कथा लेखकों में आता है। सन 1876 में उनकी पुस्तक परिहासिनी में कुछ लघु कथाएं छपी थीं। मॉरिशियस में किसने पहली लघु कथा लिखी कहना कठिन है। प्रारंभिक पत्र पत्रिकाओं में छोटी छोटी कहानियां भी छपती थीं, पर लघु कथा लेखन की नींव उसके शिल्प के आधार पर ना पढ़ने से उन छोटी कहानियों को लघु कथा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने मॉरिशस की पहली हस्तलिखित पत्रिका दुर्गा पर, जो समीक्षात्मक पुस्तिका 2001 में प्रकाशित की है, उसके अनुसार दुर्गा में प्रकाशित दो लघु कथाएं हैं, पागल प्रलाप और शरीफ आदमी और मांगते। ये 1935 से 38 के बीच की है। मॉरिशस साहित्य की प्रथम लघु कथाएं मान सकते हैं। और इसके बाद डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर जैसे साहित्यकारों ने लघु कथाओं में बहुत कुछ अपने साहित्य शिल्प के साथ हमें पाठकों तक पहुंचाया है, जिसमें रामदेव धुरंधर का स्थानीय सर्वोच्च है। उन्होंने बहुत सी लघु कथाएं और एक ही साथ एक ही उस संग्रह में 301 लघु कथाएं लिखी हैं। अब हम थोड़ी सी लघु कथाएं आपके साथ साझा करेंगे और इसमें लघु कथाएं मंजुषा, जो डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी द्वारा लिखी गई हैं, हम उनकी छोटी छोटी लघु कथाएं आपके साथ इस कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं, ताकि आप भी इससे परिचित हों और अपनी कलम के साथ हमारे लिए कुछ नया प्रस्तुत कर पाएं। तो पहली लघु कथा है गिरे नहीं उठे हो। बेटे ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला, पिताजी आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने बार बार आपको तिरस्कृत किया, आपके प्रति अपशब्द कहे, उंगली दिखाई, आप पर हाथ भी उठाया, सचमुच मैं शर्मिंदा हूं, अपने बुरे व्यवहारों से मैं कितना गिर गया हूँ। पिताजी ने उठते हुए कहा, नहीं बेटे तुम गिरे नहीं उठे हो, पश्चाताप बड़ी बात है, पश्चाताप अपनी भूल का एहसास कराता है। रत्नाकर जो जब अपने पाप कर्मों का एहसास हुआ तो वही डाकू रत्नाकर महान रचनाकार हुआ। तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम गिरे नहीं उठे हो। पिताजी की ऐसी मधुर और शिक्षाप्रद वाणी सुनकर बेटे की आंखों में आंसू भर आए और वह रो पड़ा, बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने दुष्कर्मों के प्रति लज्जित हूँ। पिताजी पुत्र के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार सचमुच शर्मिंदगी की बात है, मैंने बेटे का कर्तव्य नहीं निभाया, मैंने आपको कितना सताया है, अपमानित किया, पर आप मुझे सदा क्षमा करते रहे, मैं कुपुत्र हूँ, लानत है ऐसे बेटे पर। बस बस बेटे, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे सारे दोषों का निदान है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। वह पुनः अपने पिता के चरणों पर गिरता है। बेटे देवेंद्र को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब आगे चलकर खुद उसके बेटे ने उसे तिरस्कृत किया, उसको मारने पर दौड़े, तब उसका हृदय बहुत दुखा और सोचने लगा कि मैंने तो अपने पिताजी को इससे भी अधिक अपमानित किया था तो उनके दिल पर कितना दुख पहुंचा होगा। मातृदेव पितृदेव और देवता भगवान स्वरूप होते हैं, उनका अपमान घोर पाप है, तभी वह आकर अपने पिताजी के चरणों में गिर जाता है। तो पिताजी ने कहा, तुम गिरे नहीं उठे हो, तुम्हारा पश्चाताप इसका निदान है। तो श्रोताओं, एक ही पंक्ति में कैसे लघु कथा समाप्त हो जाती है पर एक चोट पहुंचाती है। चलिए एक तीसरी लघु कथा मैं आपके साथ साझा करती हूँ, बचपन लौट आया। गए दिन नहीं लौटते तो गया बचपन कैसे लौटेगा, हाँ पर लौटा। राजन और सामी के बचपन के दिन

साथ साथ बीते थे। दोनों प्राथमिक स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे, जैसे कि कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। बचपन के दिन निराले होते हैं, खेलकूद, हंसी मजाक साथ साथ, तो कभी एक दूसरे से बिगड़ना, फिर तुरंत बाद में मिल जाना। बचपन का बचपना, वाह। राजन और स्वामी में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि उन्हें एक दूसरे के अलग रहना दुश्वार था। पर एक बार ऐसा हुआ कि ना जाने कौन सी छोटी सी बात पर उनमें अनबन हो जाती है। वे एक दूसरे से रूठ जाते हैं, मिलना जुलना बंद हो जाता है, बातचीत भी बंद। घनिष्ठ मित्रता एक वरदान सी होती है। दोनों मित्रों के हृदय में एक कुड़हन सी उत्पन्न हुई, उनका दिल बहुत दुखा। अपनी घनिष्ठ और निश्चल मित्रता के बारे में सोचते तो रात में उन्हें नींद ना आती, उन्हें बहुत पश्चाताप होता। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का निश्चय किया, मुंह से बोल ना पाए, उन्होंने एक दूसरे को मिलने के लिए पत्र लिखा, स्थान और समय निर्धारित कर दिया। दोनों समय पर आ गए। कई दिनों से दोनों ने एक दूसरे से आंखें ना मिलाई थी, अब जब दोनों की आंखें मिली तो आंसुओं से तर थी। कुछ बोले नहीं, वे एक दूसरे की बाहों में सिमट गए और सिसकियां भरने लगे। बचपन की मित्रता का कितना विफल दृश्य था। बचपन के उनके मिलने का यह दृश्य उनके बुढ़ापे में पुनः दृष्टिगत हुआ। वे बाप दादे बन गए थे। विवाह के बाद स्वामी दूर शहर में जा बसा। संयोग से उनका मिलन कभी हो जाता, अन्यथा वह एक दूसरे से ओझल होकर ही रहते, पर अपने बचपन की यादें दिल में बसाए रखते। एक दिन दोनों पुराने मित्रों में मिलन की उत्कंठा इतनी जागी कि एक दूसरे को पत्र लिखकर एक स्थान पर साथ मिलने का निश्चय किया। जब दोनों मिले तो एक दूसरे से बोल ना पाए, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू बह निकले थे। वे सब कुछ बोल रहे थे, बुढ़ापे में उनका बचपन लौट आया था। तो श्रोताओं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, ऐसी छोटी छोटी कथाएं एक दूसरे के साथ मिलकर लिखने में भी आनंद आता है और साथ ही वे साहित्य से जुड़ जाती हैं। चलिए एक अंतिम कहानी मैं आपके साथ साझा करती हूँ, गैर भाषी। पुस्तकालय में कई पाठक अपनी रुचि की पुस्तकें ढूंढकर पढ़ रहे थे। लंबी मेज पर अनेक भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं भी रखी हुई थी। मैं वहां गया तो मेरे कई हिंदी अध्यापक मित्रों से मुलाकात हुई। अरे, वे मुझसे क्रियोली में बातें करते, हालांकि मैं उनसे हिंदी में बोल रहा था। वे वही कुर्सियों पर बैठकर मेज पर रखी हुई पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मैंने ध्यान दिया, अंग्रेजी फ्रेंच पत्र पत्रिकाओं के पास देश विदेश की हिंदी की पत्र पत्रिकाएं भी रखी हुई थी। मैं देख रहा था कि कोई हिंदी पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ रहा था, हिंदी अध्यापक भी नहीं। वे आपस में क्रियोली छांट रहे थे और अंग्रेजी फ्रेंच की पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में और पृष्ठ उलट पलट करने में मग्न थे। वहीं सूनी सूनी सी पड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएं जैसी अपनी निगाहें पसारे टुकुर टुकुर पाठकों को देख रही थी कि कोई भी उन्हें पढ़े। अपने हाथों से पृष्ठों को उलाटे पर कोई पाठक नहीं दिखा। तभी मैंने एक चीनी को वहां उस पुस्तकालय में आते देखा। वहां बैठकर पत्र पत्रिकाओं को देखने लगा। यह गैर हिंदी भाषी बड़ी श्रद्धा से हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखते उलटते पलटते और ध्यान से देखता रहा, पढ़ने का प्रयास भी किया। मेरे हाथ में हिंदी पत्रिका को देखकर हिंदी में मुझसे बोला, ये हिंदी पत्रिकाएं बहुत सुंदर हैं। जी, खूब सुंदर हैं, मैंने उत्तर दिया। वह फिर बोला, पर खेद है, इनके पाठक नहीं हैं। मैं उसका मुँह देखता रह गया। कितनी विडम्बता से इस लघु कथा में बताया गया
कि हिंदी के पाठक रुचि नहीं ले रहे हैं। तो एक व्यंगात्मक है कि एक गैर भाषी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़ भी रहा है, हिंदी की पुस्तकों को देख भी रहा है, पर हिंदी से जुड़े लोग भी इस पर ध्यान

0: ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से कैसे व्यंगात्मक रचना की गई है, और ये चारों कहानियाँ जो मैंने आपके साथ साझा की हैं वे लघु कथा मंजुषा जो इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी द्वारा लिखी गई हैं वे मैंने आपके साथ साझा की। वे हमारे बीच नहीं हैं, पर कहते हैं कि साहित्यकार हमारे बीच ही होते हैं क्योंकि हम उनको पढ़ते रहते हैं, उनसे प्रेरणा पाते रहते हैं और ऐसी पुस्तकों से हमारा मार्गदर्शन होता है। तो श्रोताओं, आज प्रकाश में हमने लघु कथा पर बात की, कभी एक अन्य कार्यक्रम में किसी अन्य विधा पर चर्चा करेंगे। आज के लिए अंजू जो हमारा टेक्निकल सहयोग दे रही हैं उनको आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आप भी व्यस्त रहें, मस्त रहें, पर हिंदी साहित्य से जुड़े रहें। धन्यवाद, शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।

बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा।
1: बिल्कुल जी, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। और इस खूबसूरत से शो में हम फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। फिलहाल के लिए आप अपनी घड़ी से घड़ी मिलाइए, क्योंकि 5:36 हो चुके हैं और हम हैं गिनिशा जो आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए। तो नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे मम्मी पापा को भी, और अगर दादा दादी भी साथ दे रहे हैं तो आपका भी स्वागत है। हाँ जी, सबका हमारा मस्ती भरा शो में जिसका नाम है बचपन ऐसा, जहाँ हर कहानी के साथ मिलती है एक प्यारी सी सीख। तो बस हमसे जुड़े रहे और एंजॉय करते रहे ये खूबसूरत सा शो बचपन ऐसा, खासकर आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: एमबीसी रेडियो आपके साथ।
1: बिल्कुल जी, जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक छोटी सी कहानी लेकर आते हैं जिससे आपको एक बड़ी सीख मिल जाती है। बिल्कुल, आज की कहानी है मैजिक वर्ड्स का जादू। बिल्कुल बच्चों, एक छोटा सा लड़का था राहुल। राहुल बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो कभी प्लीज, सॉरी या थैंक यू नहीं बोलता था। तो एक दिन स्कूल में उसने अपने दोस्त से पेंसिल ली बिना थैंक यू बोले, घर पर मम्मी से पानी मंगवाया बिना प्लीज बोले। धीरे धीरे सब उसे थोड़ा दूर रहने लगे और फिर एक दिन उसके टीचर ने उसे कहा कि राहुल बेटा, अच्छे मैनर्स इंसान को और भी स्पेशल बना देते हैं। और उस दिन के बाद राहुल ने मैजिक वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिया, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, और देखो ना, सब उसे फिर से प्यार करने लगे। तो बच्चों, हमेशा प्यार से बात करो, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो और अपने मैनर्स को अपनी पहचान बनाओ।

वैसे खुश रहने को अगर ज़रूरी आप पूछ रहे हो कि क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो मॉरिशस को हमेशा सुन लेना चाहिए और बस अच्छे अच्छे गानों को एंजॉय कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक और प्यारी कहानी और एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 6 बजे ही समय हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज नगरपालिका चुनाव किए गए नए मेयरों और उप मेयरों ने अपनी प्राथमिकताओं को उजागर किया, जिनमें नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, उनकी समस्याओं को सुनना तथा ड्रग्स की बढ़ती समस्याओं और असुरक्षा के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना शामिल हैं। मॉरिशस में बीजों के आयात पर भारी खर्च होता है, क्योंकि देश की 90% से अधिक जरूरतें अब भी आयातित बीजों पर निर्भर हैं। इसी कारण सरकार अब स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी सौंपी गई। आज 25 मई सऊदी अरब में हज का पहला दिन रहा। मीना में 1500 मॉरिशन हाजियों के लिए एक बेहद रूहानी और शांत माहौल देखने को मिला। और ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई, लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है। अरब समाचार विस्तार से। काठबोन में सुबिराज गंगा बिसुन को शहर का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कायाला उप मेयर पद पर निर्वाचित हुई हैं। दोनों का चुनाव सोमवार दोपहर नगर परिषद की एक खास बैठक के दौरान हुआ। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें मंत्री राजेश भगवान, अजय गणेश, दिव्य नगालिंगम और ज्योति जितन, इसके अलावा जूनियर मंत्री फौजी आलिमन और काहन फुक्यून बादशाह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नए मेयर और डेप्यूटी मेयर के सामने शहर के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। प्राथमिकताओं में बुनियादी ढांचे में सुधार, शहरी स्वच्छता और नागरिकों के कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। विस्तार।
2: काठरोबोन में नई टीम ने निरंतरता बनाए रखने की बात कही है। लक्ष्मी सुबिराज गंगा बिसुन को काठरोबोन का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर होंगी। दोनों को सर्वसम्मति के साथ चुना गया। इस अवसर पर सरकार के कई सदस्य भी उपस्थित रहे। नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता नगरवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और नगरपालिका सेवाओं में सुधार के अलावा नए मेयर ने कर्मचारियों और नगरवासियों के साथ संवाद और नजदीकी संबंध पर जोर दिया।
3: Nous avons la foi à Belle Rose qui est déjà enclenchée et nous avons un problème de BLN 20 terrains abandonnés. Nous pouvons essayer de mettre l'autre. C'est un nouveau concept, rencontre avec le maire là. Il y a une plateforme de dialogue entre le maire, député maire et aussi le conseiller qui nous capable, qui est un truc qui a une difficulté de gagner le terrain, qui a quelque chose qui nous capable d'améliorer pour eux.
2: अपने नए वर्ष के कार्यकाल को सफल बनाने के लिए नए मेयर अपनी डिप्टी मेयर के सहयोग पर भरोसा करेंगी। इंदिरा देवी ने नगरपालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया।
4: Nous remercier le gouvernement qui vient commencer un peu aux dames parce que nous aussi

0: Nous sommes dans une place dans la société et c'est madame qui est le pilier de la famille, partout. Donc voilà, on est là, on va faire notre preuve.
1: आपको बताते चले कि पोर्ट लुइस में क्रिस्टेल पोंडा लॉर्ड मेयर बनी हैं और डेप्यूटी लॉर्ड मेयर महसबीन करमताली। अन्य बुलेटिनों में अन्य नगर पालिका के मेयर और उप मेयर की जानकारी दी जाएगी। मॉरिशस में बीजों के आयात पर भारी खर्च होता है क्योंकि देश की 90% से ज़्यादा ज़रूरतें अब भी आयातित बीजों पर निर्भर हैं। इसी कारण सरकार अब स्थानीय उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। इसी रणनीति में बॉकली स्थित कृषि स्टेशन की अहम भूमिका है। ये केंद्र हर साल लगभग 1.3 टन बीजों का उत्पादन, चयन और वितरण करता है। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
2: बुबासे स्थित 10 हेक्टेयर जमीन पर बॉकली एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में ऐसे कद्दू जिन्हें 6 महीनों तक के लिए रखा गया, हॉर्टिकल्चर डिवीजन के ओआईसी बालाकृष्ण पूर्णस्वामी ने कहा।
3: Pâtisson, nous avons concombre, nous avons haricots, nous avons une trentaine de variétés. Mais qui plus important là-dedans, nous avons une variété qui est résistante à la maladie et qui est très bien adaptée aux conditions locales.
2: फसल के बाद इन्हें extraction और धुलाई की इकाई में ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। ये सबसे जरूरी चरण है ताकि बीज की उम्र सुनिश्चित हो। कृषि उद्योग मंत्रालय के साइंटिफिक ऑफिसर वानिसा पगिया ने कहा।
4: Ces charges-là, ils peuvent prendre à peu près 2 à 3 semaines, dépend soleil aussi. Et puis, nous avons les laboratoires pour faire un test d'humidité. Quand l'humidité est à peu près 50%, à ce moment, nous connaissons la graine, ok, nous capables d'envoyer dans seed store.
2: सूखने के बाद बीज को मैकेनिकल तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, फिर हाथों से चुना जाता है ताकि जो खराब है उन्हें निकाला जा सके। इसके उपरांत बीज का प्रयोगशाला में विश्लेषण भी किया जाता है, इसकी जांच करने के लिए कि जर्मिनेशन अंकुरण की क्या क्षमता है।
5: Tuman plantule qui sortit pas nécessairement de bonne qualité. Alors là nous get le résultat. Ça veut dire bien sûr qu'il s'abatche la grana, il gagne un certificat qui est attesté qu'il est poussé à 50%, 70%, 90% ou 100%. Et bien sûr, c'est ça batch là, là nous l'estial dans la section de packing.
2: अच्छी किस्म के बीज को कोल्ड रूम में रखा जाता है। कृषि उद्योग मंत्रालय के एग्रीकल्चरल सपोर्ट ऑफिसर स्टेफान वोंग ने कहा।
6: Une trentaine de variétés ici qui nous stocke à une température de 15 degrés plus ou moins 2, une relative humidity de 50% avant nous stocker, nous tout en assurer qu'il y a une quantité de semences qui nous garder pour nous régénérer et nous assurer que tout en le marché nous a toutes les semences qui nous.
2: कृषि उद्योग मंत्रालय में बिक्री स्थलों पर ये प्रक्रिया चलाई जाती है जहां पर खेतिहर स्थानीय बीज प्राप्त करने आते हैं। ये यहां उपलब्ध है।
3: Qui fait une production locale, c'est pour diminuer la dépendance vers l'importation. L'importation, elle coûte cher, et elle, la graine, elle coûte au moins 10 roupies quelquefois. Par contre, la graine locale, elle se prix bien bas, qui veut dire que aussi le coût de production pour, avec la graine locale est vraiment bas.
2: राष्ट्रीय ज़रूरतों के लिए 90% से अधिक बीज आयात किए जाते हैं। अधिकारीगण भावी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से इस उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं और किस्मों को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। अभी के लिए बॉकली स्टेशन वार्षिक तौर पर कोई 1.3 टन बीज उत्पादन करता है।
1: कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी दी गई। ये दिन भावनाओं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। एक आवास इकाई की लागत लगभग 1.6 मिलियन रुपए की है। इसमें 80% खर्च सरकार वहन करेगी जबकि 20% राशि लाभार्थियों द्वारा चुकाई जाएगी। भुगतान की अवधि 35 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। आज 25 मई को बालाक्लावा में मॉरिशस की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट एमयू द्वारा नेशनल साइबर ड्रिल 2026 लगाई गई। इस राष्ट्रीय

0: साइबर सुरक्षा अभ्यास में कई सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य बढ़ते और अधिक जटिल होते साइबर हमलों के बीच विभिन्न संस्थाओं की आपसी समन्वय क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना था। दासापाला सोमी आस्था गोविंद।
1: पहली नजर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे अधिकारी पूरी एकाग्रता से काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ साइलेंट एक्सेस नाम का एक समन्वित साइबर हमला तैयार किया गया है। इस अभ्यास में देश की कई जरूरी डिजिटल सेवाओं को निशाना बनाया गया। इन विशेषज्ञों का काम था खतरों की जल्दी पहचान करना, नुकसान को कम करना और प्रभावित सिस्टम को फिर से चालू रखना। सर्च एमयू से सचिन रिचाई बताते हैं, फायरवॉल आदि की जानकारियों की जांच करनी होगी, जिनसे ये पता चलेगा कि आगे के कदम कौन से होंगे। रैनसमवेयर और फिशिंग जैसे साइबर हमले होते हैं। इस साल के साइबर ड्रिल में पहले से ज्यादा कठिन परिस्थितियों को शामिल किया गया है, ताकि टीमों को नए साइबर खतरों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। डॉक्टर कलीम अहमद उस्मानी बताते हैं, पिछले 8 से 9 सालों से यह अभ्यास चलाया जा रहा है। हालिया वर्षों में हमलों के चलते कार्रवाई ज्यादा जटिल हो गई है। अलग अलग सेक्टरों के परिप्रेक्ष्य में ये अभ्यास चलाया जा रहा है। ICT मंत्रालय के अनुसार इस तरह के अभ्यास सिस्टम की कमजोरियों को पहचानने के लिए जरूरी है। ICT मंत्रालय से फरहान खान जोहर बताते हैं, साइबर सिक्योरिटी कमेटी स्थापित की गई है। मौजूदा मूल ढांचों का जायजा लिया गया और इस बात की पहचान की गई है कि किन किन सेक्टरों में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। मौजूदा कानूनों में सुधार भी लाया जाएगा। ये साइबर ड्रिल देश की महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों का हिस्सा है।
0: आज 25 मई को सऊदी अरब में हज का पहला दिन रहा। मीना में 1500 मौर्शन हाजियों के लिए एक बेहद रूहानी और सुकून भरा माहौल रहा। ये मंजर पूरी तरह से इबादत और खुदा के जिक्र से भरा हुआ था, जहां दुनिया भर से आए लाखों हाजी अल्लाह के सामने दुआ और इबादत में मशगूल थे। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस मुबारक मुकाम पर मौजूद हैं, जो मक्का से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। मॉरिशस में महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी, जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। विस्तार।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस के एक दस्तावेज के अनुसार अप्रैल 2026 के अंत तक देश का अंतर्राष्ट्रीय भंडार 463.1 बिलियन यानी करीब 9.81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में ये राशि 392 बिलियन रुपए थी, यानी एक साल में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इमरित रामधुहल ने बताया, ये एक मजबूत भंडार है जिससे देश में स्थिरता बनी रहती है और इसके होने से निवेशकों को आश्वासन भी मिलता है। साथ ही इससे ये पता चल जाता है कि मॉरिशस के पास निर्यात शुल्क चुकाने की क्षमता है। केंद्रीय बैंक ने आयात को लेकर अब 2 नए संकेतक भी शुरू किए हैं। पहले संकेतक में ग्लोबल बिजनेस कंपनीज की सेवाएं शामिल हैं, जबकि दूसरे में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, ताकि देश की स्थानीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार इस नई प्रणाली का उद्देश्य आंकड़ों को और स्पष्ट बनाना है। 2025 के आयात के आधार पर देश का अंतर्राष्ट्रीय भंडार GBC सेवाओं को छोड़कर 13.6 महीनों के आयात को पूरा कर सकता है और उन्हें शामिल करने पर ये अवधि 10 महीनों की रह जाती है। 13.6 महीनों का भंडार अन्य देशों के न्यूनतम टारगेट से भी कहीं ज्यादा है। इन नए संकेतकों से अब देश की विदेशी मुद्रा जरूरतों और बाहरी आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
0: इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ट्राइब्यूनल के नेतृत्व में नई टीम की नियुक्ति की गई है।

0: की अध्यक्ष दिया बिसुंडोयाल ने सोमवार को स्टेट हाउस में दो अन्य सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निष्पक्ष न्याय, तटस्थता और वस्तुनिष्ठा को मुख्य सिद्धांतों के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन द्वारा भेजी गई भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और निर्णय अब इस नई टीम की जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों के अनुसार ट्राइब्यूनल का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना और जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव के मामलों में न्याय प्रदान करना है। मूवमेंट सोशलिस्ट मिलिताओं के स्वास्थ्य आयोग ने पोटवी स्थित सेंट्रस बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। इस मौके पर कैलेश जगतपाल ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर बात की, जिनमें लेप्टोस्पिरोसिस और चिकुनगुनिया शामिल थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इसके अलावा कुछ अन्य संवेदनशील मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए, जैसे कि न चुकाए गए वैक्सीन के भुगतान और पकन ब्रिस्टर कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए खराब वेंटिलेटर का मामला। आस्था गोविंद।
1: स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कैलेश जगतपाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इसके लिए अधिकारियों की खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। चिकुनगुनिया पर बोलते हुए उनका कहना था कि मौजूदा फ्यूमिगेशन तरीका असरदार नहीं है। उन्होंने वैक्सीन मामले और पैकिंग ब्लिस्टर प्रकरण पर भी स्पष्टीकरण दिया, साथ ही उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी।
2: Quand vous payez un soir, ou signez un contrat, ben dit normal. Vous pouvez une acquitteuse qui vous a payé. Faudrait nous gagner le bill. La même chose pour Pfizer. Faudrait bill titum divan ou et quand même nous gagne bill, vous avez négocié. Algetan coût qui s'en a t'y prend décision pour poursuivre par un blister. Produit là, lit défectif. Les fins faire ce ben expert vini pour faire sa produit là, manger, sapine manger. Nous ne poursuivons. Nous clair là-dedans. Nous tout clair, nous, la commission, dans MSM, nous clair, vous avez poursuivre.
1: कैलेश जगतपाल ने एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति शरीर की घटती प्रतिक्रिया पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की।
0: अब ये विज्ञप्ति, मॉरिशस में अब तक एबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार 25 मई को जारी एक विज्ञप्ति में दी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश में किसी मॉरिशस नागरिक के एबोला के संपर्क में आने की अफवाहों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और युगांडा में फैल रही एबोला महामारी को देखते हुए मॉरिशस के सैनिटरी अधिकारियों ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। हवाई अड्डे और बंदरगाह पर विशेष स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। इसमें हेल्थ डिक्लारेशन, तापमान जांच, मेडिकल मूल्यांकन और ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों की निगरानी शामिल हैं। किसी भी संदिग्ध मामले को तुरंत एक निर्धारित आइसोलेशन यूनिट में भेजा जाएगा ताकि उचित इलाज और निगरानी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि एबोला सामान्य सांस संबंधी संक्रमण की तरह नहीं फैलता। किसी व्यक्ति को तब तक संक्रामक नहीं माना जाता जब तक कि उसमें बीमारी के लक्षण दिखाई न दें। गंगा तलाव में माँ बगलामुखी महायज और विशेष स्तुति पाठ का आयोजन किया गया। बगलामुखी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वैदिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विश्व शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा मानव कल्याण हेतु प्रार्थनाएं की गईं। 10 महाविद्याओं में प्रतिष्ठित माँ बगलामुखी को सनातन परंपरा में शक्ति संरक्षण और नकारात्मक शक्तियों के लिए निवारण की देवी माना जाता है। आस्था गोविंद की ये खास रिपोर्ट।
1: वैदिक मंत्रों और हवन की पवित्र सुगंध के बीच गंगा तालाब का वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक प्रमुख स्वरूप मानी जाती है। सनातन धर्म में उन्हें ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता है जो भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की उपासना

0: साधक को आत्मबल, मानसिक स्थिरता और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।
1: ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राए स्वाहा।
0: इसी श्रद्धा के साथ भक्तों ने माँ बगलामुखी महायज्ञ और स्तुति पाठ में सहभागिता की। इस अवसर पर माँ बगलामुखी के बीज मंत्र और स्तुति का विशेष पाठ भी किया गया।
1: तो माँ आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। आज जिस भाव से आप आए हैं माँ से वो मांगेगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र पूजन है, तो मांगेगा, ब्रह्मास्त्र तैयार होगा और आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा।
0: मान्यता है कि देवी की स्तुति और मंत्रों का जप मन को एकाग्र करता है, नकारात्मक विचारों को शांत करता है तथा साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माँ बगलामुखी की आराधना जीवन में साहस, संयम और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। आचार्यों के अनुसार यज्ञ और स्तुति आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक अनुशासन और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माने जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे वैदिक आयोजन समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: सुमिरन करें, जितना कर सकते हैं करें, माँ उतना ही फल दे देती है, उतना ही फल मिल जाता है। तो आप सब यहाँ आए हैं, माँ ने आपको खींचा है, माँ ने अपनी कृपा आप पे बरसाई है और इस मॉरिशस की पवित्र धरा में शंकर भगवान के समीप, मंगल महादेव के समीप, तो एक बार मेरे साथ नाम का जाप करेंगे बैठ करके, बोलिए जय माँ बगलामुखी।
0: इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने राष्ट्र की समृद्धि, पारिवारिक सुख और विश्व कल्याण हेतु मंगल कामनाएं की।

0: विदेश की खबरों में ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना भी स्पष्ट नहीं है। विस्तार विधिमा सिबोडन के साथ।
1: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ताकारों को निर्देश दिया कि वे ईरान के साथ समझौता करने में जल्दबाजी न करें। इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि एक समझौता बेहद करीब है। खबरों के मुताबिक जिस समझौते पर चर्चा चल रही है उसमें 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम का विस्तार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत की योजना शामिल है। ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध समाप्त होने की उम्मीदों के बीच तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और एशियाई शेयर बाजारों में उछाल देखी जा रही है जो ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध को समाप्त कर सकता है। सोमवार सुबह वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट 97.90 डॉलर प्रति बैरल पर आकर 5.5% गिर गया, जबकि अमरीकी बाजार में कारोबार करने वाला कच्चा तेल 5.9% गिरकर 90.93 डॉलर पर आ गया। ईरान ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान अमरीका और ईरानी रुख एक दूसरे के करीब आए हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसराइली सेना ने इलाके को खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर घातक हवाई हमले किए जिसमें सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में लगभग 100 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। हमले के कारण दर्जनों आवासीय इमारतें, एक स्कूल, एक ओपेरा हाउस और एक संग्रहालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चीन ने रविवार रात 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेंजाओ 23 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो उसके अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री पूरे 1 साल तक अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। ये बहुप्रतीक्षित लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब चीन 2030 तक अपने पहले मानवयुक्त चंद्रमा मिशन की तैयारियों में जुटा है। हज के लिए 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और शारीरिक तथा आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान के लिए जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात की जियारत करना फर्ज है।
0: रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हो गया। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की। एक बार फिर से विधिमा सिबोरन के साथ अन्य विशेष खबरें।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने रविवार को कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में

0: इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 101 पुष्ट मामले शामिल हैं। WHO ने कहा है कि ये प्रकोप अब लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो के लिए बहुत उच्च जोखिम पैदा करता है, लेकिन इस बीमारी के वैश्विक स्तर पर फैलने का खतरा अभी भी कम है। कैलिफोर्निया में जहरीले रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया गया है और हजारों निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कर्मचारी एक बार फिर रात भर काम कर रहे हैं ताकि जहरीले रसायनों से भरे एक विशाल टैंक को लीक होने या एक भीषण विस्फोट का कारण बनने से रोका जा सके। संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और विस्फोट से होने वाले नुकसान की आशंका के कारण हजारों निवासियों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। फिलीपींस में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग लापता हैं, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मियों ने सोमवार को राजधानी मनीला के उत्तर में स्थित एंजेलिस शहर में इस 9 मंजिला इमारत के मलबे से कम 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ब्रिटेन और उत्तर पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में हीट डोम बनने के कारण लंदन का तापमान एथेंस से भी आगे निकलने के लिए तैयार है, जिससे साल के इस समय के मौसम के पुराने रिकॉर्ड टूटने की आशंका बढ़ गई है। दमकल कर्मियों ने रविवार दोपहर साउथगेट में एक टायर रिसाइकलिंग केंद्र में लगी आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण हवा में काली धुएं का भारी गुब्बार उठ रहा था।
1: मौसम की रिपोर्ट। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जा रही है। देश में ऊंची लहर की चेतावनी हटा ली गई है। अनुमान है कि आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कल आसमान में बादल घिरे रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश होगी हवाई ढलानों और सेंट्रल प्लाटू पर। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें दक्षिण में 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने, साथ में पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी लगूनों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त हुआ 5:38 पर, सूर्योदय होगा कल 6:36 पर।

0: 6:27 हो चुके हैं। बुलेटिन अब तक पहुंचाया जा रहा है लुडोविक के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Chemin Rollo, Bélé-Rivière-Sèche, 85 ans, 85-year-old, Shrimati Ramauti Dabu, Shrimati Ramauti Dabu, जो सुभावती से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थे कल दिन के 2 बजे इनके बेटे विजय डाबू के मकान शिमा गोलो बिलियारिवियास से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुरशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लेखों ब्रेंच रोड घोंबुआ में 62 साल की 62-year-old श्रीमती फुलवंती जपसी, श्रीमती फुलवंती जपसी पैदाइशी नाम सुकारा जो वीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके पति कन्हैयालाल जपसी के मकान लेघाव ब्रांच रोड घोंबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए घोंबुआ की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। मोमानी पारी फ्रांस में 75 साल के 75-year-old श्री महेश दुकारन जो पहले मोसेलमो कुंजू प्लेंडी पापाई रहते थे।

की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं गुरुवार 28 मई को दिन के 1:30 बजे लामोग लोपिताल पीछे साल्पेत्रियर मोमानी पेरिस से उठाकर दाह संस्कार के लिए जॉन शेरोल डे विल्टानर्स फ्रांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: सीबी की तरफ से विज्ञप्ति सुनिए। सीबी की तरफ से विज्ञप्ति, सीबी क्यूपिप के रहने वालों को सूचित किया जाता है विलार सेबास्टोपोल और पेलेरिन रोड, पेटी पाके ब्रांच रोड, कॉम्बम्बाई रोड, रिवरसाइड रोड, सांगोलेट रोड और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: இசை அறுவை புவனேஸ்வரியோடு.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है आपकी मनपसंद रेडियो चैनल पे। लाए हम आपके लिए भजले प्रभु का नाम। हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें और कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इसी शुभ विचार के साथ। ईश्वर पर विश्वास मन को शांति और शक्ति देता है। कठिन समय में विश्वास ही आशा की किरण बनकर जीवन को नई दिशा देता है। तो चलिए गणेश वंदना आप सभी सुनने वालों के नाम।

तो चलिए श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमवार का दिन है आज, और आज का दिन समर्पित है भगवान शिव का। सत्या ही शिव है, शिव ही सत्य है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों, दूसरों की सहायता और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। सही दिशा में प्रयुक्त शक्ति जीवन को सफल और उज्जवल बनाती है। आप यकीनन इन बातों से सहमत होंगे। तो चलिए अगला भक्तिगान सभी सुनने वालों के लिए।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं शक्ति के बारे में। मनुष्य के जीवन में शक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति और सत्य की शक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। कठिन समय में आत्मविश्वास और धैर्य भी शक्ति का ही रूप है।

जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं, वैसे शक्ति का अर्थ है क्या? ऊर्जा, सामर्थ्य और बल, यह वह ताकत है जो संसार को चलाने और जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और नैतिक बल भी होती है।

तो चलिए श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। बस हमारी ओर से यही संदेश है, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों को सहारा दे और जीवन में अच्छाई फैलाए। तो आप अच्छे कार्य करते रहे, सही रास्ते जो है आप अपनाए अपनी जिंदगी में। भजले प्रभु का नाम। कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आप जहां से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए उस शान के साथ हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था।

मोहतरम सामीन, ज़िलहज की नवी तारीख को जो दिन होता है उसे अरफा का दिन कहते हैं। ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिनों में उसकी ख़ास अहमियत है और ख़ास फजीलत है। इस दिन का रोज़ा रखने से अगले और पिछले एक साल के गुनाह सगीरा मुआफ़ हो जाते हैं, लिहाजा इस फजीलत को हासिल करने के लिए इस दिन का नफिल रोज़ा रखना चाहिए और अतात व बंदगी में ख़ास दिलचस्पी लेनी चाहिए।

खुश नसीब हज पर गए हुए हैं, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमें और हमारे तमाम सुनने वालों को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: भोजपुरी तड़का में आप सबको एक स्वागत बा। आज सोमवार के रात है और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में हम एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल, इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छा से होल, ये उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम शुरू करत है जा। और हमेशा की तरह आप सब कोई के फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार रही और आपके पसंद पर ही एक बार फिर ये जो लिस्ट बनल बा एक फिर से बनावल जाए, तो ज़रूर फ़ोन करा और हमने के फ़ोन नंबर तो आप जन में ही करेला। जब तक कि आपके फ़ोन आए, एगो पहला गीत सबके मनपसंद रंभा राम तोहल के आवाज़ में एगो

आज लेंदी के दिन है और मई महीना के आखिरी लेंदी और मई महीना के आखिरी सप्ताह भी, और यही हमने के शुभकामना बा, यही हमने के उम्मीद बा कि ये जो आखिरी सप्ताह बा वो आपके बहुत अच्छा से कटी और ये सप्ताह काफ़ी विशेष बा, काफ़ी ख़ास बा, कहे कि मातृदिवस भी आवता, मातृदिवस के संगे अभी शादी ब्याह के भी मौसम चलता, तो आप जितना कोई ये सब परब ये सब खुशहाली के मौका के तैयारी में लगल हवा जा, आप सब कोई संगे हमने के साथ रही और आपके जितना फरमाइश बा उता मिल ले आवता। और अगला जो गीत चली ये गीत के मांग करत हवन उमा जी जे फौजीसक से हवन, और आप एगो शादी के गीत सुने चाहत हवा शारदा सिन्हा के आवाज़ में, ये एगो परछावन पर आधारित बा। और जैसे बोली अभी शादी ब्याह के मौसम चलता, तो जहाँ पर भी अभी शादी के मौसम बंधल बा, शादी के वातावरण चलता और ओकर खुशहाली बा, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और अभी से रात के 11 बजे तक हमनी के साथ रही, तो प्यार से हमनी के सुनते रहिए और अपन जो मनपसंद गीत बा वो भी हमी तक पहुँचावा, हम ओके चलावे के ज़रूर कोशिश करब।

0: रात के 9:21 होलबा और आप लोग के जितना फोन आवा था ओकर खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भारी संख्या में आज रात के फोन कॉल्स आवा था और अगला जो गीत के फरमाइश आल बा वो बशरी से धनी जी की ओर से हा। और धनी जी आज सुनने चाहता हूँ धना जी नाव जी के आवाज़ में एगो बहुत सुंदर गीत जेके सुन के आप सबको की अपन जवानी याद चलाए। दरअसल ई एल्बम के नाम ही जवानी है, जवानी धुआं उड़ैले चलल आवता। तो चला एक साथ सुनी जा ये सुंदर गीत बशरी के धनी जी के फरमाइश पर।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: भोजपुरी तड़का किरण संगे

बुआशरी के धनी जी के फरमाइश पर ये गीत चला, धुआं उड़ैले चलल जाला जवानी के रेल। और अगला जो गीत चली ये जवानी के बाद अब जन्मदिन के गीत रही, और लीलो माथुर के आवाज़ में ये गीत आप सब कोई के नाम जेकर आज जन्मदिन बा, जे लोग के घर में खुशहाली मनावल जाता, और जे लोग के जन्मदिन काल मनावल जाए, जे लोग के जन्मदिन काल मनावल गल, आप सब कोई के भोजपुरी तरका प्रोग्राम के ओर से बहुत बहुत बधाई। और इस हिसाब से शांता सुखारी जी जैसे जमिल फॉरेस्ट साइट के हवन आप अपन बेटा रविन के शुभकामना प्रकट करत हवा। रविन जी के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई उनकर पत्नी किरण के ओर से, बेटी संजना, बेटा प्रवेश, भाई सुदेश, अशोक और सुजीत के ओर से, उनकर सब भतीजा और भतीजी के ओर से जिनकर में श्रेया भी हवन और परी भी हवन, तो आपके पूरा परिवार के ओर से रविन जी जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में हमेशा खुशी के भरमार रही, खुशी के साथ साथ शांति और सफलता आपके कदम चूमी, ऐसन शुभकामना के साथ आपके नाम इजुन गीत बा जन्मदिन मनावा बरिस में एक बार आवेला लीलो माथुर के आवाज़ में। आपके माताजी के ई मनपसंद गीत है शांता सुखारी जी के, तो चला एक साथ ई गीत सुनी जा जन्मदिन लीलो माथुर के आवाज़ में।

और जब जन्मदिन के दिन आवेला, जब जन्मदिन के मौका आवेला, तो ऐसन में घूमे फिरे के भी समय चलावेला और साथ में खुशहाली मनावे के एगो खास मौका है। अगला गीत सुनीत अनंकु के आवाज़ में, चमेली चमेली चल तो के हम घुमा देब। और ये गीत सुने चाहत हवन सीला, जे ई समय फ्रांस से सुनत हवन अपन पति सुरेन के साथ। और आप ये गीत अपन सब लड़का, अपन नाती पोता सबके नाम करत हवा। और चमेली चमेली के जितना भी शौकीन हवा जा, जितना कोई ये गीत खुशी रहेला जा, आप सबको

और चमेली के घुमला के बाद अब समय चला बा बैगन बागी में जाए के कुणाल बाबूला के आवाज में ईगीत के फरमाइश कर ले हवन, ईगीत के मांग कर ले हवन शामुनी से विजय बिनी प्रसाद जी। और आप ईगीत शामुनी के अपन पूरा बिनी प्रसाद परिवार, दुली परिवार, मोहताबा के अपन दोस्त शास्त्री बोनोमाली के नाम और जितना कोई भी अभी ये कार्यक्रम सुनत है वजह आप सब कोई के नाम और कुणाल बाबूलाल के ढेर दीवाना बा, ढेर कोई ये आवाज़ खुशी रहेला काहे नहीं। भोजपुरी बॉयज के समय से ये आवाज़ जब गुंजे के शुरू होल तब से सकब्जा बोले भोजपुरी गीत के एगो दूसर आयाम मिल गल और आज तक ये जो जोश बा, ये जो जुनून बा भोजपुरी गीत सुने के। और जब आपके घर में कोनो भी ऐसा मौका रही जहाँ पर झूमे नाचे गावे के समय आए तो भोजपुरी बॉयज़ के गीत कैसे नहीं सकबा सुने और ख़ास तौर पर बैगन बागी में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
4: रात के 10 बजे में सकब्जा बोले और 10 मिनट कमती बा और ई जन अगला गीत चलता साहिल जगारू के आवाज़ में स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा। ई गीत सुने चाहत हवन बेलिया के आत्माराम जी जे बोलत हवन आजकल उनकर स्वास्थ्य एकदम बिगड़ल बा तो हमने के यही प्रार्थना यही आशीर्वाद यही उम्मीद बा कि आत्माराम जी आपके सेहत बहुत जल्द अच्छा हो जाए और ये गीत आप अपन चारों बहन के नाम करत हवा जे लोग ये बखत आपके सुनत हवन जा एकर में हवन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती दादी

स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा, सुने पे सुहागा बा, ये सुंदर गीत के बाद आगे बढ़ी जा। लीलो माथुर के आवाज में कोहेरिन के खेतवा में ये गीत सुने चाहता वन। पितों से अमृता गणेश जी, और आप ये गीत हमेशा की तरह सोनिया और परी के नाम कर थवा, और ये लोग के पापा और मामा विशान और मीनाक्षी के नाम भी। तो चला एक साथ ये सुंदर गीत सुनी जा, कोहरीन के खेतवा में किसनवा धान रोपीला।

0: किरण संगे
1: रात के ठीक 10 बजल बा और अगला जोन गीत चली ये गीत सुनने चाहत हवन सुयाक से श्रीमती जी और जिसे जाना था वजह अभी मातृ दिवस आवता फिद्दे में और माँ बाप पर ये गीत सुयाक के श्रीमती जी अपन तीन गो बेटा संजय राकेश शक्ति तीन गो बहु आरती अंजनी पूनम और अपन दुगो बेटी रेशमा और पूनम दुगो दामाद संजय और विशाल और सात गो नाती पोता के नाम करत हवन तो सुनी जा सुया के श्रीमती जी के फरमाइश पर गीता गजाधर के आवाज़ में माँ बाप के मोल।

अगला जन गीत चली गिरीश रूपचंद के आवाज में, रोमांटिक नाना नानी। ये गीत खास तौर पर वाशरी के कल्याणी जी खातिर, और कल्याणी जी जे बोला था वन कि अभी वो मॉरिशस में नहीं रलन, रोड्रिक्स में रलन, और उनका समय बहुत अच्छा बीतल हुआ, इतना अच्छा रहा कि उनका मन नहीं करे वापस मॉरिशस आई के। तो कल्याणी जी, आपके पसंद के ये गीत आपके नाम, फूलों के नाम, बड़की मुनोवा और मानती मनबोध के नाम, चला एक साथ ये गीत के जर आनंद बा उठाई जा, और ये गीत के फरमाइश अक्सर रहते रहेला। तो जितना कोई के भी ई मनपसंद गीत था आप सब कोई के नाम।

माँ पर ये गीत जन सुना था वा मेधा रिसोल और नीलेश रापू जी के आवाज़ में। ये गीत खास तौर पर मौदालबिया के शीला जी खातिर और आप ये गीत अपन दूगो बेटा विक्रम और विशाल के नाम करा था वा और मातृदिवस के अवसर पर सब माँ लोग के नाम ये सुंदर गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

रात के 11 बजे में 15 मिनट कमती बा और रात के ई बखत तक आप साथ देवत हवा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक 11 बजे ई प्रोग्राम समाप्त हो जाए और फिर आप सगबा सुने सुहाना सफर, लेकिन अभी खातिर हम आपसे आज्ञा चाहब, हमने के मुलाकात फिर से हुई आवत बीफे के। तब तक आप अपन ख्याल रखिया और आप सब कोई के आज के रात्रि खातिर बहुत बहुत शुभकामना। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम है सुनहरे पल AM2 यानी कि रेडियो मॉरिशस पर, और मिडनाइट तक साथ निभाने का वादा करके हम जुड़ गए कुछ सुपर हिट गोल्डन हिट क्लासिक्स के साथ। ये वो गाने हैं जो दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं अभी भी मेमोरी बॉक्स में बंद हैं, और हो सकता है कि कोई गाना किसी की याद दिला दे या फिर कोई एहसास जगा दे। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: भाई कहते हैं कि कभी खुद को दूसरों से मत कंपेयर कीजिए, खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है तो किसी की जीत देर से आती है। बस चलते रहिए, आपकी मंजिल भी आपका इंतजार कर रही है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: ये सच बात है कि इंसान खुशी की चाहत में भागता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन खुशी तो वही मिलती है जहाँ दिल को अपनापन मिले, है ना। कभी परिवार के साथ बैठिए, पुरानी बातें कीजिए, दिल जो है खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। बस बैकग्राउंड में म्यूजिक को चलने दीजिए।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: अच्छा, रेडियो की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? यहाँ आवाज से, जी आवाज से रिश्ते बनते हैं। कोई चेहरा नहीं, फिर भी अपनापन महसूस होता है। हर गाना किसी की कहानी बन जाता है और एक श्रोता परिवार का एक सदस्य। यही तो ऐसी जादू है संगीत का, आपका हमारा ये म्यूजिकल कनेक्शन।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ मैं विकास आपसे इजाज़त चाहूँगा और यही आशा करता हूँ कि गाने आपको पसंद आए होंगे। वो लोग जो अभी भी नींद के इंतज़ार में हैं, तो चलिए आपका साथ निभाने के लिए हम आज साथी के रूप में ज़रूर आ पाए। एक बार फिर से जब भी आप चाहेंगे आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे MBC रेडियो पर, बस आप साथ निभाने का वादा कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, फिर जल्द ही मुलाकात होती है। नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।